भाई वाह वाह वाह वाह वाह। अरे तुम्हारा क्या गया, अभी समझना नहीं है कि मुझे चल गई है।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रहे, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यानपिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. मैं हूं आरजे शिवप्रिया. आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर. श्रोते हो, आज हम संत कबीर के बारे में जानेंगे. संत कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोधी थे. उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्मों के बंधनों को गिराने का काम किया. वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महानतम कवि थे. इनकी रचनाओं ने उत्तर और मध्य भारत के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया. उनकी रचनाएं सिखों के गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई है. वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे. उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की. उनके जीवन काल के दौरान उन्होंने अनेक कविताएं लिखी, अनेक दोहे लिखे. कबीर साहब का जन्म काशी में हुआ था, जहां नीरू और नीमा नामक दंपति ने उन्हें गोद लिया था. संत कबीर को अपने सच्चे ज्ञान का प्रमाण देने के लिए जीवन में अनेक कसौटियों से गुजरना पड़ा. उनको मारने का असफल प्रयास भी कुछ लोगों द्वारा किया गया, लेकिन वे उन्हें मार नहीं पाए. कबीर साहब रामानंद जी से दीक्षा लेना चाहते थे. एक दिन रामानंद जी सुबह नहाने गए थे, तभी कबीर जी 2.5 साल के बच्चे का रूप धारण के समान घाट की सीढ़ियों पर लेट गए. रामानंद जी का पैर कबीर को लग गया. रामानंद जी ने झुककर उनको उठाया और राम का नाम जपने को कहा. तभी से रामानंद जी कबीर के गुरु हुए. कबीर जी के शिष्य धर्मदास द्वारा लिखित कबीर सागर में दिव्य धर्म यज्ञ का उल्लेख आता है, जिसके अनुसार उस समय के कुछ लोग पाखंड और दिखावा करने में अधिक विश्वास करते थे, कबीर जी से नफरत करने लगे. कबीर जी लोगों को परमात्मा के बारे में समझाया करते थे. वे समझाते थे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं. उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम आदमी तक पहुंच सके. कबीर साहेब जी को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे. अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका बड़ा आदर है. कबीर साहेब जी ने सिर्फ मानव धर्म में विश्वास रखते थे. उन्होंने अपने जीवन काल में एक दोहा लिखा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहार, बाते तो चाकी भली पिसी खाए संसार, कबीर माया पापनी फंद ले बैठी हटी, सब जग तो पंधे पड़या गया कबीरा काटी. अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यह पापिन माया फंदा लेकर बाजार में आ बैठी है, इसने बहुत लोगों पर फंदा डाल दिया है. पर कबीर ने उसे काट कर साफ बाहर निकल आए हैं। हरि भक्त पर फंदा डालने वाला खुद ही फंस जाता है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, संत कबीर जी के अनेक दोहे प्रसिद्ध हैं। संत कबीर ने अपने दोहों में कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अर्थात परमात्मा के बारे में और उनके ज्ञान के बारे में यहाँ पे संत कबीर जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में वर्णन किया है। संत कबीर जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि ज्ञान की बात करनी चाहिए, क्योंकि असली मोल तो तलवार का होता है, म्यान का नहीं। संत कबीर जी कहते हैं, माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात संत कबीर जी कहते हैं, अपनी उपरोक्त वाणी के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो लंबे समय तक हाथ में माला तो घुमाते हैं पर उनके मन का भाव नहीं बदलता, उनके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन को सांसारिक आडंबरों से हटाकर भक्ति में लगाओ। संत कबीर जी कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। अर्थात संत कबीर साहेब लोगों को नेकी करने की सलाह देते हुए इस क्षणभंगुर मानव शरीर की सच्चाई लोगों को बता रहे हैं कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है, जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं वैसे ही यह देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। संत कबीर जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात संत कबीर जी जब इस संसार में बुराई खोजने चले तो उन्हें कोई बुरा नहीं मिला। संत कबीर जी कहते हैं, जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। संत कबीर जी ने हमें यहाँ पे स्पष्ट किया है कि हम दूसरों की बुराई खोजना छोड़कर अगर अपने मन को देखना शुरू करेंगे तो हमें अपने मन के अंदर अनेक कमी कमजोरियाँ नज़र आएंगी, और जब हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं तभी हम वास्तव में अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। परिवर्तन तभी प्रारंभ होता है। संत कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। अर्थात बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में लोग मर गए पर कोई ज्ञानी नहीं हुआ। जो व्यक्ति प्रेम का ढाई अक्षर सीख गया वही सच्चा ज्ञानी है। संत कबीर जी कहते हैं कि ज्ञानी वही है जिसके अंतर मन में किसी के लिए नफरत नहीं हो, सभी मनुष्य आत्माओं के लिए, सभी प्राणियों के लिए, जिसके अंतर मन में सिर्फ प्रेम बसा हो, वही सच्चा ज्ञानी है। श्रुते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: उड़ेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।
1: सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, संत कबीर जी अपने दोहों में कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। अर्थात दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही नहीं सकता। संत कबीर जी कहते हैं, नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद। बिना नाम नरके गए, पढ़ी पढ़ी चारों वेद। अर्थात संत कबीर दास जी कहते हैं कि जिसने परमात्मा के सच्चे नाम का स्मरण कर लिया, उसने मानो सभी वेदों का सार और रहस्य समझ लिया। केवल वेदों को पढ़ लेने से लाभ नहीं होता। यदि मनुष्य ईश्वर के नाम का जाप और भक्ति नहीं करता तो चारों वेद पढ़ने के बाद भी उसे आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सच्चे नाम का स्मरण ही मुक्ति और परम ज्ञान का मार्ग है। संत कबीर जी कहते हैं कि परमात्मा की याद ही मुक्ति का मार्ग है। कबीर जी कहते हैं, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। अर्थात संत कबीर दास जी कहते हैं कि सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिस व्यक्ति के हृदय में सच्चाई होती है, उसके हृदय में स्वयं परमात्मा का वास होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए और झूठ से दूर रहना चाहिए। सच बोलना और सच्चा जीवन जीना सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति सच्चा होता है उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है। संत कबीर जी कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। अर्थात संत कबीर जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें केवल उतना ही धन और साधन दे जिससे उनके परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह हो सके। वे न तो अधिक धन की इच्छा रखते हैं और न ही अभाव में रहना चाहते हैं। उनकी कामना है कि वे स्वयं भी भूखे न रहे और उनके द्वार पर आने वाला कोई साधु संत या अतिथि भी भूखा न लौटे। इसी साखी में संतोष, दया और परोपकार की भावना का संदेश दिया गया है। संत कबीर जी कहते हैं, माटी कहे कुम्भार से, तू क्यों रोंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। अर्थात कबीर साहब कहते हैं कि मिट्टी कुम्भार से कहती है, आज तुम मुझे पैरों से रोंद कर घड़ा और बर्तन बना रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारा शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा और तब मैं तुम्हें रोंदूंगी। इस साखी के माध्यम से कबीर साहेब मनुष्य को अहंकार न करने और मृत्यु को सदैव याद रखने की शिक्षा देते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली या बड़ा क्यों न हो, अंत में उसे मिट्टी में ही मिल जाना है। श्रुते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनीरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रुते हो, संत कबीर जी अपने दोहे में कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि संसार में हर कार्य अपने समय पर ही पूरा होता है। जैसे माली किसी पेड़ को चाहे 100 घड़े पानी से सींच दे, फिर भी फल तभी लगते हैं जब उनकी उचित ऋतु आती है। उसी प्रकार जीवन में सफलता, ज्ञान और अच्छे परिणाम समय आने पर ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें अधीर होने के बजाय धैर्य और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। संत कबीर जी कहते हैं, क्षीर रूप सतनाम है, नीर रूप व्यवहार, हंस रूपी कोई साधु जन है, जो शब्द का करत छननहार। अर्थात सतनाम परमात्मा का नाम दूध के समान शुद्ध और अमूल्य है, जबकि संसार के व्यवहार पानी के समान है। जिस प्रकार हंस दूध और पानी के मिश्रण में से केवल दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार सच्चा साधु केवल सत्य ज्ञान को ग्रहण करता है और असत्य बातों को छोड़ देता है। संत कबीर जी कहते हैं, सात समंदर की मसी करूं, लेखनी सब बन राई, धरती सब कागत करूं, तापर गुरुगुण लिखा न जाए। अर्थात संत कबीर दास जी कहते हैं कि यदि सातों समुद्रों की स्याही बना दी जाए, जंगल के सभी पेड़ों की कलम बना ली जाए और पूरी धरती को कागज बना दिया जाए, तब भी गुरु के गुणों और महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरु की महिमा इतनी महान और अनंत है कि उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। इस संसार में सच्चा सद्गुरु केवल एक परमात्मा है, जिसकी महिमा हम शब्दों में वर्णन कर नहीं सकते, क्योंकि उसकी महिमा अनंत है। कबीर जी कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले वृथा, श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास को आवन होए न होए। अर्थात मनुष्य को अपनी हर सांस के साथ परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए और जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। किसी को नहीं पता कि जो सांस

अभी बाहर गई है, वह वापस आएगी या नहीं। इसलिए जीवन की अनमोल सांसों को संसार के मोह माया में व्यर्थ न करके ईश्वर भक्ति और अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। संत कबीर जी कहते हैं, दस द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहने को अचरज नहीं जात अचंभा कौन। अर्थात यह मानव शरीर दस द्वारों वाला एक पिंजरा है जिसमें प्राण रूपी पक्षी निवास करता है, यानी कि आत्मा निवास करती है। इस शरीर में आत्मा का रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जब यह आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है तब यह सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि वह कहाँ चली गई और उसका क्या हुआ। इस साखी के माध्यम से कबीर साहब मानव जीवन की नश्वरता और आत्मा के रहस्य को समझाने का प्रयास करते हैं। मनुष्य को अपने शरीर और सांसारिक मोह में अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दिन आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाएगी। इसीलिए जीवन का उपयोग ईश्वर को याद करने में और सत्कर्मों में करना चाहिए। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज़ 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: मुस्कुराने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

प्लस 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब हम खुशी की बात करते हैं तो साथ में गुस्से की भी बात कर लेते हैं, और हम कह देते हैं कि भाई ये दोनों तो साथ साथ ही चलेंगे। कई बार कहते हैं कि लव और हेट रिलेशनशिप है, वी हैव अ लव हेट रिलेशनशिप, बट नाउ वी रियलाइज कि या तो प्यार रहेगा या नफरत रहेगी, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब ये पता चलता है तब हमें चूज करना है कि हम प्यार में रहना चाहते हैं या नफरत में रहना चाहेंगे। और हम में से अधिकतर लोग, जितने भी मेल्स हमारे पास आ रहे हैं, सब ने यही चूज किया कि हम खुश रहना चाहते हैं, हम प्रेम में रहना चाहते हैं। तो फिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे उस खुश रहने को या प्रेम में रहने को, उस आस्पेक्ट को डिप्लीट करती हैं? और इस पर एक बहुत बड़ी बात सामने आई थी, गुस्सा। गुस्सा जब मैनिफेस्ट होता है तब हमें पता चलता है कि अरे हमें गुस्सा आया था, लेकिन उसके पहले का प्रोसेस भी तो चल रहा होता है। जब हम कभी इरिटेट हो रहे होते हैं, कुछ और बातें चल रही होती हैं, उन्हीं को आज साथ मिलकर खंगालते हैं कि क्या है ऐसा जो मैनिफेस्टेशन उसका गुस्से में निकलता है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जहाँ गुस्से की बात की थी तो पिछली कड़ी में याद है मुझे कि हमें तब रियलाइज़ होता है कि मेरा गुस्सा करना कितना गलत है, जब मैं किसी और को देखती हूँ और मुझे लगता है कि इसके इन्हें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं थी। और दूसरी बात, गुस्से में जब हम कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हम कहते हैं कि हम कहना ही नहीं चाहते थे, यू नो, सो वो जो इसकी मैनिफेस्टेशन है वो तो समझ में आया कि जब बहुत गुस्सा चढ़ जाता है, मैं रोक ही नहीं पाई अपने आप को और मैंने गुस्सा कर दिया। लेकिन इसके पीछे का कुछ एक पूरा प्रोसेस चलता होगा, क्योंकि जब तक हम उस मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे हम शायद इससे पार नहीं जा पाएंगे।
1: सी, गुस्सा इज अ एनर्जी ऑफ डिस्टर्बेंस ना, जो यहाँ क्रिएट होती, लेकिन वो हमेशा ऐसे वाली नहीं होती है। इट कैन नेवर गो, इट्स लाइक द गियर्स ऑफ द कार, इट हैज टू गो 1, 2, 3, 4, 5, इट विल नॉट गो डायरेक्टली इनटू 5 फ्रॉम योर न्यूट्रल स्टेट। लेकिन हमें वो कब दिखाई देती? जब इट्स गॉन इनटू गियर 5। हम अगर उसकी अवेयरनेस में चलते तो फ्रॉम न्यूट्रल टू 1 पर ही जब पहुँचते तो हमें पता चल जाता कि ओके, समथिंग इज हैपनिंग, एंड क्यों ना उसको यहीं पर रोक कर चेक किया जाए, तो फिर वो कभी एक एक्सप्लोजन का रूप तो लेगा ही नहीं। तो सबसे पहले जब गुस्से की शुरुआत हमारे अंदर होती है, इट्स विद अ वेरी लिटिल इरिटेशन। और इरिटेशन, अब हम गुस्सा करते हैं या नहीं करते ये हर एक अपने आप से पूछे, लेकिन इरिटेशन कब होता है नॉर्मली अगर हम देखें, बिकॉज एक एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है मैं एक पर्टिकुलर इंटरेक्शन में पहले इरिटेट हुई, फिर थोड़ा और गुस्सा हुआ, फिर और, ऐसा नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर जगह इरिटेट होती, फिर और दो जगह इरिटेट होती, तीसरी जगह कहीं बड़ी बात हो जाती, तो ये सारी जो इरिटेशन भी बिल्डअप हुई होती है सुबह से मेरे साथ। इसीलिए हमने बार बार इस सीरीज में ये देखा कि जब आप सुबह उठते हैं और वो सुबह का जो टाइम है 1-2 घंटा, जो हम मैक्सिमम डिस्टर्बेंस एक घर के अंदर क्रिएट कर देते हैं इन द नेम ऑफ बच्चों को उठाना, बच्चों को तैयार करना, व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको ध्यान रख के जितना हो सके उसको ईज डाउन करें, क्योंकि वो आपके दिन के ऊपर इम्पैक्ट करता है। यू नो, दिन की शुरुआत है, दिन की शुरुआत अगर हर रोज ऐसे ऐसे वाली होगी तो वो इट विल कैरी फॉरवर्ड इन टू द रेस्ट ऑफ द डे। और दिन की शुरुआत अगर कामली होगी, पर लेकिन ये हमने एक पैटर्न बना लिया, यू नो, इट हैज़ बिकम अ पैटर्न कि बच्चों को उठाना है तो ऐसे ही उठाना है, जल्दी जल्दी ही तैयार करना है। अब आराम से करना, इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीड कम हो जाती है। दिस इज ऑल्सो अगेन, हम मिक्स कर देते हैं दोनों चीज़ों को कि अगर गुस्से से करेंगे ऐसे हाइपर
0: तो जल्दी,
1: एक्चुअली जहाँ यहाँ स्टेबल है तो बॉडी बहुत इफेक्टिवली मूव करती है। जब यहाँ डिस्टर्बेंस होता, हमें ये भी पता कि जब हमें गुस्सा आता है तो उसका मन पर नहीं असर तो होता, लेकिन ब्रेन पर और पूरी बॉडी पर, पूरी फिजियोलॉजी पर असर होता है। मेरी पल्स रेट, हार्ट बीट, सब कुछ अंदर, हार्मोनल सिक्रीशन। अब इस प्रोसेस में हाउ कुड आई बी वर्किंग फास्टर?
0: आई थिंक समवेयर, अगर ये सुबह वाली बात जो है, मैंने रियलाइज किया है कि अगर रात ठीक से सोए ना आप, और आप 6 बजे उठ गए, सपोज 7 बजे बच्चे ने जाना है, 6:40 तक बच्चा बिना किसी क्योस के तैयार होके तैयार जाने के लिए।
1: बट इट्स अ विशेष साइकिल ना, फिर आप रात ठीक भी कैसे सोएंगे? रात आप ठीक तब सोते हैं जब आपका आज का सारा दिन अच्छा बीता, एंड दैट्स व्हाई समवेयर टू स्टार्ट द साइकिल हम सुबह से स्टार्ट करते हैं कि कम से, क्योंकि यू नो ये एक चीज है जिसकी हमें अवेयरनेस है कि हम ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, इवन फॉर द चाइल्ड इट्स नॉट हेल्दी। बच्चा पढ़ने जा रहा है सारा दिन के लिए, उसकी मेंटल स्टेट कैसे होनी चाहिए स्कूल जाने से
0: कई
1: पहले?
0: बार तो मैंने देखा है कि घसीटते हुए जा रहे होते हैं बच्चे,
1: वी कैन वॉच
0: लिटरली, हाँ, रनिंग और
1: एंड बड़े वाले भी नहीं, वो छोटे छोटे वाले, छोटे
0: छोटे नर्सरी वाले पैनिक में, मतलब बस चली जाएगी और ये करो, कोई ब्रेकफास्ट खाता हुआ जा रहा है, कुछ ऐसे कई बॉटल रह गई, आई मीन सो मच ऑफ अ क्योस
1: एंड अर्ली इन द मॉर्निंग यू हैव हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, यू नो, ये लगती बात छोटी है लेकिन एक छोटे से वो उसके लिए वो पेरेंट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, और सुबह सुबह उसका उनके साथ ऐसे वाली एनर्जी एक्सचेंज हो गई है. आई वुड पर्सनली फील द चाइल्ड इज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड नाउ टू गो टू स्कूल. वो ऑलरेडी ऐसे हो गया है, हमें उसको देखो, हम उसके ब्रेकफास्ट पर कितना ध्यान देते हैं कि वो खाना खाए बिना नहीं जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि नरिश करके बॉडी को भेजना है फॉर द होल डे, लेकिन नरिश माइंड को भी तो भेजना है. इतना बॉडी पर ध्यान रखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन माइंड, माइंड तो पूरा मैल न्यूट्रिशन हो जाता है बाय द टाइम ही इज रीचिंग, बिकॉज़ ही गेट्स ड्रेन्ड आउट.
0: आई थिंक समवेयर वी ऑल मेड इट लाइक कि इट्स वेरी नेचुरल, ये एक बहुत बड़ा
1: इसको तोड़ना
0: सिस्टम है.
1: इसको तोड़ना है कि सुबह का जो वो समय है ना, जिसमें ये हर टाइम ऐसा सीन क्रिएट होता है. Why? Because it's going to happen every day. Kabhi once in a while, okay, something went wrong. But every day wo pattern ban jata hai. And all you have to do is just stand on the road and see these parents taking children. It's every day. Jaise hi parents bache ko bus mein chadha dete hain, they are like, okay. It's as if, you know, kitna bada relief hai. Jaise din ka ek bahut bada kaam pura hua hai. Lekin wo us time thake huye se dikhai dete hain. Ab subah subah hum thak chuke hain. Abhi to humne apna din शुरू करना है, बट वो ऐसी फीलिंग मन को आती जैसे कि बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ा काम हो गया. नॉट अ वेरी राइट नोट टू स्टार्ट द डे.
0: लुक बैक, आई थिंक हमारे पेरेंट्स को पता भी नहीं होता था हम कब स्कूल चले गए.
1: सो समवेयर वी नीड टू चेक. अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, ना लाइफस्टाइल में कुछ चेंज लाना है, सिर्फ एक प्रैक्टिस करनी है कि सेम काम करना है, सेम बच्चों को उठाना है, सेम बच्चों को छोड़ना है, बट वी आर गोइंग टू डू इट पीसफुली एंड जस्ट ट्राई एंड सी कि पीसफुली करने से वो बच्चे बस तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं.
0: लेट्स ट्राई इट आउट एक्चुअली.
1: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज व्हाट्स द एक्सपीरियंस. जो चीज हमने रोज करनी है, हमने उसको इतना पेनफुल एक्सपीरियंस क्यों बना लिया? ये भी बिलीफ है क्योंकि हमने एंग्जाइटी को स्पीड के साथ जोड़ दिया ना, कि एंग्जाइटी से करेंगे तो जल्दी होगा, आराम से बोलेंगे तो जल्दी नहीं होगा. इट नेवर वर्क्स दैट वे. पीस विल ऑलवेज क्रिएट इफेक्टिवनेस एंड एंग्जाइटी विल ऑलवेज bring down my performance. क्योंकि जब एंग्जाइटी में है तो हमारी इवन सोचने समझने की शक्ति, फिजिकल शक्ति तो है, लेकिन यहाँ पर भी दिस ऑल्सो गेट्स डिस्टर्ब्ड. सो वी नॉट पुटिंग इन आर बेस्ट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड फिर उसका इफेक्ट हमारे रेस्ट ऑफ द डे पर, एंड फिर रात तक आते आते तो वी टोटली डिस्चार्ज. देन उसका इफेक्ट, जैसे आपने कहा, वो नेक्स्ट मॉर्निंग पर, एंड इट्स बिकमिंग a vicious cycle. So let us start from tomorrow morning. Tomorrow morning we have to put this, kyunki itna agar hum roz sun rahe hain ye program, samajh bhi rahe hain, lekin agar hum usko try nahi kare, then it's not the right way.
0: You know, like it's ball is in your court actually. Let's try it out. That's what I'm saying. I've been trying it out now.
1: Ek aur jo hum bar bar is platform pe discuss karte, ki isi state of mind mein hum unka bhojan bhi banate hain subah. Kaun si vibrations dal rahe hain? Jaisa ann, waisa man, aur jaisa man, waisa ann. To wo, you know, you can see wo kitchen mein kya energy hoti hai subah subah. That's also very fast. So you're not just giving them food. आप सिर्फ उनको डब्बा नहीं दे रहे हो, उसमें तो आपने बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ पैक किया, लेकिन उस खाने के साथ साथ क्या किया? इतनी सारी ये एंग्जाइटी की एनर्जी दे दी. एंड फिर हम मुड़ के आज कह रहे हैं कि आज के बच्चे देखो कैसे हो गए. इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स नॉट, दे आर बींग फ्लडेड विद ऑल दिस एनर्जी फ्रॉम एवरीवेयर. हु इज टीचिंग देम कि व्हाट इज द राइट वे टू बी स्टेबल? हम ही उनको ये भी जो हम इस तरह से रोज सुबह सुबह कर रहे हैं, वो भी फिर सेम तरह कर रहे हैं. यू वोंट फाइंड एनी चाइल्ड आल्सो वेरी रिलैक्स सुबह, बच्चा भी ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे.
0: उसके होमवर्क ही नहीं हुए होते, कई बार तो कॉपी से रह जाती है, यू नो, लाइक वो कोई जो अच्छा जो होमवर्क करके उसने कॉपी टेबल पर रखी भी होगी, वो वहीं की वहीं रह जाती है. फीस की चीज देखी, यानी कुछ पर्टिकुलर चीज रखी, वो वहीं प्रोजेक्ट वहीं रह जाता है. इट्स सच एंड इन फैक्ट आई थिंक समवेयर वी डोंट हैव टू फील डिसहार्टेंड,
1: नॉट एट ऑल,
0: बिकॉज़ वी हैवंट, वी हैड not done it, you know, intentionally.
1: No.
0: You know,
1: it's not just that we're doing it without awareness. और important बात ये है कि हम realize नहीं कर रहे, हमें लग रही है वो छोटी बात है और हमें natural भी लग रही है और हमने पहले ही देखा जो natural लगेगा उस पर फिर हम ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे. तो अपने इस belief system को challenge करें कि सुबह का समय सबसे डिस्टर्बेंस वाला समय होता है. नो, लेट्स चेंज इट टू सुबह का समय दिन का बेस्ट समय होता है और अगर सुबह बेस्ट होगी फिर बाकी पूरा दिन भी बहुत अच्छा बीतेगा. चेंज दैट बिलीफ एंड देन ट्रीट इट लाइक द बेस्ट टाइम ऑफ द डे, ट्रीट इट लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम ऑफ द डे एंड देन सी टुमारो व्हाट एनर्जी विल बी देयर.
0: इनफैक्ट दैट्स वेरी ट्रू बिकॉज दैट्स द टाइम व्हेन यू आर एक्चुअली क्लोजर टू योर चिल्ड्रन. आई हैव रियलाइज्ड दैट यू नो कि पहले हमने जीवन में कभी बात ही नहीं की होगी सुबह स्कूल जाते वक्त. अब सबसे ज्यादा सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इफेक्टिव कॉन्वर्जेशन अर्ली मॉर्निंग की हो गई है.
1: तो हम अपने दिन की शुरुआत ही इरिटेशन से कर देते हैं. तो जहाँ दिन की शुरुआत ही इरिटेशन से हो देन देर इज नो वे कि यू विल बी एबल टू गेट इट बैक टू द रिलैक्स स्टेट. अब ये तो दिन की शुरुआत का सीन हुआ, लेकिन सारा दिन में भी हम देखें तो हमें छोटी छोटी बातें इरिटेट करती हैं एंड इरिटेशन जनरली समय के साथ कनेक्टेड होती हैं. जहाँ चीज़ें हम ना उतनी स्पीड पर नहीं हो रही हैं जितना मुझे आदत है या जितना मैं सोचती हूँ कि होना चाहिए. आपकी सुबह सुबह एनर्जी से ये हम कह रहे हैं एनर्जी चाहिए नहीं, वो ऑलरेडी है, उसको सिर्फ ध्यान रख के डिप्लीट नहीं करें. नहीं तो फिर बाय द डे यू नो एज द डे प्रोग्रेसेस यू सी ऐसी हालत में दिन शुरू होगा तो जब तक आप ऑफिस पहुंचेंगे एंड टू स्टार्ट योर मेन वर्क आपकी ऑलरेडी एनर्जी कैसे हो जाएगी. तो ये इरिटेशन का जो फैक्टर है जो थोड़ा थोड़ा शुरू होता और जिसको तो हमने बहुत नेचुरल स्वीकार कर लिया. इसको तो हमने कब गुस्से का तो फिर भी कभी कभी थॉट आता है कि गुस्सा डैमेजिंग है, नहीं करना चाहिए. इरिटेशन तो इट्स एक्सेप्टेबल
0: एवरी टाइम बिकॉज बाहर निकले तो ट्रैफिक में भी तो इरिटेशन अगेन जहाँ से शुरू हुआ प्रोसेस शिवानी. और अब कभी जब हम कंप्यूटर जैसे आपने कहा कि
1: कंप्यूटर पर बैठो ऑन करने बैठो तो ऐसे होते जाएंगे कि ऑन क्यों नहीं हो रहा, इतना टाइम क्यों लगा रहा. अब उसका तो जितना टाइम है उसने तो उतने लगाना है, लेकिन उतनी देर में हमने क्या कर दिया. अच्छा नेट कनेक्शन आज बहुत स्लो है, आपने एक ईमेल सेंड की वो सेंड ही नहीं हो रही है. See, we will have to accept that everything is moving at its own rhythm.
0: And then we say ki phone dead ho gaya, sari cheeze to hum kehte ki humne kahan se din, aaj ka din kharab.
1: Aur din to kuch bhi kharab nahi hai. Computer bhi apni speed se chalega, net bhi apni speed se connect hoga, mere aage ki gaadi ke aage jo gaadi chal rahi hai, wo apni hi speed se chalegi. Haan, main irritate ho sakta hoon uski speed ko dekhte hue, lekin usse uski speed badh nahi jayegi, lekin meri yahan ki speed डेफिनेटली बढ़ जाएगी एंड वो मेरी एनर्जी को डिप्लीट करेगा. यू नो सपोज कई लोगों को आदत होती है कि जैसे बॉल पेन हाथ में रखा हुआ है और वैसे टक टक टक बॉल पेन के साथ करते रहेंगे. अब वो उनकी आदत है, इट्स अ हैबिट, लेकिन हम सुन सुन के देख देख के उसको इरिटेट. किसी की आदत है कि वो ऐसे कुर्सी पर ऐसे ऐसे करते रहेंगे. अच्छा कोई हो अपने नकल्स को क्रैक, ये छोटी छोटी बातें हैं, दे आर नॉट बिग थिंग्स. एंड अगर हमारी एनर्जी इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऐसे जाने वाली है देन वी विल नॉट बी एबल टू लिव विद स्टेबिलिटी. कोई ऐसे ऐसे कर रहा है ना, अगर कुछ भी ऐसा कर रहा है और आप ऐसे इरिटेट हो रहे हैं, डोंट लेट इट जस्ट गो ऑन, जस्ट टेल योरसेल्फ इट्स ओके, दे आर लाइकिंग इट वो जो कर रहे हैं. या तो अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है आप प्यार से उनको एक बार बोल सकते हो या फिर आप भी उनके साथ साथ ये कर सकते हो. Just accept it.
0: एक बात सिस्टर शिवानी, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क, ये जो इरिटेशन हमें इन चीज़ों पे हो रही है, कहा यह जाता है कि इसके पीछे बेसिकली कोई और वजह होती है और हम इरिटेट जो है वो इरिटेशन निकल रही होती है.
1: नहीं, इरिटेशन जरूरी नहीं है और वजह हो, क्योंकि जरूरी कई लोग वो होते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं. आप बस में बैठे हो किसी के साथ, आप एक मीटिंग में आए हुए हो किसी के साथ, आप उनको जानते नहीं हो जो है, लेकिन उनकी कोई ना कोई हैबिट, कोई ना कोई पर्सनालिटी ट्रेट आपकी पर्सनालिटी ट्रेट के साथ मैच नहीं करता, यू नो, एंड वो आपको फिर इरिटेट करता रहता है. जैसे हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं ना, प्रोग्राम्स करते हैं लाइव जब, तो एवरी टाइम एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम वी विल रिक्वेस्ट प्लीज पुट योर मोबाइल ऑन साइलेंट. एंड दिस इज अ रेगुलर फीचर कि आप हर प्रोग्राम के शुरू में बोलेंगे. नेवर हैज़ इट हैपेंड, नेवर, कि कम से कम एक मोबाइल नहीं बचेगा उधर. सो आई सॉ माई सेल्फ कि शुरू शुरू में व्हेन वी जस्ट स्टार्टेड एंड किसी का मोबाइल बजता था एंड आई विल गेट वो क्या इनको समझ नहीं आ रहा कि मोबाइल, क्योंकि इट इज लेस अबाउट यू गेटिंग डिस्टर्ब, बट आई यूज टू सी सो मेनी पीपल अराउंड आर गेटिंग डिस्टर्ब, बट देन दैट वॉज डिस्टर्बिंग मी. एंड आई सेड एक की वजह से अभी देखो इतने लोगों का अटेंशन डेविएट हो गया, इनको ध्यान में नहीं आता कि इनको, सो दिस इज माई इरिटेशन. एंड नाउ ये एक बार हुआ, दो बार हुआ, चार बार हुआ, एंड एवरी टाइम आई सॉ माई सेल्फ गेटिंग इरिटेटेड, एंड देन आई हैड टू स्टॉप एंड टॉक टू माई सेल्फ. दे हैव द फ्रीडम टू डू वॉट दे वॉन्ट टू डू. हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपना मोबाइल साइलेंट पे रखें, लेकिन उसके बाद चॉइस हर एक की अपनी है. हमें हर एक की चॉइस को रिस्पेक्ट देना है. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सारी दुनिया हमारे रिस्पेक्ट या ऑर्डर या कंट्रोल में चलने वाली है. और ये मोबाइल बजा वो उतना डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन जो हम इरिटेट हो जाते हैं और वो जो एनर्जी पूरे कमरे में
0: दोबारा
1: फैल
0: रिवाइव
1: जाती है
0: करने में ना टाइम
1: वो
0: लगता है.
1: डिस्टरबेंस ज़्यादा क्रिएट करता. सो नाउ आई ऑलवेज ट्राई कि अगर किसी का मोबाइल बजता है, आई इमिजिएटली चेंज द कॉन्वर्सेशन एंड आई टेल एवरी वन वट अ वंडरफुल ट्यून, ना नाइस म्यूजिक द मोबाइल हैड, ताकि हर एक का माइंड भी यू नो ठीक हो जाता है. एंड आई रियलाइज कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, मोबाइल भले बजा था तो मोबाइल नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, हम जो इरिटेट हो जाते हैं,
0: क्योंकि हमने कहा था, हम एक फ्लो
1: हमारी
0: में थे.
1: बात नहीं मानी गई. इट्स मोर ऑफ दैट कि हमने जो कहा आपने हमारी बात नहीं मानी, हम इरिटेट हुए, उससे पूरा एनर्जी लेवल. तो जहां हम थोड़ा थोड़ा ऐसा इरिटेट होते हैं ना, इफ वी जस्ट स्टॉप एंड अपने आप, क्योंकि वो हैबिट बन रही है ना. इफ आई वुडेंट हैव चेक्ड माई सेल्फ, मैं हर प्रोग्राम में इरिटेट होती जाऊंगी. अब हर रोज या वट एवर सो फ्रीक्वेंटली प्रोग्राम हो रहे हैं, हर प्रोग्राम में इरिटेट हो आदत बनती जाएगी, एंड फिर इट इज समथिंग जो मुझे पता भी नहीं चलेगा, एंड वो मेरे को लगेगा इरिटेट होना तो नेचुरल
0: क्योंकि
1: ही
0: जो
1: है.
0: मैंने कहा फिर वो होना चाहिए.
1: यस
0: कि अगर मैंने कहा कि फ्लावर वास जो है वो यहाँ से
1: यस
0: यहाँ रखना चाहिए,
1: यस
0: तो वो वैसा ही रखा होना
1: होना
0: चाहिए,
1: चाहिए.
0: क्योंकि फिर मुझे इरिटेशन होनी चाहिए. कि समझ में नहीं आ रहा, फिर मेरी इरिटेशन, आई हैव
1: फिर
0: सीन
1: वो
0: दैट.
1: धीरे धीरे बढ़ती है. इसलिए जहां आप ये नोटिस कर रहे हो ना, क्योंकि होती है, लेकिन अगर नोटिस कर लिया और उस पर अटेंशन डाल दिया, एंड इट्स अ कॉन्वर्सेशन विद योर सेल्फ, अगर हम उनको बोल सकते हैं मोबाइल ऑफ करो, हम अपने को भी तो बोल सकते हैं इरिटेट मत हो. इट्स ऑल अबाउट गिविंग इंस्ट्रक्शन टू समवन, तो हमेशा इंस्ट्रक्शन दूसरों को क्यों?
0: तो हम इरिटेशन इरिटेट मत हो, अगर कहेंगे अपने आप को तो विल इट
1: Yeah,
0: वर्क.
1: it happened. That's what I shared this with you. Because I got irritated, you know, few times, every time I got irritated. And awareness है तो पता चल जाता है कि हम irritate हुए, हमें अंदर से अच्छा नहीं लगा जो हुआ. So I had to just sit back and say, today in today's program, अगर कोई मोबाइल बजेगा, I will just accept and I will see to it that not a single के. एंड क्योंकि नाउ आई टेक केयर, तो मैं इरिटेट नहीं होती, तो आई इमिजिएटली ट्राई कि सभी लोग भी उसको एक्सेप्ट कर ले. यू नो आप अगर इरिटेट होते हो तो बाकी तो वैसे ही रेडी बैठे हुए हैं इरिटेट होने के लिए. वो सब उसको जिनका बचता है ना, सारे टर्न करके उनको घूरते हैं, अननेसेसरली स्पॉइल्स द रूम. सी दिस एक्सेप्ट मीन्स कि आप उस चीज को स्वीकार कर लेते हो,
0: इट्स ओके.
1: इट्स ओके.
0: हाँ
1: क्योंकि होता क्या, जैसे ये मोबाइल वाली चीज में ओनली आई हैव नोटिस्ड, जिसका बजता है दे डिडंट डू इट डेलिबरेटली, मोस्ट ऑफ द टाइम वो भूल गए उसको ऑफ करना. तो जैसे ही उनका बजता है ना, पहले तो वो
0: उनको,
1: ही
0: हाँ
1: एकदम ऐसे हो जाते हैं, एंड देन दे ट्राई टू, यू नो स्पेशली द लेडी, दे विल ट्राई टू ओपन देयर पर्स, एंड वो सबकी जो एनर्जी उन तक पहुंचती है, उनको वो मोबाइल मिलता ही नहीं है उनके पर्स में. फिर मोबाइल में उनको पता ही नहीं चलता उसको ऑफ, यू नो इट, यू कैन जस्ट सी कि इरिटेशन का क्या इफेक्ट हो रहा है, कि जो चीज़ आप बहुत नॉर्म, क्योंकि वो ऐसे ऐसे करने लगते हैं, एंड दिस इज वॉट इज अ रिजल्ट, कि इरिटेशन से आपकी एफिशिएंसी एकदम. बट इफ यू एक्सेप्ट देम एंड यू से इट्स ओके, आपका मोबाइल बजा, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, यू नो टॉक अबाउट द मोबाइल, टॉक अबाउट, टेक योर टाइम, स्विच इट ऑफ, द पर्सन फील्स एक्सेप्टेड कि हाँ कोई मेरे से इरिटेट नहीं हुआ, तो वो भी उसको आराम से कर देते हैं. तो ये हमें ध्यान रखना है सबको आपस में एक दूसरे के साथ काम करते हुए, कि एक दूसरे को हम स्वीकार करें. एवरी वन इज डूइंग थिंग्स एट देयर पेस, इट्स ओके.
0: एंड इफ यू गेट सिनिकल या उसके ऊपर ऐसा कुछ सरकास्टिक सा कमेंट कर रहे हैं, इट डज नॉट मीन कि आपने एक्सेप्ट किया
1: ना,
0: है भी.
1: एक्सेप्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. तो इसलिए इरिटेशन जिन जिन बातों पर आपको हो, और कई चीज़ें बहुत स्पेसिफिक होती हैं जो हमें पता होती हैं कि ये चीज़ मुझे इरिटेट करती है.
0: अमेजिंग बात है. और हम अपने आप को जस्टिफाई करते रहे थे तो वो गलत क्यों कर रहा था, उसे पता नहीं था कि ऐसे नहीं करना चाहिए. वी एक्चुअली एंड वी डोंट इवन रियलाइज कि सो मच. हम जो भी पूरी बात कर रहे हैं, एक मूल मंत्र हमें याद रखना है कि ध्यान अपना रखना है.
1: क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं ना, आपको सारा दिन में कितने लोग मिलने हैं, कितनी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, कितनी हैबिट्स हैं, और अगर हर हैबिट का, हर छोटी छोटी बात का, कंप्यूटर का, किस चीज़ों का मुझ पर इतना इम्पैक्ट पड़ेगा, तो माय विल पावर, सी वन मोबाइल रिंगिंग, अगर मुझे वो ऐसे डिस्टर्ब कर सकता है, लुक एट द पावर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया. एक कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा और उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, तो मेरा अपना सेल्फ कंट्रोल कहाँ तक आकर पहुँचा है. और जब फिर इतनी छोटी छोटी बातें मुझ पर टेक ओवर कर लेंगे, यू नो आई विल हैव नो पावर लेफ्ट. तो कॉन्शियसली ये हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी
0: क्योंकि
1: है
0: सिर्फ मेरे से जुड़ी
1: या
0: है ना ये
1: कुछ
0: तो।
1: भी नहीं करना है. नेक्स्ट टाइम आप कंप्यूटर पर बैठें या नेक्स्ट टाइम आप ऐसी कहीं चीज़ पर हैं जहाँ आपको लगे, जस्ट स्टॉप एंड टेल योर सेल्फ इट्स ओके, इट विल हैपन ओनली इन इट्स ओन टाइम. यू नो उसका समय है, वो उस समय पर होने वाला है. आई एम नॉट वेस्टिंग एनर्जी, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके ऊपर सारा दिन बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो ये इरिटेशन फिर बढ़ती
0: हम
1: जाती बढ़ती
0: कॉन्जर्वेशन ऑफ
1: जाती.
0: टाइम की बात करते हैं ना, तभी तो इरिटेशन हो रही होती है कि जल्दी नहीं हो रहा, जल्दी नहीं हो रहा, जल्दी। तो समवेयर वो टाइम तो अपना लगेगा ही लगेगा।
1: यानी टाइम मैनेजमेंट पे जो हम बहुत बड़ी आज इसको भी तो इशू बनाया हुआ है कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम है क्या? टाइम कोई स्थूल चीज़ तो फिजिकल चीज़ है नहीं जो आप उसको मैनेज कर सकते हैं. व्हाट इज टाइम? टाइम इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है, ये टाइम है. इवेंट मैनेजमेंट हो गया. टाइम मैनेजमेंट मीन्स सिचुएशन मैनेजमेंट. सिचुएशन मतलब परिस्थिति और लोग, तो सिचुएशन एंड पीपल मैनेजमेंट. परिस्थिति और लोग तो हमारे कंट्रोल में
0: है ही
1: है
0: नहीं,
1: ही
0: उन्हें हम
1: नहीं,
0: मैनेज कर ही नहीं
1: तो फिर
0: सकते।
1: किसको मैनेज करना? सेल्फ
0: मेरे
1: मैनेजमेंट.
0: रिस्पॉन्स इसका मतलब बोलो।
1: टाइम मैनेजमेंट इज ओनली थॉट मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट. देयर इज नो थिंग एज टाइम मैनेजमेंट. आपने बहुत सारा अच्छा शेड्यूल बना लिया, 8 से 9 ये, 9 से 10 ये, 10 से 11 ये, आप इतना सा डिस्टर्ब हुए ना बीच में, सारा आपका टाइम शेड्यूल इट विल जस्ट गो हेवायर. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टेबिलिटी से चले. टाइम तो कोई कमोडिटी है ही नहीं, हमने उसको एक कमोडिटी बना दिया जिसको हमें मैनेज करना है. नथिंग. टाइम मैनेजमेंट क्या है कि हर सिचुएशन राइटली स्मूथली चलती जाए. दैट विल ओनली हैपन जब यहाँ स्मूथनेस है, स्टेबिलिटी है, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क.
0: यू नो वेरी ट्रू एक्चुअली, कि हमने ये रियलाइज ही नहीं किया। और सबसे बड़ी बात जो हमने आज बातें भी की हैं, इन्हें हमने, ये तो बहुत बड़े बिलीफ सिस्टम से, डेफिनेटली आई कैन एक्चुअली टोटली एग्री कि हमने एंगर का जो एक आउटबर्स्ट था उसको हमने कभी भी सही नहीं माना था, हम सब जानते थे, लेकिन हमसे वो मैनेज ही नहीं हो रहा था। तो क्योंकि हमारी ये जो छोटी छोटी हैबिट्स, तो एक तो है इरिटेशन, उसके बाद फ्रस्ट्रेशन जो होने लगती है।
1: यस,
0: इज इट सिमिलर और
1: इट्स
0: लाइक
1: नॉट सिमिलर. फिर वो बिल्डअप, यू नो इट्स लाइक 99 बुखार है तो वो इरिटेशन है. आपने उसको उस लेवल पर उसका इलाज नहीं किया तो फिर वो धीरे धीरे तो बढ़ने ही वाला है. तो जो सेकेंड फॉर्म ऑफ एंगर है, ये सब फॉर्म्स ऑफ एंगर है, यू नो गुस्से के अलग अलग प्रकार है, वो है फ्रस्ट्रेशन. इरिटेशन तब था जब चीज़ें मेरे यू नो समय के अनुसार नहीं हो रही थी. एंड फ्रस्ट्रेशन गोज़ वन लेवल हायर वेयर थिंग्स एंड पीपल आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू माई वे. यू नो हर एक को मेरे अनुसार काम करना चाहिए, मेरे अनुसार चलना चाहिए, मैंने जितना सोचा उतना परफॉर्म करना चाहिए. इसमें एक्सपेक्टेशंस का
0: बहुत
1: बहुत बड़ा
0: स्ट्रॉन्ग।
1: रोल आ जाता है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस जहाँ मीट नहीं होती तब मैं फ्रस्ट्रेट होती जाती हूँ. एंड एक्सपेक्टेशंस लोगों से भी और एक्सपेक्टेशंस अपने आप से भी. कई बार बहुत सारे लोग इसलिए भी फ्रस्ट्रेशन में रहते क्योंकि वो अपनी ही एक्सपेक्टेशंस को नहीं मीट कर पाते. तो फ्रस्ट्रेशन में भी बाहर नहीं निकलता कई बार बहुत ज़्यादा, लेकिन अंदर ही अंदर यू नो वो अक्यूमुलेट होता जा रहा है कि लोग एंड सिचुएशन मेरे अनुसार चलने चाहिए. तो जहाँ भी वो मेरे अनुसार नहीं चलेगा आई गेट दैट फ्रस्ट्रेशन. एंड क्योंकि मेजोरिटी मेरे अनुसार
0: चल
1: चलने
0: ही नहीं
1: नहीं
0: रहे।
1: वाले हैं तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल आज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हमारा.
0: वेरी ट्रू। यू नो समवेयर वी नीड टू रियलाइज। और आज हमने भी बहुत सी बातें और एंगर से जुड़ी हुई करनी थी, लेकिन आज जो हमने बात पकड़ ली, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट केम, लेकिन आई थिंक आई रियलाइज इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट कि सुबह जो है वो मेरी अपनी है। आई रियली अंडरस्टैंड, इनफैक्ट पूरा दिन हमारा अपना है। अपना ध्यान रखने के लिए मुझे वो जो सुबह का सिनेरियो है उसे रिक्रिएट करना है, एक ऐसा बिलीव सिस्टम लेकर चलना है कि इट्स नॉट नेचुरल। यू नो माई नेचुरल मॉर्निंग इज गोइंग टू बी पीसफुल विद माई चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, और मैं जो है वो जहाँ पे भी जाना है, अगर मुझे घर पे ही रहना है या बाहर ऑफिस पे भी जाना है, तो वो एक बहुत स्मूथली जाया जा सकता है। और जो दूसरी बात इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन की बात अगर हम करते हैं सचिवानी, हमने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है। जब टाइम के अनुसार काम नहीं हो रहा तब हम इरिटेट हो रहे होते हैं, और जब लोग हमारी तरह काम नहीं कर रहे तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। ये दो चीज़ें हम समझ लें, रुक जाएं, ज़रा से भी इरिटेशन, और आई थिंक हमें बहुत बार रुकना पड़ेगा, लेकिन एक दिन हम ट्राई करें, एक दिन है हमारे पास जिसमें हम ट्राई करके देखेंगे कि हम इरिटेट ना हों, और वो अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि हम इरिटेट तो कंप्यूटर से हो रहे होते हैं, तो कंप्यूटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि हम इरिटेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सो अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपने लिए ये करके देखें, और फिर उसका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है हम चेक कर पाएंगे कि कहाँ तक पहुँचता है। थैंक यू सो मच आज की इस पूरी बातचीत। ओम शांति। ट्राई आपको करना है, ट्राई हमें करना है, हम साथ मिलकर ये कोशिश करेंगे, क्योंकि ध्यान तो हमें अपना रखना है ना। हम बार बार ये कहते हैं कि हम सबका ध्यान रखते हैं, हमें नहीं पता था कि हम क्यों अपना ध्यान नहीं रख पाए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कैसे रखना है। अब हमें प्रोसीजर पता चल गया है, जैसे ही हमें पता चल जाती हैं चीज़ें हम अपने लिए कर सकते हैं, कोई और दूसरा इन्वॉल्व नहीं है, किसी को साथ लेकर नहीं चलना, सिर्फ अपने साथ ये काम करना है। क्यों ना हम अपने साथ आज एक प्रॉमिस करें कि हम ये ज़रूर करेंगे, ट्राई करके देखेंगे। कोई मन में बात उठ रही है, कोई सवाल है, कोई अनुभव है, कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है इसको करने के लिए, आप हमारे साथ शेयर कीजिए। आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। आज तो बात हमने की इरिटेशन की, फ्रस्ट्रेशन की, लेकिन एंगर से जुड़ी बहुत बड़ी बातें अभी भी हैं। बहुत ऐसी ऐसी बातें जो डीप हैं, जिसमें रिजेंटमेंट आती है, नफरत आ जाती है, हेट्रेड है, जिसे हम पकड़ कर बैठे हैं। कैसे उसे छोड़ना है खुद का ध्यान रखने के लिए, आने वाली कड़ी में बात करेंगे। आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में। तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इन दिनों हम ये बात कर रहे हैं कि जिंदगी जीते जीते कितनी बार ऐसा होता है कि हम हर्ट हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि जैसे किसी ने कोई गलती की है तो न्याय होना चाहिए, उसे पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन पनिशमेंट कौन देगा? क्या हम पनिशमेंट दे सकते हैं और पनिशमेंट क्या होनी चाहिए? ऐसे ही कई एस्पेक्ट्स हैं ज़िंदगी की, वो बातें जिन्हें आज तक हम स्वीकारते चले आ रहे थे कि यही नॉर्मल है, उन्हें एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, हमने बात ये की थी कि जब हम हर्ट हो जाते हैं तब कई बार मन करता है कि पहला रिएक्शन ये होता है कि आई वॉन्ट टू गिव बैक, और वही रिवेंज का, चाहे वो छोटे से छोटा एस्पेक्ट ले लें या क्रिमिनल जब बनते हैं तब भी वो एस्पेक्ट। और फिर बात आ जाती है कि पनिशमेंट की। न्याय ये कहता है, कानून ये कहता है कि अगेन छोटे से छोटा गलती, छोटे से छोटी गलती हो या फिर बड़े से बड़ा क्राइम, सज़ा बहुत ज़रूरी है। लेकिन सज़ा का एक बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट हमने पिछली बार बात की थी। जहाँ तक क्राइम की बात है, बहुत से लोग हैं जिनके पास अब ये सवाल ये है कि अगर क्राइम घटता है, अगर क्रिमिनल जिसे कहते हैं अपराधी ने अपराध किया है, तो फिर क्या करना चाहिए उसके साथ?
1: क्रिमिनल शब्द ही, जैसे हमने देखा कि वो हम किसको देते हैं। हम सब कहीं ना कहीं उस तरह से सोचते हैं, लेकिन किसी ने उसको कर्म में ला दिया तो हमने उसको क्रिमिनल टैग दे दिया। क्रिमिनल किसको हमने वो टैग दिया? हम में से ही कोई एक व्यक्ति, एक ह्यूमन बीइंग जो है अपने आप में एक बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा, लेकिन अपने आप को भूला हुआ है, अपने आप को भूल चुका, लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके को भूल चुका, एंड हाउ दिस होल वर्ल्ड वर्क्स ही हैज़ फॉरगॉटन। सो ही इज़ लिविंग इन अ यू नो इग्नोरेंस, वो अज्ञानता की नींद में जिसको कहते हैं चल रहा है, और उस अज्ञानता के कारण से उससे कोई ऐसा कर्म हो गया है, चाहे वो क्रोधवश है, लोभवश है, लेकिन वो अज्ञानता से हुआ है और वो कोई ना कोई बात से अभिज्ञ है, उसे स्मृति नहीं है। अब वो स्मृति वापस लानी है। सो इट्स बेसिकली अ बिलीफ सिस्टम which is a wrong belief system. He has forgotten the truth. सत्यता भूल चुका है और किसी wrong belief system पे उसका thought चल रहा है। और ये सिर्फ so-called criminal के साथ नहीं, ये हम सब के साथ होता है। हमारी इस पूरी series में ही हमने अपने कितने सारे wrong beliefs लिए हैं। तो criminal thinking ये हम सब की चलती है, एंड किसी की थिंकिंग बिहेवियर में आ जाती,
0: कन्वर्ट हो जाती
1: है। देयर आर सो मेनी बिलीफ्स व्हिच वर्किंग इन ईच वन ऑफ अस। लेट्स से फॉर एग्जांपल द बिलीफ इज दैट द मोर आई हैव द मोर हैप्पी आई विल बी। अब ये मेरी बिलीफ है कि मेरे पास जितना होगा या मेरे जो दूसरों के पास है
0: वो मेरे पास
1: होगा, वो मेरे पास अगर होगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अब ये एक बिलीफ है। इस बिलीफ को हम में से कितने लोग नहीं सोचते हैं कि जो उसके पास है वो अगर मेरे पास होगा तो मुझे खुशी मिलेगी। सत्यता क्या है?
0: खुशी तो मुझे अपने आप से मिलती
1: है, अपने आप से मिलती है, लेकिन ये सत्यता ना जानने के कारण हमसे कोई ना कोई अपराध हो जाता है। क्योंकि जितने भी क्राइम्स हम हैं वो कितने सारे इस बिहेवियर पर बेस्ड है। सो द बिलीफ इज कि जो औरों के पास है वो मेरे पास होना चाहिए, और सत्यता क्या है कि मैं अपने आप में ऑलरेडी खुश हूँ। बिलीफ है कि दूसरे मेरे दुख का कारण है, दूसरों ने मेरे साथ गलत किया, दूसरों ने मुझे धोखा दिया। इस बिलीफ को लेकर कितने अपराध आज होते हैं।
0: एक्चुअली जब ये बिलीफ इतना हावी हो जाता है सो देन वी,
1: लेकिन है तो हम सबके साथ ना। है तो ये बिलीफ सबके साथ। और सत्यता क्या है कि कोई मुझे दुख नहीं दे सकता, कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। सक्सेस क्या है? सक्सेस है कि हम जितना अक्यूमुलेट कर लें, जहाँ हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, वो सक्सेस है। इस एक को लेकर आज कितने अपराध हो रहे हैं, कितने सारे आज हम जो पढ़ते हैं न्यूज में या जितने इंसिडेंट्स आज हो रहे हैं दिल्ली शहर में, कि जो डोमेस्टिक हेल्प है घर में वो अपने ही जिनके लिए वो काम कर रहे थे उनको मार देते हैं। फॉर व्हाट?
0: एक्युमुलेशन एंड एंगर, मेजर एंगर बहुत बार देखा गया है।
1: एब्सोल्युटली। तो अक्यूमुलेट करने के लिए, वेल्थ अक्यूमुलेट, मेजोरिटी क्राइम्स वेल्थ अक्यूमुलेट करने के लिए हो रहे हैं। और सत्यता क्या है? दैट यू डोंट नीड एनी ऑफ दिस। सक्सेस इज क्या? हमारी इंटरनल सेटिस्फैक्शन। तो कितने सारे ये रॉन्ग बिलीफ्स ही हैं, और वो रॉन्ग बिलीफ जब इतने बड़े इस तरह से कर्म में आ जाता, वी विल कॉल देम अ क्रिमिनल। अब उनको जिसने इस तरह की कोई गलती की, उनको दुनिया से दूर कर देना, उनके घर के लोगों से दूर कर देना और एक कटघरे में बंद कर देना सिर्फ, उससे उनके बिलीफ में परिवर्तन नहीं आएगा। तो उनकी हीलिंग के लिए, बिकॉज आफ्टर ऑल वी वॉन्ट कि वो जो पर्सनैलिटी वापस आएगी आफ्टर द सो कॉल्ड पनिशमेंट, दैट शुड बी अ हील्ड पर्सनैलिटी, रिफॉर्म्ड पर्सनैलिटी। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम कुछ नहीं करते। तो वो आत्मा ऑलरेडी इग्नोरेंस में है और हम भी एक और इग्नोरेंस का कर्म करते जब हम कहते पनिशमेंट से परिवर्तन हो जाएगा। तो ये भी तो एक इग्नोरेंस है। पनिशमेंट से कौन सा परिवर्तन आज दिन तक हुआ? तो ये सिर्फ सो कॉल्ड क्रिमिनल के लिए नहीं, लेकिन बचपन से लेकर जो आज हमारे बच्चों के साथ भी इस तरह से पनिशमेंट देकर सिर्फ परिवर्तन करने की कोशिश करते, उसके ऊपर थोड़ा सा हमें मंथन करना होगा।
0: बहुत से हमारे दर्शक हैं जिनके दिमाग में ये सवाल आएगा कि तो फिर जब अपराध हो रहा है तो अपराधी को क्षमा कैसे किया जाए? अपराधी को अपराध की सज़ा तो मिलेगी ही, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करना ज़रूरी है। इतना अपराध क्योंकि उसने कहीं ना कहीं वायलेट किया है दूसरे की इंडिपेंडेंस,
1: दैट इज ट्रू,
0: है ना, दूसरे की, कहीं ना कहीं दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे कुछ हो, कहीं ना कहीं ही इज रिस्पॉन्सिबल।
1: We are not saying that you know the judiciary system doesn't work and all this should not be there. But the thing is ki ek bar you have got the person in your custody, ab aapne kya karna hai unke sath? Usme aapke paas bahut sara potential hai ki sirf ye nahi ki unke andar jo anger hai, resentment hai, usko aur badhne de, unko heal kare. The so-called prison area can be more like a counseling center. It can be more like a healing center. जहाँ क्योंकि personality disorder है ना, तो उसके लिए हम क्यों नहीं कुछ करते? Because that's not only for them, it's for each one of us. लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो bitterness से नहीं, लेकिन healed होकर बाहर।
0: Actually उनके साथ तो बहुत ही बुरा ना सिर्फ सलूक किया जाता है, attitude में, हमारी पूरी सोच में ही जहाँ अपराधी की बात आती है, जहाँ जेल की बात आती है, वहाँ हमें घृणा, एक घृणा से भर जाते हैं हम।
1: ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम, क्योंकि हमारा भाव क्या है, पनिशमेंट जब हम दे रहे हैं उसका भाव क्या है? सुधार लाना। पनिशमेंट हम इसलिए देते हैं ताकि व्यक्ति फिर से वो चीज ना करे, लेकिन उसके लिए हम कोई मेजर नहीं उठाते, सिर्फ उसको दुनिया से दूर एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपने रख दिया, उससे वो कर्म फिर से नहीं करेगा, देयर इज नो गारंटी, क्योंकि अंदर की हीलिंग तो हुई नहीं, उसने उसके परिवर्तन के लिए हमने कोई स्टेप उठाया नहीं। सो दैट इज समथिंग यू नो वी हैव टू टेक केयर ऑफ, एंड उसके लिए चाहिए कि जहाँ पे भी सब हैं वहाँ पे देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ एजुकेशन, अ लॉट ऑफ लर्निंग एंड अ लॉट ऑफ काउंसलिंग एंड अ लॉट ऑफ हीलिंग। एंड दिस सिस्टम इज नॉट फॉर क्रिमिनल्स बट फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर ईच वन ऑफ अस। जो आज गलतियाँ अगर हमारे से होती हैं तो जो हमारे साथ हैं उनकी ये एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सिर्फ पनिश ना करें या सिर्फ रिवेंज ना लें। वो रॉन्ग मेथड क्यों हो जाता है? बिकॉज वो हमारे अंदर की बिटरनेस को और बढ़ा देता है। हमें इवन ऑफिस में, आपने ये गलत काम किया, आपके अगेंस्ट ये एक्शन लिया जाएगा। इट्स ऑलवेज एक्शन लिया जाएगा आपके अगेंस्ट, उससे क्या रिजल्ट निकलेगा? बिटरनेस और बढ़ती जा रही है, दूरियां और बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो मेथड वर्क नहीं कर रहा है, वी नीड टू वर्क ऑन दैट, कि मेथड ऐसा होना चाहिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। इट्स नॉट एक्शन लिया और यू नो कि ठीक है ये पनिशमेंट दे दी, ये हमने एक्शन लिया, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया,
0: उससे और रिजेंटमेंट, कहीं ना कहीं एक गुस्सा जो है वो कंटिन्यू सिमर रहता है।
1: तो अभी हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि गुस्से को और ये सारा जो अंदर बिटरनेस है इसको खत्म करना है, बट एक्चुअली हम जो कर रहे हैं उससे वो बढ़ रहा है। यू नो ऑफिस में भी कहेंगे डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन मीन्स यू वॉन्ट टू डिसिप्लिन द पर्सन, हैव यू रियली सक्सीडेड?
0: वही इसलिए मान लिया हमने कि भय से डिसिप्लिन हो जाता है।
1: अगेन
0: दिस इज अ मेजर बिलीफ विद व्हिच वी आर वर्किंग, कि भय से ही डिसिप्लिन हो सकता है, भय जो है वो काम करवा सकता है, भय से आप कोई क्राइम भी नहीं करेंगे। एक और मुद्दा जो उठता है वो है कि एक बार माफी वाला फैक्टर जो है कि एक बार मिस्टेक को आप माफ कर सकते हैं। इवन ये भी कहते हैं कि कृष्ण भी जो है 99 टाइम्स माफ कर देते थे, 100वीं बार जो था he said that it has to be punished. So बार बार जब repetition of the same mistake happens, then
1: तो बार बार repetition of the same mistake is happening because nobody is working on that person. आपको कहीं ना कहीं तो किसी को समय निकालना पड़ेगा ना उसके लिए, किसी को बैठकर चेक करना पड़ेगा कि why is that mistake happening? Because it's a deep rooted संस्कार। तो मिस्टेक वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो उससे होती जा रही है। हो सकता है कई बार आप देखो, हम अपने आप से नहीं होता, हम कितनी बार डिसाइड करते हैं कि गुस्सा नहीं करना फिर भी करते हैं, हम कितनी बार डिसाइड करते हैं कि हर्ट नहीं होना फिर भी करते हैं, तो 99 बार करते हैं या उससे ज्यादा बार करते हैं।
0: लेकिन सिस्टर शिवानी, अगर बात यही आ जाती है कि हम ये कहते हैं कि हम अपने ऊपर तो काम कर नहीं पा रहे, अब उनके साथ काम, और उनके साथ मतलब क्योंकि हमने उन्हें बिल्कुल एक उस कैटेगरी में डाल दिया, खासकर क्रिमिनल्स की अगर हम बात करें, उनके रिफॉर्म्स की या उनके ट्रांसफॉर्मेशन की बात तो हम कभी सोच ही नहीं पाते। और इसी तरह से जुवेनाइल क्राइम जो है, वो बच्चे जो क्राइम करके रिफॉर्म हाउसेस में जा रहे हैं, दे आर आल्सो यू नो।
1: आप देखो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था शूट आउट का स्कूल में, जो गुड़गांव में हुआ, द होल स्कूल मतलब जितने बच्चों ने उस इंसिडेंट को विटनेस किया उस टाइम पर, दे वेंट इनटू अ डिप्रेशन। अब उन बच्चों के लिए जिन्होंने वो शूट आउट को देखा, उनके लिए बहुत काउंसलिंग हुई, साइकाइट्रिस्ट आए, लेकिन उस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं हुआ जिसने एक्चुअली वो मर्डर किया था, क्योंकि उस बच्चे को अब एक बच्चा ना देखकर
0: एक क्रिमिनल
1: कर दिया। बाकी सब बच्चों के लिए हुआ, और सबसे ज्यादा किसको जरूरत थी? सबसे ज्यादा उस बच्चे को जरूरत थी, उस बच्चे के लिए नहीं कुछ किया गया।
0: Why is it? Why do we have hatred?
1: Hatred आ गई ना, compassion खत्म हो गया, प्यार खत्म हो गया, क्योंकि हमने टैग कर दिया, they are bad people। जैसे हमने, क्योंकि हम गुड और बैड के लेबल्स लगा देते हैं बहुत जल्दी, तो वी डोंट अंडरस्टैंड कि द एक्शन इज डिफरेंट एंड द पर्सन इज डिफरेंट। एक्शन गलत किया है, एब्सोल्युटली कर्म गलत किया है, लेकिन हमने बैड पीपल की कैटेगरी में उनको डाल दिया, फिर उनको काउंसलिंग या हीलिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो
0: है ही खराब,
1: तो खराब लोग हैं। अब जब बहुत सारे वो बच्चों से बात की गई, तो ये पता चला कि क्योंकि जैसे बुली सिस्टम या रैगिंग सिस्टम है इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हम लोग तो कितनी बार जैसे मन ही मन ये सोचते हैं कि मैं तो मार दूं इसको, या हम आपस में भी बात करते हैं मेरा बस चले कि मैं तो मार दूं इसको। यू नो, हम लोग भी आपस में जब बात करते हैं, अगर किसी से हमें बहुत नफरत है या बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं मार दूं इसको,
0: किल हिम, आई वांट हिम डेड, यू नो, कितनी बार, दैट मींस
1: द थॉट इज देयर विद सो मेनी of us. तो इतने सारे बच्चों ने कहा कि हमारे अंदर ये thought आती है। अब किसी बच्चे ने वो thought को implement कर दिया, लेकिन वो भी उन्हीं की तरह है। और इस समय उससे शायद सबसे ज़्यादा, क्योंकि the pain that he will be going through, so punishment is not, you know, just that separating them from everybody and he'll reform.
0: Loneliness जो उसको,
1: what will be the future of that child? So that somewhere the entire education system, parents, judiciary system, everybody needs to start working on that little bit. Ke counseling, healing, ye bahut important hai saath mein. Aap action, jo judiciary action hai, wo to lenge. Lekin ek bar wo aapke paas aa gaye, phir aapko unke saath kya karna hai, wo bahut important ho jata. Reform karne ke liye actually kya chahiye hota hai? Jaise aapne kaha, ek to motivation. कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे, या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे, तो हम औरों के लिए कहां से करेंगे? और दूसरा टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
0: एंड देन अगेन माइंडसेट्स हैं कि क्रिमिनल्स कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो सपोजिटली लोअर वर्कर्स हैं, दे नेवर चेंज, यू नो, दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस,
1: लेबलिंग। अगेन लेबलिंग, तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे, तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो, बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
0: आई थिंक, और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है, जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूस अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
1: हूँ। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है, वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है, अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है, तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है, क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का. दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं. नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया, सो कॉल्ड जैसे हम सोचते, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम. एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग, लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया.
0: Because I empathized with that victim.
1: Yeah, but I could feel the pain, ना? मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती. जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देखकर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया ये मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया. Let it go. Let the pain go. जैसे ही पेन चला जाएगा, I will be able to see that person as the person is, without judgment. Without that good, bad, right, wrong. वो judgmental नहीं होना है. हम उसके साथ, जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है, उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं. उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया. When I understand कि मेरे अंदर क्लैरिटी आई है कोई, मुझे जो चीज़ें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, नाउ आई ओनली हैव टू एम्पावर. रिफॉर्म नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है. वो भी मेरी तरह ही आत्मा है, लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है. लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूँ. क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, देयर यू गो.
0: जैसे ही हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला, जैसे मैं हूँ वैसी देखा, बट आई थिंक
1: तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी. और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है. जैसे वो थॉट क्रिएट कर लिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम. वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी माई सेल्फ, लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है. और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी, क्योंकि उस समय क्या हो गया, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दें, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे. हमें नहीं करना. सोल कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर, एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं, एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
0: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
1: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है, लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे तो उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी, और आत्मा के जो गुण हैं वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विद इन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं, तो बहुत इजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है.
0: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त तो, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है.
1: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला, ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा. तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल. And that will bring about empowerment.
0: That's wonderful. Actually, अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे crime जो scenes हैं, और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई criminal है. Thought में नहीं, मतलब action में नहीं तो कहीं ना कहीं thought में तो है ही, लेकिन action में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति criminal नजर आ रहा है. यहाँ अगर हम क्राइम के सीन से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह।
1: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं तो मेजॉरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है वो संस्कार और भी ज़्यादा कड़क होता जाता है। जो हम यू नो कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत ज़िद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं यू नो वी यूज़ अ शॉर्टकट मेथड because again lack of time, lack of patience, and more than that I think lack of awareness myself.
0: I don't know. See, that's the biggest thing. क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे एटीट्यूड से।
1: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे। और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यू नो जब कोई सामने से गुस्सा करता है, नाउ फॉर एग्जाम्पल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा गुस्सा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है। तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है। So now you cannot have hatred, you will have compassion. वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है। अब वही बात हो गई, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चले जाऊं तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा, और फिर मैं उनको और दर्द दूं। बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया। It's become a cycle. And then it is, how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. So who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And isiliye jo hum kehte hain meditation ke liye time nahi hai ya I don't have time for myself, what we don't realize is it's not just for myself, it's for my family also.
0: For my all loved ones, you know, जिनके लिए मैं जिंदगी देने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ, अनअवेयरनेस में मैं कहाँ तक कितना नुकसान। रिश्तों की बात करें, मतलब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियाँ, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहाँ पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में,
1: You need only one. कई बार घरों में लोग कहते हैं ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे। One person has to take up the responsibility. और वो एक करे उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की।
0: और उस एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ, यू नो समवेयर ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूँगा, मैं ही कर रहा हूँ।
1: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ, लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी, इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही,
0: और ये मेरे लिए जरूरी
1: है, वे दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग। अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग। और सफरिंग किसके लिए, बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है, नुकसान किसका है, उनका, वो भूल चुके, अपना। तो सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है। इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए, बॉटम लाइन, आई क्रिएट माय ओन सफरिंग, टिल व्हेन,
0: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक,
1: लेट मी स्टॉप नाउ, नोबडी क्रिएट सफरिंग फॉर मी, नोबडी कैन कॉज मी पेन, only and only me. So how much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then mere ko lagta hai 10 minutes apne liye nikalna
0: mushkil nahi hoga, bilkul nahi. In fact that's it. ye to hum understand kar hi chuke hain aur ab har bar aur clarity se aata ja raha hai ki meditation is empowering my own self. You know, healing ki hum baat kar rahe the, na sirf healing apne liye, pure parivar ke liye, aur gradually pure samaj ke liye. Jo ab baat ye karte hain ki hum samaj seva karna chahte hain, to ye, this is the way actually to go out and you know like first is understanding yourself. So Sachivani, aaj ki is baatcheet ne kai paripeksh tode hain, ek naya andaaz diya hai zindagi ko dekhne ka, aur kis tarah se crime ya criminals ko dekhna hai bade paripeksh mein dekhe to wo bhi badal raha hai. Aapka bahut bahut dhanyawad.
1: Om
0: Shanti. बहुत कुछ हमारे आसपास हो जाता है, चाहे वो समाज में हो या फिर घर में, एक ही अंदाज से अभी तक हम देखते आ रहे थे. देखने का नज़रिया अगर थोड़ा सा बदला जाए, जहाँ हम ये कहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है या किसी और के साथ गलत हुआ, और ऐसे में जिसने गलत किया है उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, तो एक बार फिर खुद को टटोलें और जिस परिप्रेक्ष्य में आज हमने देखा है क्राइम को, क्रिमिनल को और पनिशमेंट को, उसे कुछ देर बैठ के अपने साथ रखें और ये समझने की कोशिश करें कि क्या वो परिपेक्ष सही है. अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में अब वक्त है कि आपसे विदा लें, लेकिन इसी वादे के साथ कि ये सफ़र खुद को पहचानने का और पूरी ज़िंदगी को जो जिन रॉन्ग बिलीफ्स पे या जिस बिलीफ सिस्टम पर हम अभी तक ज़िंदगी जीते आ रहे हैं, जहां उसने हमें हील नहीं किया है, एक ऐसे प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें हीलिंग की तरफ लेकर जाएगा. फिर होगी मुलाकात. दीजिए इजाज़त. ओम शांति.

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में, कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए, भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है, आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे, उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है, क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है, कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: FM रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम, और आज के हमारे गेस्ट का हम स्वागत करेंगे। सबसे पहले यशस्वी भारत के इस खास मेहमान का स्वागत इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि ये वैसे तो खास है ही, लेकिन इन्होंने अपनी खासियत के द्वारा एक बहुत बड़े समाज के उस वर्ग का जीना आसान किया है जिनके प्रति लोगों की कई भ्रांतियां होती हैं। अक्षय भटनागर एक ऐसा नाम है जिसने अपने नाम का यथार्थ परिचय लोगों को दिया है, और अक्षय भटनागर जी के साथ उनकी माता जी प्रतिभा भटनागर जी भी आज हमारे साथ है। आप दोनों का हम हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार अक्षय जी, नमस्कार प्रतिभा जी।
4: नमस्ते, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: प्रतिभा जी आप कैसे हैं?
4: मैं बहुत अच्छी हूँ।
3: तो हमारा यशस्वी भारत कार्यक्रम बड़ा खास है क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए हम हमारे श्रोताओं तक उन लोगों को पहुंचाते हैं, उन लोगों की कहानियां पहुंचाते हैं जो कि कुछ भी करके किसी भी एक फील्ड में किसी भी एक एस्पेक्ट में जीवन का कुछ करके एक उदाहरण तैयार किया है, और वो इतने उदाहरणीय बने हैं कि भारत सरकार ने राष्ट्रपति सम्मान द्वारा उनको सम्मानित किया है। तो हमारे अक्षय भटनागर जी जो है वो न केवल राजस्थान का गौरव है लेकिन साथ ही साथ भारत में भी उन्होंने अपना यश फैलाया है। आपने खेलों के द्वारा एक विशेष व्यक्तित्व है, आप एक स्पेशल चाइल्ड होने के बावजूद भी आपने खेल के द्वारा अपना नाम, अपने परिवार का नाम और राजस्थान का नाम आगे बढ़ाया है, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय जी आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी फेवरेट हॉबीज क्या है, आपको क्या क्या करना पसंद है?
5: मुझे चेस खेलना पसंद है।
3: अच्छा, और कब से खेल रहे हैं आप चेस?
5: 2 साल से। हाँ, तो चेस ही खेलता हूँ सिर्फ।
3: और पहले क्या क्या खेलते थे?
5: पहले शॉर्ट पुट खेलता था, जेवलिन, डिस्कस।
3: और ये सब खेलने में आपका रुचि कैसे हुआ? लोग तो ज्यादातर क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो आपकी रुचि जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट थ्रो, इन सब में कैसे आई?
5: सही,
3: आपको किसने बताया कि ये खेल बहुत अच्छा होता है, ये खेलना चाहिए? आपके माता पिता ने बताया?
5: हाँ।
3: तो दोस्तों अक्षय जी के साथ उनकी माता प्रतिभा जी भी हमारे बीच में है, आइए सुनते हैं उनसे कि अक्षय जी की कहानी क्या रही है अब तक की। प्रतिभा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने न केवल अक्षय जी को अक्षय बनाया लेकिन तमाम अक्षय जो आज भारत में है उन सब तक आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है अपने बेटे के जरिए कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और जहाँ उम्मीद की रोशनी है वहां पर जरूर उजाला होता है, और उस उजाले से फिर सिर्फ उस एक व्यक्ति, उस एक परिवार का नहीं लेकिन समाज का दिग्दिशा बदल सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो रेडियो मधुबन के पूरे परिवार की तरफ से।
4: थैंक यू सो मच जो आप हमें ये अवसर दिया।
3: जी आपसे जानना चाहेंगे आपकी कहानी साथ ही साथ अक्षय जी की कहानी, क्योंकि ये कहानी तो जुड़ी हुई लगती है बिल्कुल, इसलिए अगर आप सुनाए ये कहानी तो बहुत अच्छा होगा।
4: बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि हमारा जीवन तो इसी के आसपास ही गुजरता है। 92 में इसका बर्थ हुआ था और 2-3 साल तक तो हमें ज़्यादा कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ था, लेकिन हाँ स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट इसका नहीं हुआ था जैसे कि दूसरे नॉर्मल बच्चों का होता है। बोलना नहीं सीख पाता था, अपनी बात नहीं बता पाता था, लोगों से मिक्सअप नहीं होता था, हम अगर कोई पूछे तो जवाब नहीं देता था। तो हमें लगा कि क्या सुनाई नहीं देता क्या इसको जो ये जवाब नहीं देता। फिर हम इसे एक बार हॉस्पिटल भी ले गए, वहाँ पे इसका ऑडियोमेट्री टेस्ट हुआ, तब पता चला कि सुनाई देने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वहाँ पे एक स्पेशल एजुकेटर थी जो स्पेशल स्कूल में भी जाया करती थी, उन्होंने बताया कि इससे सुनाई देने की समस्या नहीं है बल्कि इसे ऑटिज्म है। ये 96 की बात है, 96 में आप खुद भी समझ सकते हैं कि ऑटिज्म को लेके क्या जानकारी थी, जब आज 2024 में ही जानकारी बहुत ही कम है, या तो जिनके बच्चे ऐसे हैं उन्हें पता है, या फिर जो इस फील्ड में काम करते हैं या डॉक्टर्स, इवन सारे डॉक्टर्स तक को आज भी नहीं पता ऑटिज्म के बारे में इन डेप्थ नॉलेज।
3: आई थिंक नॉलेज से भी ज्यादा ज्ञान होना एक चीज है, लेकिन समझ होना उस चीज के बारे में ये बहुत बड़ी चीज होती है। कईयों को पता भी होगा ऑटिज्म क्या है, उसके मरीज या जो लोग उससे ग्रसित हैं वो कैसे होते हैं, ये सब पता होगा मोटा मोटी, लेकिन वास्तव में उसको समझ पाना ये थोड़ा मुश्किल होता है। और मैं समझता हूँ आपके परिवार के लिए भी ये मुश्किल रहा होगा।
4: बहुत मुश्किल, क्योंकि देखिए ये सच्चाई है कि कोई भी पेरेंट्स ऐसा बच्चे की कामना नहीं करते, ना कोई ऐसा प्रे करते कि हमें कोई चैलेंज्ड बच्चा दीजिए, तो ये हर पेरेंट्स के लिए बहुत ही डिसहार्टनिंग होता है कि किस तरीके से हमारे साथ मतलब ऐसे बच्चे का जन्म हुआ। और उनके लिए ये ज्यादा तकलीफ देह नहीं होता कि हम ऐसे बच्चे को पालेंगे, बल्कि तकलीफ सबसे ज्यादा इस बात की होती कि ये बच्चा खुद कितने संघर्षों के साथ अपना जीवन निकालेगा, ये सबसे बड़ा है। जब तक हम हैं तब तक तो ठीक है, हम बहुत फूलों की तरह से इन्हें रखेंगे, लेकिन दिक्कतें जो इस समाज में आती है इन बच्चों को, वो एक कड़वी सच्चाई है कि इनकी लाइफ में अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो इस समाज की जागरूकता का अभाव है। अगर समाज जागरूक हो, संवेदनशील हो, तो शायद इतनी तकलीफें ना हो इनके जीवन में भी और हमारे जैसे अभिभावकों के जीवन में भी।
3: और विशेष करके भारत जैसे देश में जहाँ पर इस प्रकार के केसेस को समझ पाना हमारे समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि इस विषय में जानकारी का अभाव है। इस विषय में जानकारी का अभाव तो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के द्वारा या हमारे नीतियों में भी कुछ ऑटिज्म से रिलेटेड पेशेंट्स के लिए स्पेशल प्रावधान हो, ऐसा भी बहुत कम देखा जाता है। तो जब 92 में अक्षय जी का जन्म हुआ और जब आपको कुछ वर्षों में पता चला कि ये एक, मैं कहूंगा समस्या नहीं कह सकते अब इसको, क्योंकि ये एक प्रकार का चुनौती है, क्योंकि समस्या जो है वो हमें कुछ, वो हमारे प्रॉब्लम्स की वजह से आती है, लेकिन चैलेंजेस जो है वो हमको और ऊंचा उठा सकती है, हमें और पक्का बना सकती है। तो इस चुनौती का फिर सामना कैसे किया, कैसे अक्षय जी की परवरिश में आपने क्या क्या चीजें निहित की जिसकी वजह से आज अक्षय जी आज इतने आगे बढ़ पाए हैं?
4: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑटिज्म को लेकर के जो लोगों का समझ है उसका दायरा बहुत कम है इवन आज भी, और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने यही था 96 में। हम खुद जब ये शब्द हमने सुना तो मेरे लिए शब्द एकदम अनजाना था कि इसका मतलब क्या होता है, और जब मैंने डिक्शनरी में इस वर्ड का मीनिंग पढ़ा आकर के घर पे, तो उसमें था कि अपनी मनमानी करने वाला, डिक्शनरी में यही कुछ था, तो मैंने कहा इससे क्या मतलब निकलता है, लोग बाग होते हैं जो अपनी मनमानी करते हैं,
3: कोई करता है अपनी मन की।
4: हाँ, फिर उन्होंने मुझे जो स्पीच थेरेपिस्ट थी उन्होंने एक किताब दी थी मुझे कि आप ये घर जाके पढ़िएगा। मैं वो पढ़ रही थी तो उसके अंदर एक एक लाइन जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही थी लग रहा था हाँ अच्छा ऐसा ही तो करता है, हाँ ऐसी जिद करना, अपनी बात नहीं समझा पाना, बहुत ज्यादा टेंशन एंग्जाइटी। फिर एक जगह मैंने पढ़ा एक दो पेज के बाद इट इज नॉट क्यूरेबल, आई वॉज टोटली शैटर्ड। आप समझ सकते हैं कि कोई भी अपने बच्चे के मामले में ये शब्द नहीं सुनना चाहता। तो मेरी भी वही एक सामान्य जो इंसान होता है उसी की तरह से मेरी भी प्रतिक्रिया थी। फिर लगा कि ऐसे तो कैसे चलेगा, और आगे पढ़ो देखते हैं कुछ और निकलता है क्या। जब उस मतलब

0: वहां पे,
1: जी,
0: और
1: और मुझे
0: वो
1: लगता है
0: बच्चा,
1: वो प्रभाव अक्षय जी पर भी पड़ता
0: हाँ
1: होगा ना
0: वही
1: जी,
0: वही कि ये
1: क्योंकि
0: चीज
1: वो
0: देख के
1: दिल से तो
0: डिस्टर्ब
1: आपसे
0: कर
1: जुड़े
0: रहा
1: हुए हैं और वो भावनाओं को
0: है।
1: समझ सकते हैं कि वो तो साधारण किसी भी व्यक्ति के साथ होता है कि अगर उसके अभिभावक स्पेशली उसकी माँ जब उदास होती है उस व्यक्ति पे, उस बच्चे पर उसका असर अक्सर दिखता है। माँ अगर रोती है तो बच्चे के आंख से आंसू अपने आप ही आ जाते हैं, माँ उदास है तो बच्चा भी उदास हो ही जाता है, तो माँ का तो कनेक्शन डायरेक्टली दिखता है बच्चे के साथ। तो आपको इस वजह से अपने को उभारना भी था इस समस्या से,
0: बिल्कुल उसी
1: तो
0: टाइम
1: कौन
0: दो
1: से
0: तीन
1: ऐसी
0: दिन बाद,
1: टिप्स जी, कौन से
0: हाँ
1: ऐसे टिप्स आपने अपनाए अपने लिए जो कि आज मान लीजिए किसी माँ को जो सुन रही है या कोई पिता जो सुन रहा है इस एपिसोड को, जब उसके सामने कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो आपने क्या क्या चीजें की जो उनके लिए मददगार हो सकती है उनके जर्नी में?
0: सबसे पहला कि स्वीकार करो कि हाँ आपके बच्चे के साथ एक चुनौती है, क्योंकि अगर हम डिनायल मोड पे आएंगे तो हम वो प्रयास नहीं करना चाहेंगे जो हमें करने चाहिए, और हम जितना देर लगाएंगे उतना ही बच्चे की परिस्थितियां बद से बदतर होती जाएंगी। तो स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है कि हाँ हमारे बच्चे के साथ कोई चैलेंज है, अब हमें इसके ऊपर काम करना है। दूसरी चीज, हम खुद जाने कि ये दिक्कत क्या है और इसके ऐसा क्यों होता है और हम क्या कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, तभी आपकी परिस्थितियां बदलेगी। अगर सिर्फ अपनी किस्मत को या भगवान को दोष देना शुरू किया तो उसका कोई हल नहीं निकलने वाला। और तीसरा ये है कि जो भी परिस्थितियां हैं तो कुछ ऐसे लोगों को संपर्क करिए या मिलिए जो कि इस दौर से गुजर चुके हो या उन्हें कुछ नॉलेज हो। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कोई ऐसा नहीं मिला जो इस दौर से गुजर चुका हो, क्योंकि 96 की बात है, तब तक ज्यादा अवेयरनेस थी नहीं, और उस टाइम तक अगर कानून की भी बात करें तो कोई ऐसा कानून था ही नहीं इन बच्चों को लेकर के जो था, तो हमें वो तो कोई नहीं मिला। लेकिन हाँ इस फील्ड में काम करने वाले लोग जरूर हमें मिले और जिन्होंने हमें गाइड किया कि ठीक है बच्चे के साथ जो भी है लेकिन वो स्पेशली एबल्ड है, यानी उसके साथ कुछ खासियतें भी हैं जो शायद आप और हम में
1: जी
0: नहीं
1: जी
0: होती, तो उन खासियतों को ही पता लगा करके और उस बच्चे को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ
1: जी
0: से मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स अगर इस चीज को मान ले और इस तरीके से आगे बढ़े तो मान के चलिए उनके बच्चे भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं और लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं।
1: ये बहुत जबरदस्त तीन बातें आपने बताई। एक तो सत्य को स्वीकार करना, जितनी देर तक हम सत्य को नकारेंगे सत्य का जो बल है वो हमको बलवान नहीं बनाएगा, हम किसी एक सपने के सहारे बैठे रहेंगे और वो सपना हमें बल नहीं देता, सत्य हमें बल देता है, तो स्वीकार करने की शक्ति। दूसरा जो आपने बताया कि खुद को ज्ञान ज्ञान से भरना या इन्फॉर्मेशन से भरना कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, और तीसरी बात ज्ञानियों से अनुभवियों से मिलना। ये तीन चीजें जो आपने बताई मैं समझता हूँ ये केवल ऑटिज्म के क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में ये काम कर सकती हैं। आपने जैसे जीवन का एक मंत्र दे दिया, मैं यहाँ जानना चाहूंगा कि आपने उस दौरान अक्षय जी में कौन सी वो चीजें देखी जो कि उनकी खासियत थी?
0: जी पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी अपने सारे जो भी श्रोता है कि ऑटिज्म के लक्षण क्या होते हैं, ताकि वो अगर कहीं आसपास देखे या अपने बच्चे में कुछ ऐसा देखे तो समझ सके कि हाँ इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है, क्योंकि तभी हम इन बच्चों को सहयोग दे पाएंगे। तो इसके कुछ खास लक्षण होते हैं, जैसे कि नजर से नजर मिला के बात नहीं कर पाते ये लोग, अपनी ही दुनिया में मगन होते हैं, और बच्चों की तुलना में इनका जो बोलचाल की भाषा या समाज के साथ मिलना, लोगों के साथ मिलना जुलना, उसमें इन्हें थोड़ा दिक्कत होती है, झिझक होती है, या ये अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कुछ चीजों को लेकर के। खास तौर पे इमोशनली और सेंसरी इनको चैलेंजेस थोड़े ज्यादा होते हैं, जैसे किसी को हो सकता है कि रोशनी से दिक्कत हो, तेज लाइट से दिक्कत हो, शोर से दिक्कत हो, तो वो अपने कानों के आगे हाथ लगा लेगा, आंखों के आगे हाथ लगा लेगा, या किसी को कोई गोदी ले या छुए तो हो सकता है वो तब अनकंफर्टेबल महसूस करे। यानी कि जो हमारे ये 5 सेंसेस होते हैं, ये हो सकता है कोई एक एरिया चैलेंज में हो और इस वजह से हमारे बच्चों को अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ये कुछ खास इसकी विशेष वो होती है लक्षण। फिर ये हुआ कि मैंने अक्षय में क्या विशेषताएं देखी, तो जब मैं, जैसा मैंने बताया कि पहले तो हमें इसको समझना ही शुरू किया कि हाँ, फिर तो वो पूरी किताब ही पढ़ डाली क्या क्या करना चाहिए, जो गाइडेंस हमें मिला और फिर जो स्पीच थेरेपिस्ट ने हमें गाइड किया, तो अपने आप को ट्रेंड करके और फिर मैंने इसके साथ काम करना शुरू किया कि कैसे आई

0: कॉन्टेक्ट बढ़ाऊं, कैसे इवन इसको अपना नाम तक बताना नहीं आता था। वो इंसोमनिया वाली सिचुएशन थी कि अगर ऐसे बच्चों से पूछा जाता है आपका नाम क्या है, तो वो वही रिपीट करते हैं आपका नाम क्या है। तो हमें ट्रेनिंग ली कि जवाब कैसे इनसे मिले जो हम चाहते हैं, क्योंकि तो बहुत सारी दिक्कतें होती है जब आप अपनी बात नहीं बता पाते इवन अपने पेरेंट्स को भी, तो ऐसे बच्चे भी फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, रोते हैं, क्योंकि जब आप अपनी बात नहीं समझा पाएंगे तो फिर फिजिकल भी होते हैं कि गुस्से में कोई चीजें उठाना, फेंकना या फिर चिड़चिड़ा होना। तो वो सारी चीजों के लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चे को अपने जो नीड्स हैं वो एक्सप्रेस करना सिखाएं। तो वो चीज मैंने फिर शुरू करी इसके साथ बकायदा ट्रेनिंग लेकर के, धीरे धीरे धीरे धीरे फिर ये आगे बढ़ा। मुझे कुछ एक चीजें इसमें जो जब इसको जान लिया और समझ लिया कि हाँ ये इसका चैलेंज है, तो फिर वो मैं ढूंढती थी कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे ये खुश होता है या ये कहीं पे ध्यान देता है। तो वहां मैंने देखा कि ये टीवी देखता है तो बहुत लंबा समय तक टीवी देखता है, उसमें भी ये क्या देखता था, क्रिकेट मैच आता था तब। ये तब की बात है जब ये मुश्किल से 5-1 साल का होगा, क्योंकि 92 में इसका जन्म हुआ था, 96 में पता चला। 1 साल तो हमें, मतलब 5-7 महीने तो हमें सोचने समझने में और स्वीकार करने में ही लग गए। फिर उसके बाद चीजें ढूंढना, एक्सप्लोर करना कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो देखा कि वहां बड़ा कंफर्टेबल और शांति से बैठता है, जबकि पढ़ाई ये करता नहीं था कोई भी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं था, फोकस ही नहीं था। तो मैंने देखा कि अगर इसका क्रिकेट में इंटरेस्ट है और दूसरे ऐड आते तो उसमें इंटरेस्ट, तो वहां मैंने इससे कम्युनिकेशन डेवलपमेंट शुरू किया कि कोई ऐड आ रहा है तो ये क्या आ रहा है, अक्षय ये कार आ रही है, ये चॉकलेट देखो ब्राउन कलर की, वो स्मॉल तो वो बिग, और क्रिकेट मैच आता था तो अरे ये इंडिया है। उस टाइम ये कोई कंट्रीज के नाम नहीं जानता था क्योंकि स्पीच ही नहीं थी ढंग से, तो ये, लेकिन वो इसका इंटरेस्ट एरिया था क्रिकेट और एडवर्टाइजमेंट। तो वहां हमने इससे बात करना शुरू किया, तो धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ और ये चीजों को ध्यान भी देने लगा और रेस्पॉन्ड भी करना सीखा।
1: जी ये काफी लंबा सफर है और मैं तो समझता हूँ एक एपिसोड कभी भी इस पे काफी नहीं होता है, इसमें बहुत बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे दोबारा सवाल पूछूंगा, उसके पहले मैं अक्षय जी से सवाल पूछना चाहूंगा। अक्षय जी, आप राजस्थान के पहले वो व्यक्ति हैं जो ऑटिस्टिक होने के बावजूद भी एक स्नातक हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आपने पढ़ाई की है तो, और आप जॉब भी करते हैं।
2: हाँ, हाँ,
1: हाँ। आपको पढ़ने में सबसे अच्छा क्या लगता है?
2: नहीं बताऊं।
1: अच्छा, और जॉब में आपको क्या पसंद है?
2: टाइपिंग।
1: टाइपिंग, आप कितना तेज टाइप कर लेते हैं?
2: ज्यादा तेज से नहीं कर पाते, ठीक ठीक स्पीड।
1: जी वेरी गुड। और आपके कितने दोस्त हैं जो आपके?
2: तो कोई भी नहीं है।
1: अच्छा, टाइपिंग के लिए कोई भी नहीं है?
2: नहीं, फिर पता नहीं, दोस्त शायद एक ही जना होगा शायद।
1: अच्छा, उनका नाम क्या है? आप रेडियो में श्रोताओं को अपने दोस्त के बारे में बताना चाहेंगे?
2: नहीं नहीं, अभी ये भी जो इलाहाबाद में रहती है ना, वो फ्रेंड जो इलाहाबाद में रहती है।
1: ओके, जो इलाहाबाद में रहते हैं वो आपके दोस्त हैं?
2: हाँ हाँ, जो इलाहाबाद की जो लेडी रहती है वो है दोस्त।
1: जी बहुत बढ़िया। और आपने, आपको क्रिकेट बहुत पसंद था बचपन में?
2: क्रिकेट खेलना पसंद है, 2006 तक इसके बाद में छोड़ दिया था क्रिकेट। अगर मैं वहाँ पिच पे पानी फेंकता था पिच पे।
1: और क्या क्या करते थे बताइए जरा।
2: और है ना, मेरे को मैं ना तेज बॉल से डरता था, फील्डिंग से डरता था, भागता था फील्डिंग से, तेज बॉल आ रही में हार जाता था और मैं हार के खेलता था, जो तेज बॉल आती थी तो डर जाता था, हार के खेलता था।
1: जी, और इसलिए फिर आप क्रिकेट से अलग, फिर आपने डिस्कस थ्रो, शॉट पुट थ्रो, जैवलिन थ्रो खेलना शुरू किया।
2: हाँ हाँ हाँ।
1: और उसमें तो फिर आपको अवार्ड मिला, उसमें आपको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, आपको बहुत कुछ मिला, उसके बारे में बताएंगे?
2: हाँ हाँ हाँ। और है ना, और सबसे पहले है ना मुझे स्टेट अवार्ड मिला था, मैंने पैर एथलीट जीत लिया था, 800 मीटर का ब्रॉन्ज मेडल जीता, 1500 मीटर का गोल्ड मेडल जीता और उदयपुर में डांस का थर्ड प्राइज जीता।
1: कैसे जीत लिया आपने इतना सारा? कितना मेहनत करना पड़ा आपको? हार्डवर्क करना पड़ा?
2: क्योंकि बीए ग्रेजुएशन।
1: हाँ, क्योंकि आपने उसके लिए पढ़ाई की, मेहनत की।
2: हाँ, और इसके बाद मुझे नेशनल अवार्ड मिला था, कैबिनेट मास्टरी अवार्ड मिला था, फिर जयपुर अवार्ड मिला था, ब्रांड एम्बेसडर बना था।
1: तो कैसा लगा जब आपको अवार्ड मिला?
2: सही लगा।
1: और लोग, हाँ जी,
2: और है ना जो सितंबर 2019 में मैं वहां गया था मुंबई, भाई ना यूथ फॉर चौक को रोल मॉडल आइकन अवार्ड मिला था।
1: और उसमें मुंबई में कैसा लगा आपको जब आप गए थे?
2: मुंबई में सही तो लगा, पर मुंबई में वहां पे भीड़ बहुत ही, रात को ट्रैफिक जाम लग गया था, बारिश आ गई थी।
1: जी, मुंबई की बारिश तो बहुत फेमस है और मुंबई की भीड़ भी उसकी बारिश से ज्यादा फेमस है।
2: हाँ हाँ
1: और कहाँ कहाँ गए आप? मुंबई भी गए हैं
2: और
1: और
2: है ना,
1: कहाँ कहाँ गए हैं?
2: और अहमदाबाद गया था, सोमनाथ मंदिर गया था, दीघा द्वीप में सी गया था, अहमदाबाद में काकरी लेक गया था। इसके बाद
1: जी, तो सोमनाथ मंदिर देखा आपने? आपको कैसा लगा
2: हाँ
1: वो?
2: सही लगा।
1: आपको पता है सोमनाथ मंदिर जो है भारत के पहले पहले मंदिरों में से एक है, तो आप तो बहुत
2: हाँ
1: भाग्यशाली है कि आपने सोमनाथ मंदिर देखा हुआ है।
2: हाँ और इसके बाद मैंने ना टैलेंट हब में डांस के इस वजह से प्राइज जीता था, रायपुर में नेशनल मेडल जीता था, जोधपुर में स्टेट गोल्ड मेडल जीता।
1: क्या बात है! आप कैसा डांस करना पसंद करते हैं? कौन से गीत पर डांस करना पसंद करते हैं?
2: क्या
1: कौन से गाने पे आप डांस करते हैं?
2: ये दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड माल हारी। हाँ
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया!
2: और है ना, और इसके बाद है ना मैंने बेंगलोर में नेशनल मेडल जीता, पटना में ब्रॉन्ज मेडल जीता।
1: जी, आपको ये सब किसने सिखाया? इतना सारा खेलना, डांस करना, पढ़ाई, ये इतना सारा किसने सिखाया? मुझे तो इतना सारा कुछ नहीं
2: मेरी
1: आता।
2: मम्मी ने करवाया था, पापा मम्मी ने। हाँ
1: आपके पापा मम्मी को अगर मैं बोलूँ उनको डांस करना आता तो वो तो बोलेंगे हमें नहीं आता, आपको कैसे आ
2: हाँ
1: गया?
2: हाँ
1: आपने कैसे सीखा?
2: और हाँ अभी डांस मैंने डांस क्लास में सीखा।
1: अच्छा,
2: और
1: मुझे तो लग
2: और
1: जी
2: इसके बाद मैंने
1: बताइए
2: ना मार्च 2020 में वहां चेन्नई गया था, निट बैठ था प्रोग्राम।
1: जी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना सारा टैलेंट एक व्यक्ति में केवल भगवान ही भर सकता है। ना उसके
2: हाँ
1: माता पिता उसमें भर सकते हैं, ना उसके टीचर्स भर सकते हैं, ना उसके दोस्त भर सकते हैं, ना वो खुद अपने आप में इतने टैलेंट भर सकता है। ये केवल ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, तभी संभव होता है। तो अक्षय जी, दोबारा हम आपसे बात करेंगे, तब तक हम एक बार प्रतिभा जी से भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना?
2: हाँ हाँ
1: प्रतिभा जी, जैसे कि अक्षय जी ने बताया और आपने भी पहले इस चीज का जिक्र किया कि ऑटिस्टिक बच्चों में खासियत ढूंढना बहुत जरूरी होता है, और यहाँ तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो भरमार है खासियत की।
0: हाँ
1: केवल पढ़ाई नहीं लेकिन खेलकूद भी, खेलकूद नहीं लेकिन सांस्कृतिक उपलब्धि भी, हर प्रकार का इनमें एक, मैं देखता हूँ एक पूरा स्पेक्ट्रम है, पूरा रेंज है इनके पास। ये रियली बहुत बड़ा गिफ्ट मानता हूँ मैं। आपका क्या विचार है इस बारे में?
0: ऑटिज्म को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है बेहतर तरीके से, यानी कि स्पेक्ट्रम बहुत सारी चीजें एक साथ प्रभावित होती है लाइफ की, और इसी
1: जी
0: तरह से बहुत सारे टैलेंट भी हो सकता है जैसे अभी आपने जिक्र किया। पर ऐसा नहीं है कि ये टैलेंट शुरू से ही था, हम खुद ढूंढना शुरू किया कि आखिर इसे क्या पसंद है। तब जैसा मैंने
1: जी
0: बताया इसे क्रिकेट पसंद, तो फिर हमने उस क्रिकेट के जरिए इसकी सारी पढ़ाई करवाई, वरना मुझे ऐसा
1: जी
0: लगता था कि ये क्या कभी पढ़ाई कर पाएगा जीवन में,
1: और
0: कैलकुलेशन नहीं
1: ये
0: आते
1: बहुत इंटरेस्टिंग बात है
0: था।
1: कि अगर क्रिकेट के जरिए कोई पढ़ सकता है तो क्रिकेट खेलने से बच्चों को मना नहीं करना चाहिए।
0: मैं
1: साधारण
0: आपको
1: तौर पे कोई
0: शॉर्ट
1: पढ़
0: में
1: ही नहीं सकता है क्रिकेट के
0: हाँ मैं
1: जरिए,
0: आपको
1: लेकिन आपने
0: बताती हूँ
1: क्रिकेट के
0: कि
1: जरिए
0: क्रिकेट
1: पढ़ाया। जी
0: से ये कैसे पढ़ा कि जब ये टीवी देखा करता था तो इंडिया के साथ ऑब्वियसली कोई ना कोई अपोजिट कंट्री होती थी, तो ये उस कंट्री का नाम जानने लगा। फिर इसको ये कंट्रीज के नाम धीरे धीरे सारे आ गए, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, जो भी अपने होते थे ये, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। फिर आप देखिए मैथ्स कैसे सीखा, जो काउंटिंग करना नहीं जानता था, मैं थक गई थी कि शायद कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगा ये मैथ्स। तो एक जैसे ये मैच देखता था तो एक ओवर में कहता था अब उसको इतने रन बनाने, तो मैंने कहा एक ओवर में कितनी बॉल हुई, तो बोलता है 6। तो उसको पता चला कि 6 बॉल होती है। फिर धीरे
1: जी
0: धीरे इसको ये कि 6 बॉल पे कितने रन बनाने हैं, या इस मतलब 140 रन बनाने, तो कितने हिसाब से, तो ये बताता था। इसको उस टाइम कोई आइडिया नहीं था मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का, वो मैंने बताया कि ऐसे डिवाइड कर दो। धीरे धीरे टेबल सीखना शुरू किया इसने, तो वो सारी पढ़ाई, इवन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, वो सब इसने क्रिकेट से सीखी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डेवलपमेंट हुआ तो फिर वो बाकी पढ़ाई भी आसान हो गई इसकी। तो वो टीवी
1: जी
0: का ये सदुपयोग किया। हम लोग क्या टीवी के जरिए बच्चों को आइडल बना देते हैं, लेकिन हमने टीवी से लर्निंग शुरू करी। और ये जो डांस वगैरह था इसके लिए हमें इसके साथ जूझना पड़ा, हर जगह इसके साथ मैं जाती और वहां जब तक ये सीखता था टीचर को पहले बताते थे, क्योंकि इन बच्चों में इंस्ट्रक्शन जो है वो लेना थोड़ा दिक्कत होता है इनको, क्योंकि अपनी दुनिया में मगन होते हैं, तो हो सकता है कि कॉन्सेंट्रेट होकर के सुने ना, तो टीचर को मैं बताती थी तो फिर मैं खुद इसे रिपीट करती थी। तो धीरे धीरे मतलब पुश करना होता है इन बच्चों को, तब जाके आप जान पाओगे कि इनका इंटरेस्ट कहाँ है। और इवन हमें डेवलप करना पड़ता है, इसका ना डांस में इंटरेस्ट था ना गेम्स में था, हमें पुश करना पड़ा और मोटिवेट करना पड़ा कि देखो अक्षय जैसे इनके नाम आते हैं वैसे आपका भी आएगा, फिर अपन वहां चलेंगे घूमने का शौकीन हुए शुरू से था। तो हमें सभी, मैं अपनी बात नहीं कर रही, सभी पेरेंट्स को अगर आप बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनका इंटरेस्ट ढूंढना भी पड़ेगा और अगर नहीं है तो डेवलप भी करना पड़ेगा और साथ में आपको पूरा डेडिकेटेड होकर के इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यकीन मानिए कोई ऐसी वो नहीं है दिक्कत कि आपका बच्चा आगे ना बढ़े। हो सकता है कोई पढ़ाई में, कोई म्यूजिक में अच्छा होता है, कोई डांस में होता है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ अलग होता है, वो हमारे साथ भी है, कोई किसमें
1: आई थिंक ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि चाहे कैसा भी बच्चा हो, चाहे किसी विशेष परिस्थिति से जूझ रहा हो या साधारण बच्चा हो, हर बच्चे में कुछ ना कुछ एक तोहफा ईश्वर भेजता ही है। उस तोहफे को पहचान पाना ये माँ बाप का, उसके आसपास के लोगों का पहला कर्तव्य है। ये उनका ड्यूटी बनता है कि हम पहचाने हमारे आसपास में बच्चों में कौन कौन सी चीजें हैं जिनके जरिए उनको हम उनका आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं, उनका उनके प्रति खुद के प्रति जो सम्मान है वो बढ़ा सकते हैं। मैं कहीं पर पढ़ रहा था, वो ये था कि अगर कोई भी आपको सम्मान नहीं देता है, दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है जो मैंने आज पढ़ी और मैं चाहता था कि इसको किसी के साथ शेयर करूं, लेकिन कौन किसके साथ शेयर कर सकता है ये पता ही नहीं चलता, लेकिन भगवान कुछ ऐसा ड्रामा बना देता है कि आज इसको शेयर करने का मौका मिल रहा है, वो भी अक्षय जी और प्रतिभा जी के साथ। मैंने पढ़ा था कि भले कोई भी आपका सम्मान न करे, याद रखना ईश्वर आप पे पूरा भरोसा रखता है। तो आप सोचिए अगर ईश्वर आप पे भरोसा रखता है तो फिर किसी के सम्मान की क्या आवश्यकता है। उस भरोसे के दम पर हम कितने भी बड़े परिस्थिति को, चुनौती को पार कर सकते हैं। जैसा भरोसा प्रतिभा जी ने ईश्वर पर रखा, ईश्वर ने उन पर रखा, तभी उनके परिवार में एक ऐसा तोहफा भेजा और उस तोहफे का कदर समझ करके उस तोहफे को आज इस मुकाम तक पहुंचाना कि भारत में कई बच्चे उनके जैसे बच्चे जो हैं उनको देख करके उनसे सीख करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे ऐसे एक माँ के लिए वाकई में हमारे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद निकलता है, ऐसे परिवार के लिए हमारे दिल से बहुत बहुत उद्गार निकलता है। प्रतिभा जी, यहाँ पर मुझे एक और चीज सुनने का मन करता है कि ऐसी कई चीजें होंगी अक्षय जी की जो कि वो खुद से करना पसंद करते हैं, जो कि आपने या किसी और ने उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, उन्होंने खुद ही पिकअप किया है उस चीज को। ऐसी कौन सी नेचुरल उनकी फेवरेट्स हैं?
0: जैसे डांस हुआ इसको, ये बाकी सारी चीजें हो सकता है ये मेरे कहने से करता रहा हो, लेकिन डांस इसमें जब एक बार शुरुआत हो गई, हालांकि उसमें भी हमें इसको लगाना पड़ा, पर अब जो शुरुआत होगी तो एक यही ऐसी चीज है जो ये पूरे दिल से करता है। और इसके लिए अगर कहा जाए तो स्टेज तोड़ू परफॉर्मेंस होती है इसकी, और इसमें अपना पूरा स्ट्रेस भूल जाता है। मैं कहती हूँ कि हमारे बच्चों को हम जितना एक्सपोजर देंगे और जितना इंटरेस्ट डेवलप करेंगे ना, इनके लिए लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। क्योंकि जैसा मैंने बताया, इसमें पहले से बहुत सारे एंग्जाइटी स्ट्रेस के इश्यूज होते हैं, तो अगर आपको कोई अपनी रुचि और ऐसा शौक डेवलप करने का एरिया मिल जाए तो बहुत फायदा होता है हमारे बच्चों को। दूसरा, हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं और अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, तो ऐसा
1: और लोगों की खुशी देखते हैं वो हाँ, देखते हैं कि लोग खुश हो रहे हैं उनको देख करके हाँ। और वो खुशी एक ऐसी चीज है, वो एक ऐसा बेबाक मूक भाषा है जो कि व्यक्ति समझ लेता है कि कोई व्यक्ति मेरे से जेन्युइनली खुश हो रहा है या कोई व्यक्ति दिखावे से खुश हो रहा है। खुशी को छुपाया नहीं जा सकता, खुशी पहुंच ही जाती है जी।
0: बिल्कुल, और इनकी जिंदगी में खुशी की सबसे ज्यादा जरूरत है
1: जी। एक और चीज जो मुझे यहाँ जानना है कि जैसे एक होता है कि डांस करना खुद में दूसरों के लिए, दूसरा होता है कंपटीशन। ये जो खेल में ये जाते हैं, यहाँ पे कंपटीशन या दूसरे लोग भी हैं या एग्जाम देने बैठते हैं, जनरली लोगों को एग्जाम से डर लगता है या कंपटीशन से डर लगता है, या जैसे ये प्रतियोगिताएं हो रही हैं, खेलकूद की भी प्रतियोगिताएं हो रही है, इसमें एक लेवल ऑफ एंग्जाइटी होता है कि भाई क्या होगा अगर मैंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, किसी ने मेरे से बेहतर परफॉर्म कर लिया तो थोड़ा सा ईर्ष्या भी आ जाता है, कभी इन चीजों को कैसे डील करते हैं आप?
0: शायद ये गॉड गिफ्ट है कि ऐसे बच्चों के अंदर ईर्ष्या की भावना मैंने देखी नहीं है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल भी हूँ मैं बेसिकली साइकोलॉजिकल काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर हूँ, तो मैंने देखा नहीं कि ज्यादा इन लोगों में कोई ईर्ष्या जैसी होती है। हाँ, कई बार एक घबराहट सी, वो तो हम में भी होती है, पर इनमें शायद कमी देखी है मैंने, वो घबराहट भी है। तो अपना कर करा के, क्योंकि अपनी दुनिया में लीन होते हैं, तो जो इनको करना है करा और आ गए वापस। बस हम इधर उधर देख करके ज्यादा टेंस होते हैं, लेकिन ये तो अपने टारगेट पे फोकस रखते,
1: ये एकदम अर्जुन की तरह होते हैं जो एक टारगेट पे फोकस्ड होते हैं। बाकी हम जो होते हैं, हम खुद को सामान्य समझते हैं, लेकिन हम बगैर जरूरी गैर जरूरी चीजों से इतने प्रभावित हो जाते हैं, और हम फिर भी खुद को सामान्य कहते हैं। ये बहुत बड़ा सीखने जैसा पार्ट है इनके जीवन से।
0: बिल्कुल। और बस एक चीज जरूर है कि इनको एक मॉरल सपोर्ट होना जरूरी है। जब ये कहीं अकेले जाते हैं या कोई नई जगह जाते हैं, तो वो फियर ऑफ एंग्जाइटी और फियर ऑफ न्यूनेस की कोई नई जगह वो जरूर इनमें रहता है। तो हम पहले से मेंटली प्रिपेयर इन्हें कर दें, अगर कि हम यहाँ चल रहे हैं और यहाँ ये होगा, चीजें पहले से इनके लिए स्पष्ट अगर कर दी जाए तो दिक्कतें थोड़ी कम होती
1: है। जी, अमूमन ये देखा गया है कि व्यक्ति जब किसी समस्या से जूझता है और जब उस पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे बड़ी खुशी होती है। बट अक्षय जी के और इनके जैसे कई बच्चों के केस में ऐसा होगा कि वो विजय प्राप्त करके भी उतने ही खुश है जितना समस्या में होते हुए खुश होते हैं, क्योंकि वो उससे काफी परे रहते हैं और उनके लिए वो मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिस मोमेंट में वो होते हैं, वो इतना पीछे का याद नहीं रखते। जी, जब इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा था या जब इनको स्टेट लेवल रिकॉग्निशन मिल रहा था, तो उसके लिए आपने इनको कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि राष्ट्रीय सम्मान के लिए तो व्यक्ति को एक डेकोरम के साथ पहुंचना होता है, एक मेंटल प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो उसके लिए कैसे आपने प्रिपेयर किया, थोड़ी सी उस घटना को बताया।
0: हाँ, ये हमारे लिए एक सपना था जो सच हुआ, कभी सोचा ही नहीं था। उस टाइम तो जब हमने इसके साथ काम करना स्टार्ट किया, तो छोटी छोटी चीजों के लिए हम जूझ रहे थे कि कैसे हाँ करना सिखाएं, कैसे ना करना सिखाएं, कैसे चीजें मांगना सिखाएं। तो कहाँ सोचा था कभी कि कोई नेशनल अवार्ड या स्टेट अवार्ड मिलेगा, पर जब जब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो पता चला भाई ये तो बहुत ही स्पेशल है। और पढ़ाई भी शुरू हुई इसकी। और आपको इसका मैं बताना चाहूंगी कि CBSE में उससे पहले कभी ऑटिस्टिक बच्चा, मतलब ये स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कई सुविधाएं मिलती हैं, पर जब ये 9th में अपीयर हुआ तब इसका फॉर्म भरना था और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था हमारे पास, लेकिन ऑटिज्म उस टाइम CWSN में जुड़ा हुआ नहीं था। तो वहाँ हमने इन लोगों को CBSE को लेटर भेजा और उन्होंने पहली बार अक्षय के कारण ऑटिज्म को चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड में जोड़ा, तो वहाँ एक शुरुआत हुई। फिर उसके बाद हमारे राजस्थान में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में जो ऑटिज्म था इसके बारे में, क्योंकि उस टाइम तक कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं थी, तो इनको MR यानी मेंटल रिटार्डेशन में डाला जाता था। तो वहाँ हमारा एक संघर्ष शुरू हुआ कि वुमेन राइट कमीशन में एक वाद दायर किया, तब वहाँ से शुरुआत हुई। करीब 3 साल बाद उन लोगों ने माना कि 99 में एक एक्ट आ चुका है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, जिसके जरिए ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी अलग मानी गई है। तो हमारा यही कहना था कि कम से कम जो डिसेबिलिटी उसका सर्टिफिकेट जारी किया जाए, कहीं और डिसेबिलिटी का ना किया जाए। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए जब हम उलझ रहे थे, तो हमने कहाँ सोचा था कि कोई नेशनल अवार्ड मिलेगा, लेकिन जब इन बाधाओं को पार करते हुए आगे आए धीरे धीरे धीरे धीरे, तो चीजें एकदम सामने आती गई और वहां पता चला कि कई चीजें ऐसी हैं जिनके लिए काम करना जरूरी है। क्योंकि जितने भी नियम थे, कानून थे, वो सब शारीरिक जो हमारे दिव्यांग साथी होते हैं उनके हिसाब से बने हुए थे, 95 का एक्ट। फिर उसके बाद में हमारा बड़ा संघर्ष स्टार्ट हुआ कि इनको भी वो चीजें पहुंचानी है, वो सुविधा जो इनके लिए जरूरी है। तो एक बेसिक नीड जो इनकी पूरी हो, रीजनेबल अकोमोडेशन जिसे हम कहते हैं, कि इनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के हिसाब से चीजें कुछ फेवरेबल हो, तब जाकर के फिर वो संघर्ष शुरू हुआ। कई नियम भी बने हमारे राजस्थान में और उसके बाद फिर पढ़ाई इसका, मतलब इसको कॉलेज में, आपको आश्चर्य होगा कि इसको कॉलेज में एडमिशन देने से ही मना कर दिया था, कि जो हमारे जयपुर के कॉलेज थे, 2 कॉलेज ने मना किया जब हम एडमिशन के लिए गए, बोले हम इन बच्चों को एडमिशन नहीं देते। ये 2011 की बात है। फिर हमने इसको लेकर के कमिश्नर कोर्ट होती है वहाँ पे वाद दायर किया, मतलब हमें हर जगह संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ये ज्यादातर पहला रहा हर चीजों में, तो जो पहला होता है उसके संघर्ष ज्यादा होते हैं।
1: जी,
0: कोई दरवाजा खोलना है तो बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है,
1: लेकिन इनकी वजह से कितने लोगों के लिए दरवाजा खुल गया,
0: वो बहुत एक संतुष्टि का विषय कि ये एक कारक बना जिसकी वजह से बाकी बच्चों को भी एक सहज रास्ता मिल रहा है। तो ये बहुत खुशकिस्मत है कि शायद इसके जरिए ही और बच्चों की भी तकलीफें कम हो रही है, और जब इसने ग्रेजुएशन किया तो ये राजस्थान का पहला ऑटिज्म प्रभावित ग्रेजुएट बना। तो कहाँ तो एडमिशन ही नहीं दे रहे थे कॉलेज वाले, और एक कॉलेज ने हिम्मत करके एडमिशन दिया तो वहाँ उसने इतिहास रस डाला। फिर जाके जब उसे नेशनल अवार्ड आगे मिला तो वो हमारे लिए एक बहुत गर्व का विषय था। मतलब कोई भी माँ बाप और खुद ये बहुत एक्साइटेड था। और आप कह रहे कैसे प्रिपेयर किया, तो हमने इसे बताया कि आपको नेशनल अवार्ड मिल रहा है जो कि सबसे बड़ा अवार्ड होता है अपने हिंदुस्तान का, और वहाँ पे जो अपने प्रेसिडेंट है वो देंगे आपको अवार्ड। तो पूरी ड्रेस वगैरह एक हफ्ते पहले से शॉपिंग की तैयारियां शुरू हुई कि मुझे ये तो कपड़ों का बड़ा शौक है तो जैकेट कुर्ता ये लूंगा, और इस तरह से पूरी ड्रेस कि चार तीन इवेंट थे तो तीनों के लिए अलग अलग इसके लिए कपड़े लेने इसको अपनी पसंद के। और फिर जब हम दिल्ली गए तो वहाँ हर चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हमने इसे किया था, और मुझे लग रहा था शायद ये स्टेज के ऊपर हो सकता है घबराया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये बहुत कंफर्टेबल होकर के वहाँ गया, और इसमें बल्कि वहाँ पैर छुए जो अपने वेंकैया नायडू जी थे उनके पैर छुए तो एक बहुत अच्छा लगा। और जब हॉल पूरा गड़गड़ाहट से गूंज उठा तालियों की गड़गड़ाहट से तो कितना गर्व महसूस हुआ। वो कोई भी पेरेंट्स और हम सोच सकते हैं कि वो कितना गर्व की बात है, इसे रोल मॉडल का पुरस्कार मिला।
1: जी ये आप जब सुना रहे हैं तो आपके आवाज में जो खुशी है, आपके आवाज में जो गर्व है, वो मेरे कानों तक नहीं मेरे दिल तक पहुंचा, तो मैं समझता हूँ हमारे श्रोताओं के भी दिल तक पहुंच रहा है। यहाँ मैं अक्षय जी से सवाल पूछना चाहूंगा। अक्षय जी, जब आप दिल्ली गए राष्ट्रपति जी से पुरस्कार लेने के लिए, तब आपको कैसा लगा?
2: मतलब ये नायडू थे।
1: हाँ, फिर क्या हुआ, कैसा लगा? वो याद है वो टाइम याद है कैसे क्या क्या हुआ था?
2: हाँ, राष्ट्रपति से अवार्ड मिला था 3 दिसंबर 2018 को नेशनल।
1: क्यों मिला था?
2: क्योंकि बीए ग्रेजुएशन।
1: अच्छा, और दिल्ली में मिला था आपको या बॉम्बे में मिला था?
2: दिल्ली।
1: दिल्ली में कैसे गए थे आप दिल्ली?
2: प्लेन से।
1: कैसा लगा प्लेन का सफर?
2: सही लगा।
1: बादलों में से देखने में अच्छा लगता है?
2: हाँ, और है ना मैं जून है ना 2022 में वहाँ बैंगलोर गया था। वहाँ
1: बैंगलोर भी गए हैं आप 2022 जून में?
2: हाँ।
1: और बैंगलोर कैसा लगा आपको, अच्छा लगा?
2: बैंगलोर तो अच्छा लगा, बैंगलोर कई बार जा चुका हूँ, तीन चार बार।
1: अच्छा, आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है?
2: बैंगलोर।
1: बैंगलोर, आप बैंगलोर बार बार जाना चाहेंगे?
2: हाँ।
1: और जयपुर में सबसे अच्छा क्या लगता है? जयपुर तो बहुत सुंदर है अपने आप में, पूरा दुनिया आता है जयपुर देखने के लिए, आपको जयपुर में सबसे अच्छा क्या लगता है?
2: हवा महल।
1: हवा महल, वेरी गुड। उसको तो देखने के लिए
2: हवा महल ही विशाल चिट्टी।
1: अच्छा, और बैंगलोर में सबसे अच्छा क्या लगता है?
2: टी गार्डन।
1: और दिल्ली में क्या क्या अच्छा लगा आपको?
2: कुतुब मीनार
1: अच्छा लगा। और राष्ट्रपति भवन में जब आप गए तो जब आपको पुरस्कार दिया तो सबने ताली बजाई।
2: हाँ।
1: और आपके मम्मी बता रहे थे कि वो टाइम इतने लोगों ने इतनी खुशी दिखाई, वो कैसा लगा आपको वो समय?
2: सही लगा।
1: ऐसा फिर से होने वाला है फ्यूचर में?
2: हाँ। हाँ, और इसके बाद है ना नवंबर 2022 में वहाँ ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन गया था।
1: ब्रिस्बेन गए थे आप ऑस्ट्रेलिया में?
2: वहाँ जेवलिन में सिल्वर मेडल जीता, डिस्कस में गोल्ड मेडल जीता, शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता।
1: वेरी गुड, आप तो देश में नहीं विदेश में भी जाकर के आपने कितने मेडल जीते हैं। मैं पहला
2: फॉरेन कंट्री ऑस्ट्रेलिया गया हूँ।
1: पहला फॉरेन कंट्री ऑस्ट्रेलिया गए, बहुत बढ़िया। और अकेले गए थे, मम्मी पापा भी साथ में थे?
2: वहाँ इंडिया का टाइम अलग, ऑस्ट्रेलिया का टाइम अलग, 4.5 घंटे का डिफरेंस है आगे घड़ी।
1: वाओ, 4.5 घंटे का डिफरेंस है। तो आपके साथ आपके मम्मी पापा भी गए थे?
2: केवल मम्मी गई थी, पापा को छुट्टी नहीं मिलती ऑफिस की।
1: देखो, पापा अगर आपके जैसे खेल कूद में थोड़े होशियार होते तो उनको भी छुट्टी मिल जाती है ना।
2: हाँ, और इसके बाद है ना फरवरी 2023 में अलवर में स्टेट गोल्ड मेडल जीता था।
1: वेरी गुड। जब आप विदेश में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, तो आपको वहां पर जब आपने खेला तो वहां पर तो और भी लोग थे, सिर्फ इंडियन लोग नहीं थे, विदेश वाले भी थे, तो आपको कैसा लगा?
2: सही। और है ना जो जून में फ्रांस में इंटरनेशनल होने वाला था ना, मेरे को भी फ्रांस से जाना चाहिए था, मेरे को मम्मी के साथ जाना चाहिए था फ्रांस।
1: तो अभी आप आएंगे, यहाँ पैरालंपिक्स होने वाला है उसके लिए आएंगे फ्रांस में?
2: कब?
1: पैरालंपिक्स फ्रांस में है ना, ओलंपिक्स के बाद पैरालंपिक्स होता है, तो उसके लिए आप आने वाले हैं? आप फ्रांस आना चाहते हैं? फ्रांस बहुत अच्छी जगह है, आना चाहते हैं?
2: आना चाहते हैं मैं।
1: बिल्कुल, हमारी तो शुभेच्छा है कि आप देश का नाम हर देश में जाकर के रोशन करें। इंडिया कैसा लगता
2: हाँ
1: है आपको, भारत कैसा
2: सही
1: लगता है?
2: लगता है इंडिया सही। अच्छा लगा
1: अच्छा, और आप विदेश में ऑस्ट्रेलिया भी गए और इंडिया में भी रहे, तो आपको इंडिया में कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी?
2: इंडिया में, इंडिया में बैंगलोर और चेन्नई
1: अच्छा, और
2: भी,
1: इंडिया का
2: और है ना लास्ट ईयर मई में वहां चेन्नई गया था, डिपेंड प्रोग्राम था, पॉन्डिचेरी भी गया था वहां से लौटते टाइम।
1: आप तो मेरे से भी ज्यादा घूमे हुए हैं, सबसे ज्यादा आपने इतना घूमा है पौंडीचेरी। आप तो एक-एक शहर का नाम ऐसा बता रहे हैं जैसे मेरे को लग रहा है पूरा इंडिया का मैप बनता जा रहा है मेरे सामने। एक चीज आप बताइए, आपको भारत की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है, भारत आपको क्यों पसंद है?
2: क्योंकि इंडिया ऐसे ही है पसंद इंडिया तो।
1: हाँ, क्योंकि इंडिया तो इंडिया है, इंडिया जैसा कुछ भी नहीं है ना।
2: और है ना मैं तो चेन्नई कई बार जा चुका हूँ, 3 बार।
1: और आपको खाली टाइम में क्या करना पसंद है, जब
2: क्या
1: आप खेल नहीं रहे हैं, जब आप डांस नहीं कर रहे हैं, जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो जब आप फ्री होते हो उस टाइम पे आप क्या करना पसंद करते हैं?
2: मेडिटेशन?
1: वेरी गुड, आपको मेडिटेशन भी करना आता है, कैसे
2: हाँ
1: करते हैं आप मेडिटेशन, बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
2: ईयर प्लग लगा के, ये
1: फिर क्या करते हैं आप उसमें,
2: पे लगा के मेडिटेशन
1: कितनी देर कर लेते हैं आप मेडिटेशन?
2: 10 मिनट।
1: वेरी गुड, 10 मिनट। तो कई लोग साधारण चुपचाप बैठ भी नहीं सकते, आप तो मेडिटेशन कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है।
2: हाँ, और इसके बाद है ना लास्ट जून में कैलकाटा वहां भी गया था।
1: अच्छा, कलकत्ता भी आप होकर के आए हैं, आपने
2: हाँ
1: पूरा भारत घूम लिया है।
2: हाँ
1: अच्छा, अभी अब फिर हम वापस प्रतिभा जी से बात करते फिर आपके पास आएंगे, है ना?
2: अभी और है ना, और इस साल है ना केबीसी में जाने की बारी है। इस साल कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पे।
1: वो तो आप पक्का जाएंगे और आप ही करोड़पति बनेंगे।
2: अभी इस साल केबीसी में सिलेक्शन हो जाए, वहां वहां मुंबई जाने को फिर से मिले मुझे केबीसी में, कौन बनेगा करोड़पति।
1: बिल्कुल, हमारी शुभेच्छा है, उसमें जरूर जाएं। और जिस दिन आप जाए उस दिन बारिश नहीं होना चाहिए बॉम्बे में, और भीड़ भी
2: हाँ
1: कम होनी चाहिए उस दिन।
2: फिर मुंबई में बारिश तो अक्टूबर में चली जाती है, बारिश सितंबर के लास्ट वीक में।
1: लेकिन हम मुंबई वालों को बोलेंगे कि अक्षय जी आ रहे हैं तो बारिश नहीं करवाएं, ठीक है
2: बारिश
1: ना?
2: तो हाँ
1: अभी हम मम्मी से बात करते हैं। प्रतिभा जी, आपको मैं समझता हूं, अगर अगर आप आज बैठ करके इस बात को सोचें, तो अक्षय जी के इस विशेष चुनौती ने न केवल उन्हें विशेष बनाया है, लेकिन आपके परिवार को भी बहुत विशेष बनाया है। और उनके जरिए जिन अनुभवों को आपने किया है, मैं समझता हूँ भारत में किसी भी सामान्य परिवार में ऐसे अनुभव नहीं होते हैं। भले वो चुनौती वाले अनुभव हों, लेकिन चुनौतियों के अलावा जो खुशी के क्षण हैं, जो गौरव के क्षण हैं, वो भी इतने नहीं होते जितने आपके परिवार में है। आपने इस पूरे जर्नी में, आपने, आपके हस्बैंड ने किस तरीके से खुद को तैयार किया, या कैसे आपने खुद को प्रिपेयर किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, जब पता चला तो एकदम टूट गए थे, लेकिन फिर वही डिसाइड किया कि जीवन में दो रास्ते हैं, या तो हंस हंस के चीजों का सामना करो या फिर रो करके सब कुछ खत्म कर दो, तो पहला रास्ता ज्यादा सही है। और फिर यही ठाना कि जैसे इसकी बहन है वो इससे 5 साल बड़ी, कि जैसे उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं वैसे इसको भी बढ़ाना है। और फिर हमारी जो यात्रा शुरू हुई वो आज दिन तक जारी है। मैं एक बात सारे ही लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई ऐसा विशेष बच्चा है तो आपकी जिंदगी असाधारण बन जाती है, जिसमें चुनौतियां भी बहुत ज्यादा होती है। खुशी के पल तो बहुत थोड़े आते हैं, कभी कभी जो हमारे को जीने के लिए एक जिसे कहते हैं ना सपोर्ट सिस्टम है और ऑक्सीजन की तरह से है, बाकी चुनौतियां बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि समाज में इन लोगों के प्रति जागरूकता का अभाव है, और दूसरे समाज का जो माइंड सेट है वो भी कुछ ऐसा है कि हम जो ये लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खासतौर पर ऑटिज्म और बौद्धिक दिव्यांगता के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, और लिटरली इनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो अपने आप ही पेरेंट्स को बहुत ज्यादा तोड़ता है। लेकिन हमें बस यही है कि हम अपने बच्चों को जितना हो सकता है आगे बढ़ाए और समाज की सोच भी बदले। और मैंने फिर यही शुरू किया कि पहले तो खुद कानून पढ़ा, और कानून पढ़ने के बाद इनके अधिकारों के लिए जंग भी छेड़ी, और हर जगह चाहे से वो हमारा खुद का राजस्थान हो या भारत सरकार, हर जगह अपनी बात पहुंचाई और रखी, और चीजें सकारात्मक हुई। ऐसा नहीं है नहीं होता, लेकिन हाँ बहुत बरसों लगते हैं चीजें चेंज होने में। तो थोड़ा सा सिस्टम अगर हमारे इन बच्चों को लेकर के संवेदनशील हो तो वो बहुत अच्छा है, और आज मैं वही कर रही हूँ कि मैं राजस्थान में गेस्ट फैकल्टी के रूप में जितने भी सरकारी संस्थान है, चाहे वो हमारा ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल हो जयपुर का, या फिर राजस्थान पुलिस अकेडमी हो, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान हो, खुद सचिवालय हो जहाँ मेरा बेटा पोस्टेड है, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किए खासतौर पे, जिसमें हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करते हैं कि नया जो दिव्यांग अधिकार कानून आया है 2016 में उसकी जानकारी देके, इसमें 21 विकलांगताएं हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, उसकी जानकारी देते ताकि जो बच्चे या जो व्यक्ति अगर स्कूलों में पढ़ रहे तो उन्हें वो सारे अधिकार मिले जो इन कानून के जरिए उन्हें मिले हैं, या फिर अगर किसी कार्यस्थल पर या ऑफिस में कोई दिव्यांग काम कर रहा है तो वहां भी उसके प्रति जो एक रवैया है कर्मचारियों और अधिकारियों का, वो संवेदनशील होना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने जो सब कुछ सहा है और सामना किया है उसके बाद हमने ये जाना कि जागरूकता ही सबसे बड़ी पहली और सबसे बड़ी चीज है। आज अगर हम जागरूक हो जाएंगे तो नजरिया हमारा जो सोचने का नजरिया वो जरूर बदलता है, और अब हम उसी दिशा में लगे हुए हैं। हमारी अपनी खुद की हम संस्था है जो कि अभिभावकों के द्वारा ही शुरू की गई है, और हम जगह जगह ये प्रोग्राम करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम भी करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं।
1: संस्था का नाम भी बताएंगे, संस्था का नाम थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को।
0: हाँ, हमारी जो संस्था है उसका नाम है सपोर्ट फाउंडेशन फॉर ऑटिज्म एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे राजस्थान का अधिकारियों का प्रशिक्षण संस्थान है, इसके करिकुलम में जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है अधिकारियों को, वहाँ कर्मचारियों को, उसके ट्रेनिंग करिकुलम में हमने ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डलवाया, ताकि जो ट्रेनीज आए, देखिए जो नियम या कानून बनते हैं उसको इम्प्लीमेंट किसको करना है, ब्यूरोक्रेसी को ही करना है, तो ब्यूरोक्रेसी अगर सेंसिटाइज हो, वो जाने कि ऑटिज्म क्या है, बौद्धिक दिव्यांग का है, या दूसरी शारीरिक दिव्यांगों की तकलीफ क्या है और इनके लिए क्या नियम बने, पर उनको जानकारी मिले और फिर वो संवेदनशील हो, तो आप मान के चलिए ये सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकता है, और हम उसी पे पूरे डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। जो हमारा मिशन है वो है मिशन एडवोकेसी अवेयरनेस और एम्पावरमेंट।
1: आपने जब ये बात कही कि ब्यूरोक्रेसी अगर अवेकेंड है या अगर वो जागरूक है तो वो अपने नीचे के स्तरों पे भी बदलाव ला सकते हैं, और इसलिए एक बहुत अच्छा रास्ता अपनाया आपने कि जो अधिकारी है उनके प्रशिक्षण के द्वारा ही आप उनको परिवर्तन का एक जरिया दे रहे हैं, जिसके द्वारा वो अपने नीचे के तब्दों में स्ट्रैटेजीज में चेंजेस ला सकते हैं, लोगों में चेंजेस ला सकते हैं। क्योंकि मैं कहूँ आप पूरा ठीक से इनके साथ पेश आए और एक सरकारी अफसर अपने नीचे के अधिकारियों को कहे कि आप इनसे ऐसे पेश आए तो जरूर असर करता है।
0: बिल्कुल सही है।
1: इसमें एक और चीज मुझे ये जानना था कि जैसे आप ट्रैवल भी करते हैं इनके साथ, और घर का माहौल या सिटी का माहौल तो इनका जाना पहचाना माहौल होता है, तो ये उसको कई तरीके से खुद ब खुद ही डील कर सकते हैं। लेकिन जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे फ्लाइट में चाहे ट्रेन में, जहाँ पर बहुत सारे अनजान चेहरे हैं और बहुत सारे अनजान एक्सपीरियंसेस हैं, फॉर एग्जांपल लंबा सफर ट्रेन का हो या फिर फ्लाइट का अचानक से हवा में उड़ना, ये सब चीजें जब होती हैं तो उसके लिए आप इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं या उस समय इनका कैसे वो होता है?
0: शुरुआत में तो बहुत दिक्कतें आती थी जब ये छोटा था, तो इवन हमें ट्रेन में भी कहीं जाना होता था तो जैसे जयपुर से दिल्ली, तो वो 5-6 घंटे भी हमारे लिए बहुत बैड एक्सपीरियंसेस देके जाते थे कि कैसे हम इसको शांत करके बिठाए या कंफर्टेबल फील कराए। फिर धीरे धीरे हमें समझ आने लगा कि इनको एंगेज करना जरूरी है, तो कुछ ना कुछ चीज इसके हाथ में हम देते थे जिससे ये अपना टाइम पास करता था, और फिर धीरे धीरे इसकी आदत होने लगी। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, ये सिर्फ अक्षय के साथ नहीं सभी बच्चों के साथ है, इवन हम लोगों के साथ, कि धीरे धीरे जैसे हमें एक्सपोजर और हम बाहर जाते हैं तो हम अभ्यस्त होने लगते हैं। और इनकी तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि अपनी एक खोल में ही बंधे रहते हैं, जब बाहर निकलते तो इन्हें घबराहट होती है क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो हमें वो सिखाना है कि सोसाइटी के साथ जाके कैसे इंटरेक्ट करना है। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि 100% ये कर पाते, लेकिन ये आगे निकले तो सही, हम इन्हें मौका तो दें, और जितना बाहर लेके जाएंगे वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। अब इसे कहीं कोई ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती, चाहे वो एयर ट्रेवल हो, ऑस्ट्रेलिया जब हम गए तो करीब 15-16 घंटे से भी ज्यादा का सफर रहा था हमारा, जो मेरे लिए बहुत टायरिंग था, लेकिन ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि मुझे जाना है। ये होता है कि कई बार ओवर एग्जर्शन, घर में तो एक कंफर्ट जोन में रहते हैं पर बाहर जाते हैं तो समय पे कई बार खाना भी नहीं मिल पाता, टाइम पे रेस्ट नहीं मिल पाता, और एक जो एंग्जाइटी आप बोल रहे हैं घबराहट लोगों से मिलने में वो होती है, तो वो इसे ऐसा नहीं, इसे नहीं होता, होता है, लेकिन हम किसी ना किसी तरह से उन चीजों को मैनेज करते हैं, खुद भी मैनेज करने की कोशिश करता है। जैसे ये मेडिटेशन जब ज्यादा दिक्कत में होता है तो खुद अपनी ईयर प्लग लगा करके मेडिटेशन करता है ताकि अपने आप को रिलैक्स फील करे। अब जो भी परिस्थितियां उसमें किस तरीके से अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जिया जाए वो तो हमें सिखाना ही होगा अपने बच्चों को। और बस यही है, मैं इस प्रोग्राम के जरिए इस पूरी सोसाइटी से जो भी सुन रहे हैं मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी। एक लेख था जिसके अंदर से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑटिज्म और बौद्धिक दिव्यांगों के लिए या किसी भी दिव्यांग के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती, तो उसका जवाब ये था समाज। यानी ये समाज है हमारा जो इनके लिए इतना दुराग्रह रखता है या बाधाएं खड़ी करता है या इन्हें ह्यूमिलेट करता है, जो इनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ का कारण होता है और ये मानसिक और शारीरिक रूप से ज्यादा टूटते हैं। तो इस समाज को इन लोगों की तकलीफें समझनी ही चाहिए और इनके साथ एक संवेदनशील व्यवहार करना बहुत जरूरी है। और ये बात तो किसी के साथ भी हो सकती है, तब भी तो हमारा व्यवहार बदलेगा ना, तो क्यों ना हम इन ऐसे बच्चों और युवाओं को अपने परिवार के सदस्य जैसा मान सम्मान दें और उनकी तकलीफों को समझें।
1: ये आपने एक बहुत ही बड़ी बात कही कि सबसे बड़ी समस्या व्यक्ति के लिए उसके तन से कम उसके मन में ज्यादा आता है, और वो मन की समस्या जो है उसके जन जो उसके आसपास में होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। समाज अगर थोड़ा समझदार बन जाए तो किसी के लिए भी रहना या उस अपनी परिस्थितियों से पार हो पाना मुश्किल नहीं है। आपके परिजनों ने भी इसमें आपको बहुत साथ दिया या कैसा रहा उनका शुरू शुरू का, या आज कैसा है, कैसा रहा आपका सफर?
0: हम लोगों की पहले तो जॉइंट फैमिली थी, तो मेरे जो फादर इन लॉ थे वो खुद एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, हालांकि वो ऑटिज्म वगैरह का था नहीं सुना था उस टाइम किसी ने भी, 96 की बात है तो नेचुरली इतना ज्यादा कुछ पता ही नहीं था, पर उन्होंने काफी सपोर्ट किया। और उसके बाद फिर जब हम न्यूक्लियर फैमिली के रूप में शिफ्ट हो गए फादर इन लॉ के बाद, तब मेरे हस्बैंड ने पूरा कोऑपरेट किया और मेरी जो डॉटर है वो भी इसको बहुत गाइड किया करती थी, बल्कि इसने इसके अंदर जो भी एम्बिशियस आई वो सब इसको देख के ही आती थी कि जैसा दीदी ने किया वैसे ही मैं भी करूंगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए टर्निंग पॉइंट रहा। दूसरे जब मैं ये मानती हूँ कि जब आप कोई संघर्ष शुरू करते हो और आपने कोई एक टारगेट बना लिया है, तो एक तो फिल्म का डायलॉग था ये कि जब आप किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो जो सारी कायनात है वो उसी दिशा में आपको सपोर्ट करती है। ये सच्चाई मैं अपने जीवन से ये मानती हूँ कि हमें कहीं ना कहीं ऐसे भगवान के भेजे हुए एंजल्स मिले जिन्होंने हमें हमारे इस रास्ते को थोड़ा आसान बनाया। और अगर समाज में जागरूकता का अभाव कम है लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ना जानते हुए भी संवेदनशील हैं, तो वही है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, समाज के लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हैं और ये सिस्टम भी इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा अपनी जो दायित्व है उसको बेहतर तरीके से जाने समझे, तो चीजें इतनी दिक्कत ना हो जो हम कहते हैं कि दिव्यांगता एक अभिशाप है, शायद वो ना रहे अगर हम इन चीजों पे गौर करें और ध्यान दें।
1: अभी आपने लोगों को एक ऐसा महामंत्र दिया जो कि मैं समझता हूँ हम जानते हैं लेकिन कभी उस पर हम गौर नहीं करते हैं, और जितना हम इस पे गौर करना भूल जाते हैं इतना हम हमारे आसपास में ऐसे लोगों के लिए समस्या खड़ी कर देते हैं। तो ये जो एक सद्भावना है दिल में, ये होना दिमाग में, ये समझ होना कि मैं अपने आप को किस प्रकार से रखूं ताकि सामने वाले को मदद मिल सके, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी सहायता हो सके, ये बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे अक्षय जी के पास उनकी बहन है और भी लोग हैं जो उनको प्रेरित करते हैं, ऐसे श्रोता साथियों आपके भी आसपास में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आप उनके लिए एक सहयोगी बनकर के उभरते हैं तो उनको बहुत बहुत सुकून मिलेगा कि कोई है हमारे साथ खड़े होने वाला। अभी हम वापस जाएंगे अक्षय जी के पास कुछ सवाल पूछने के लिए। अक्षय जी, आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? छोले भटूरे पिज्जा, वेरी गुड। इंडिया का भी है और विदेश का भी है। और रंगों में सबसे अच्छा रंग क्या लगता है?
2: हरा कलर।
1: हरा क्यों पसंद है आपको?
2: क्योंकि आसानी हो
1: जाए। अच्छा, और जगह में तो आपने बताया आपको बैंगलोर सबसे ज्यादा पसंद है ना?
2: हाँ। और है ना, दिसंबर में वहाँ भी गया था, जमशेदपुर सफल अवार्ड मिले थे मम्मी के साथ।
1: जमशेदपुर भी गए हैं हम। तो आप जितने भी जगह जाते हैं हर जगह का आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगता होगा, है ना?
2: हाँ, और है ना लाल जी, मुझे समाज ने अवार्ड दिला था ग्लोबल एक्सीलेंसी।
1: हाँ, और आप अपने जैसे जो साथी हैं आपके या आप जानते हैं जिनको आप जो भी सुन रहे हैं आज, उनको अगर आप कुछ बोलना चाहें, कुछ गुड विशेस देना चाहें या कुछ उनको अच्छा बोलना चाहें, तो क्या बोलेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे?
2: पता नहीं
1: क्या करना चाहिए, अगर कोई खेलने जा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए?
2: मेहनत
1: करनी चाहिए। और आप मेडिटेशन करते हैं तो लोगों को मेडिटेशन भी करना चाहिए, है ना?
2: हाँ।
1: मेडिटेशन करते तो आपको कैसा लगता है?
2: सही
1: लगता है। आप भगवान से भी बातें करते हैं?
2: क्या
1: भगवान से बात करते हैं?
2: हाँ।
1: क्या बोलते हैं आप उनको?
2: मालूम नहीं, बता नहीं हूँ क्या बोलते
0: हैं।
2: करता है ना मेरा मन। हाँ, तो... मेरा मन अच्छा ये सब।
1: और आप कभी माउंट आबू आए हैं?
2: एक ही बार आए हो माउंट आबू।
1: माउंट आबू तो आपके घर के ज्यादा नजदीक है, आपको माउंट आबू जल्दी आना चाहिए। आप माउंट आबू आएंगे तो आप हम लोगों से सबसे मिल सकते हैं वहाँ पर।
2: आपका भाई माउंट आबू
1: आप जब बोलेंगे?
2: इसी साल।
1: हाँ बिल्कुल, इस साल आना जरूरी। माउंट आबू में पहाड़ है, झरने हैं, जंगल है, जानवर है। जानवर पसंद है आपको? कौन सा जानवर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
2: पता नहीं, हम
1: शेर, टाइगर, डॉग, कैट।
2: और घर पे पेंटिंग भी करता हूँ, चेस भी खेलता हूँ।
1: आपकी पेंटिंग कभी आप दिखाइएगा हमें जरूर।
2: और है ना मेरा 20 तारीख को दूसरा टूर्नामेंट है चेस का, झाला नाम में।
1: अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, चेस खेलना आपको किसने सिखाया?
2: विच कोच ने सिखाया था? चेस के सर ने, टीचर। अच्छा। ने, कोच ने।
1: चेस में तो इतना सोचना पड़ता है, मेरे को ही कभी कभी ऐसा लगता है कि बाप रे मेरे से नहीं होगा। आपने कैसे कर लिया इसको? डिफिकल्ट है चेस या आसान है?
2: आसान है।
1: सबके लिए या सिर्फ आपके लिए?
2: सबके लिए।
1: देखिए श्रोता साथियों, अक्षय जी कह रहे सबके लिए चेस खेलना आसान है।
2: और है ना चेस में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट खेलूंगा, फिर स्टेट, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल खेलूंगा चेस में।
1: बिल्कुल, हम सबकी ये शुभकामना है कि आप इंटरनेशनल तक जाएं, और केवल चेस में ही नहीं, जो भी चीज आप करें उसमें आप पूरे विश्व भर में भारत का नाम रोशन करें। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना था कि आपको आपके नाम का मतलब पता है? अक्षय शब्द का मतलब पता है?
2: पता नहीं।
1: अक्षय मतलब वो जो कभी भी फिनिश नहीं होता है, जिसका कभी एंड नहीं होता है, जो हमेशा चलता रहता है।
2: और मेरे को इस स्ट्रेस हो रहा है, एनजाइटी हो रही है, मैं बहुत परेशानी में हूँ।
1: हाँ, लेकिन आप तो इतने बहादुर हैं ऑलरेडी, आपने इतना सब कुछ किया तो आपकी एंजाइटी, आपकी परेशानी जल्दी खत्म हो जाएगी। हम सब आपके साथ हैं।
0: कितने में?
1: बहुत जल्दी, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे खत्म हो जाएगी। हम सब आपके लिए गुड विशेस रखते हैं, हम सब आपके लिए अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, और भगवान भी आपके लिए अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, तो आपकी एंजाइटी, आपकी परेशानी एकदम ऐसे चुटकी बजाते खत्म हो जाएगी। ठीक है ना प्रतिभा जी? अक्षय जी से बात करके तो बहुत अच्छा लगा, और आपसे बात करके भी बहुत कुछ जानने सीखने को मिला। आप अगर कोई ऐसा मैसेज देना चाहें हमारे श्रोताओं को, जो एक माँ के तौर पे आप देना चाहती हैं, या एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे आप देना चाहती हैं, और एक दोस्त के तौर पे देना चाहती हैं, तो क्या वो मैसेज होगा?
0: एक इंसान के तौर पर ही मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि माँ एक इंसान है, सोसाइटी में भी हम लोग सब एक इंसान है। तो हमारे अंदर हम कितनी ही ईश्वर की पूजा करते हैं, तो ईश्वर भी हमें यही कहता है कि हर इंसान को इंसान के प्रति बहुत प्रेम और दयालु होना चाहिए। वही चीजें हमें रखनी चाहिए। हमारे घर में ही कोई दिव्यांग हो तभी हमारी सोच बदले, ये जरूरी नहीं है। हमें वैसे भी ऐसे इंसानों के प्रति जिन्हें ज्यादा प्रेम और स्नेह की जरूरत है, उनके प्रति संवेदनशील होना ही चाहिए। यही ईश्वर की शायद सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि हम ही इन्हें जाने अनजाने में न जाने कितना दुख और तनाव दे जाते हैं, जो इनके दिमाग में घर करता रहता है, और वो इनके अभिभावकों को बहुत तोड़ता है, और इन्हें तो खैर तोड़ता ही तोड़ता है। और अगर एक सच्चाई देखा जाए, क्योंकि मैं इस फील्ड में बरसों से काम कर रही हूँ, हमारे जैसे अभिभावकों का सबसे बड़ा जो दुख है या सोच है, वो यही है कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि ये लोग इस समाज से इतना नहीं लड़ सकते या जूझ सकते जैसा आप और हम कर सकते हैं। तो वो ऐसा समाज हम क्यों ना बनाएं, जहाँ पे इन लोगों के लिए जीना थोड़ा आसान हो, चीजें थोड़ी बेहतर हो, फूल, अब आप हम देखते हैं कि अलग अलग रंग के फूल भगवान ने बनाए हैं, तो ऐसे इंसान भी हर अलग अलग है, किसी में कोई कमी है तो वो खूबी भी तो है साथ। तो ऑड वन आउट वाला हमारा जो रवैया है वो नहीं, वो जो भी है जैसा भी उसको हम बहुत आगे बढ़ावा दें, दिल से उसको एक सपोर्ट करें और उसकी बाधाएं दूर करें, ऐसे समाज की हम कल्पना करें। और ये असंभव नहीं है, ये हो सकता है, सिर्फ अपने को चेंज करना है।
1: प्रतिभा जी, आपसे बात करते हुए बहुत बहुत अच्छा लगा, आप वाकई में बहुत प्रतिभावान हैं, इस वजह से ईश्वर ने आपका नाम आपके माता पिता के द्वारा प्रतिभा रख पाया और आपको ही चुना अक्षय जी का नाम अक्षय रखवाने में, क्योंकि जैसे कि उनका नाम का अर्थ है अक्षय, जिसकी कभी जो कभी क्षय नहीं होता, एक ऐसा

0: स्पिरिट, एक ऐसा जज्बा जो लोगों को छू जाता है और उन लोगों को भी प्रभावित करता है कि वो भी आगे बढ़े। आपको वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं चाहूंगा कि आप कभी दोबारा हमारे साथ जुड़े और भी ऐसी जो अनुभव की बातें हैं वो हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि इस विषय में जागरूकता लाना वाकई में हमारा कर्तव्य बनता है, और इस कर्तव्य को रेडियो मधुबन जरूर निभाना चाहेगा। उम्मीद करेंगे कि आप इसका अवसर हमें जरूर देंगे।
1: नहीं बिल्कुल, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: अक्षय जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बात किए, हमको बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा?
2: हाँ
0: फिर दोबारा कभी आप बात करना चाहेंगे हमारे साथ?
2: हाँ
0: बिल्कुल। 107.8 FM रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम।
3: नमस्कार, मी मोनाली सावागत, तुम्ही ऐकत आहात रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफ स्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफ स्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: The whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
3: What?
4: My name is Anthony Gonsalves.
3: Gonsalves?
4: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
3: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: गली खोली नंबर 420।
1: Excuse me, please. My name is Frankie.
2: No.
1: No. Sebastian.
2: No.
1: Goldie. Soldie.
2: No. Anthony Gonsalves.
0: Oh yes. Anthony Gonsalves.
3: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन और मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन। प्रिय श्रोताओं, जीवन की तेज रफ्तार में हम निरंतर कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। आगे बढ़ना आवश्यक है, लेकिन इस दौड़ में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। आज का विषय हमें उसी ठहराव की ओर ले जाता है। आज हम बात करेंगे कृतज्ञता की। कृतज्ञता मीन्स ग्रेटिट्यूड, एक ऐसी भावना जो दिखने में साधारण है, लेकिन यदि जीवन में उतर जाए तो यही भावना आध्यात्मिक उन्नति की सबसे सशक्त कुंजी बन जाती है। तो मित्रों, आज का हमारा विषय है कृतज्ञता, आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी। कृतज्ञता केवल औपचारिक रूप से धन्यवाद कह देना नहीं है, यह जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण है। यह वह आंतरिक अवस्था है जहां हमारा मन शिकायतों से मुक्त होकर स्वीकार और संतोष की ओर बढ़ता है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तब हमारा ध्यान इस बात पर नहीं रहता कि हमें क्या नहीं मिला, बल्कि इस बात पर रहता है कि हमें कितना कुछ मिला है। यही दृष्टि हमारे भीतर शांति को जन्म देती है। अक्सर हम देखते हैं कि सुख सुविधाएं बढ़ने के बावजूद मन अशांत रहता है। इसका मुख्य कारण है अपेक्षाएं। कृतज्ञता अपेक्षाओं को कम करती है और स्वीकार को बढ़ाती है। जब हम जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए भी आभारी होते हैं, स्वस्थ शरीर, श्वास प्रश्वास, परिवार का साथ, भोजन और सुरक्षित वातावरण, तो भीतर एक गहरा संतोष पैदा होता है। यही संतोष आध्यात्मिक उन्नति की नींव है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कृतज्ञता अहंकार को धीरे धीरे गलाकर विनम्रता में परिवर्तित कर देती है। जब हम यह मान लेते हैं कि जीवन में जो कुछ भी है वह केवल हमारे प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि अनेक लोगों और परिस्थितियों का संयोग भी है, तब मैं का भाव कमजोर पड़ता है और हम का भाव मजबूत होता है। यही परिवर्तन हमें आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठाता है। कृतज्ञता हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है। हमारा मन या तो अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में, लेकिन जब हम आज के लिए कृतज्ञ होते हैं तब मन वर्तमान में टिकता है। यह वर्तमान में टिकना ही ध्यान की पहली सीढ़ी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कृतज्ञता केवल अनुकूल परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियां भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। जब हम चुनौतीपूर्ण अनुभवों को भी प्रतीक के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके लिए आभार भी व्यक्त करते हैं, तब वे हमें तोड़ने के बजाय मजबूत बनाते हैं। यही दृष्टिकोण आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत है। हमारे शास्त्रों और संत परंपरा में कृतज्ञता को अत्यंत ऊंचा स्थान दिया गया है। कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। जब मन से यह भाव निकलता है कि जो हमें मिला है वही पर्याप्त है, तो भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यही शांति हमें आत्मा से जोड़ती है। यदि हम इसे व्यवहारिक जीवन में अपनाना चाहें तो यह बहुत कठिन नहीं है। दिन की शुरुआत एक संकल्प से करें, आज जो भी मिलेगा उसके लिए आभारी रहूंगा। रात को सोने से पहले दिन भर की 3 ऐसी बातों को याद करें जिनके लिए आप धन्यवाद कह सकते हैं। यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे मन की दिशा बदल देता है। कृतज्ञता हमारे संबंधों को भी सुंदर बनाती है। जब हम अपेक्षाओं के बजाय सराहना से भरे होते हैं तो रिश्तों में सहजता आती है। हम दूसरों को बदलने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखते हैं। इस तरह कृतज्ञता व्यक्तिगत शांति के साथ साथ सामाजिक सामंजस्य भी बढ़ाती है। प्रिय श्रोताओं, यदि जीवन के हर सुबह एक धन्यवाद के भाव से शुरू हो और हर रात कृतज्ञता के साथ समाप्त हो तो जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। कृतज्ञता हमें शिकायत से संतोष की ओर, अशांति से शांति की ओर और अहंकार से विनम्रता की

ओर ले जाती है। यही यात्रा आध्यात्मिक उन्नति की वास्तविक यात्रा है। इसी संदेश के साथ मैं आज आपसे आज्ञा लेता हूं। मैं फिर लेकर आऊंगा एक नया विषय। सुनते रहे इसी तरह प्यार से हमारे कार्यक्रम ज्ञान चिंतन को, और बने रहे हमारे साथ। खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि यह चर्चा आपके मन को स्पर्श कर गई होगी और इसने नए विचारों को जन्म दिया होगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर एक नई सोच और विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। खुश रहें, खुशियां बांटें। नमस्कार।

0: अहो ऐकलत का हो आमचा रेडिओ पुणेरी हो आमचा रेडिओ पुणेरी
1: विथ ब्रह्मकुमारीज। नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच
1: सिस्टर। आप जब भगवान के महावाक्य पढ़ रहे थे, परमपिता परमात्मा के, उस जिसे मुरली कहते हैं, वही चीज मैंने एक साइंटिस्ट ने जो लिखा है वो पढ़ लिया।
2: वंडरफुल।
1: ये कहता है कि द अवेयरनेस ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ एवरीथिंग एस्पेशली ऑन द लेवल ऑफ थॉट्स इज नोन एज द यूनिवर्स माइंड।
2: द यूनिवर्स माइंड।
1: जी, इन द सिंपलेस्ट टर्म्स यूनिवर्स माइंड इज द आइडिया दैट एट द लेवल ऑफ द अनकॉन्शियस वी आर नॉट सेपरेट बट लिंक्ड लाइक वन वास्ट माइंड। सो एनीथिंग हैपनिंग टू वन हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन द होल। मेनी पीपल हैव हर्ड ऑफ द 100th monkey phenomena where monkeys on separate islands were given potatoes। इसके बारे में एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, पोटेटोज को पानी में भिगा के ना मिट्टी विट्टी लगा के रख दिया था मंकीज के सामने। तो पहला मंकी गया नहीं खा सका, दूसरा मंकी गया नहीं खा सका, तो दो दिन बाद लोग देखे कि ये लोगों को इतनी मिट्टी लगी हुई। एक मंकी ने क्या किया, उसको पानी में नदी में डुबाया, डुबा के साफ करके खा लिया। इमीजिएटली ये लोग दूसरे आइलैंड में फोन किए कि वहां पर भी साथ चल रहा था। सेम चीज दो तीन साइंटिस्ट बल्कि अपने अपने आइलैंड में कर रहे थे। तो इमीजिएटली फोन किया तो बोला कि एग्जैक्टली सेम टाइम पे वहां से नॉलेज ट्रांसफर हुई। और उन्होंने भी एज सून एज वन ग्रुप स्टार्टेड टू क्लीन द पोटेटोज इन वॉटर द अदर मंकीज पिक्ड अप एंड कॉपीड द आइडिया। The more an action is performed, the more likely others will tune into the pattern.
2: The more an action is performed, the more likely it is that others will tune into it.
1: सिर्फ एक बंदर ने उसका thought लिया कि इसको भिगाओ नदी के किनारे, डुबाओ और मट्टी साफ खा लो।
2: Very true.
1: कैसे knowledge transfer होती है?
2: सारा दिन में अगर हम भी देखें तो ये होता है। कहीं एक जगह एक देश में कोई डिस्कवरी होती है और कहीं दूसरे देश में सेम पीरियड के अंदर सेम इन्वेंशन या सेम डिस्कवरी हो रही होती है। ज्ञान की बातों को भी अगर हम देखें तो सेम बातें अलग अलग जगह से आज आती हुई दिखाई दे रही है। सेम हीलिंग टेक्निक आज चारों तरफ से होती हुई दिखाई दे रही है। इट्स सो विजिबल कि ऑल ऑफ अस आर ट्यून्ड इनटू द सेम फ्रीक्वेंसी।
1: One vast mind
2: and the word is so beautiful, the universe mind। कि concept ये है कि अगर हम इसको visualize करें तो visualize करके हमें उसके प्रभाव का effect पता चलेगा। कि उसने कहा कि हम इतने interconnected हैं एक दूसरे से जैसे कि हम अलग अलग मन नहीं एक मन है। और इसी को देखो हम शास्त्रों में क्या पढ़ते हैं कि ये सारा कुछ एक ब्रह्मांड है, एक है। Why is it said एक, जबकि हमें आत्मा के लेवल पर समझ में आता है कि हम सब आत्माएं कोई जुड़ी हुई नहीं है। आत्मा हर एक
1: इंडिविजुअल
2: है, लेकिन कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि थॉट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। एक का थॉट का असर दूसरे पर होता है एंड ही कॉल्स इट, द साइंटिस्ट कॉल्स इट अ यूनिवर्स माइंड, कि वो एक मन बन जाता है। अब अगर हम सोचें कि इस एक यूनिवर्स माइंड के अंदर हम एक हिस्सा हैं, हर एक, और हम जो सोचेंगे और जो करेंगे उसका ये पूरे यूनिवर्स माइंड पर प्रभाव पड़ेगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी हो जाएगी।
1: आरबी के अकाउंट का सोच रहा था मैं कि जब मैं अगर नफरत फैलाऊं कि ये जात वाले ऐसे हैं या वो नॉर्थ के या साउथ के या ईस्ट के या वर्ल्ड के अमेरिकन किसी के भी बारे में एक घृणा एक नफरत फैलाता
2: जो वी आर ड्रॉपिंग दैट इन द यूनिवर्स माइंड
1: व्हाट अबाउट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी
2: माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट आई एम क्रिएटिंग अ नेगेटिव वर्ल्ड टुडे बाई रेडिएटिंग नेगेटिव एनर्जी एंड वाइब्रेशन सारा दिन में इसी को अब हमें चेंज करना है जब हम मेडिटेशन से अपनी पावर को बढ़ाते हैं आत्मा की शक्ति बढ़ती है तो हमारा जो सोचने का तरीका है उसमें एक शिफ्ट आता है। पहले जो हमारा सोचने का तरीका था वो बॉडी कॉन्शियस होने की वजह से इट वॉज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये हमने सुना। हमें सब कुछ अचीव करना है, लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन, हमें दूसरों से आगे जाना है, बाय हुक और बाय क्रुक मुझे तो जीतना है, एवरीथिंग इज फेयर
1: इन लव एंड वॉर,
2: सब कुछ हमने सुन लिया। और ये सब कुछ सुन सुन के हमारी प्रोग्रामिंग कैसी बन गई कि बस जीवन जीने का लक्ष्य क्या है, प्राप्त करना है, पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, छीनना है, इकट्ठा करना है, इसके रास्ते में अगर कोई भी आए तो उसको हमने गिराना है, हटाना है, बस औरों से आगे जाना है। तो ये सोच भी कुछ लोगों की बनी होगी पहले, ऐसे नहीं था कि सारी दुनिया ऐसा सोचने लग गई। ये सोच हमारी बनी कि मुझे और पाना है, इसके बीच में कोई रास्ते में आए तो उसको गिरा भी देना है, ये पहले नहीं था कॉन्सेप्ट। दूसरे को धक्का मार के आगे जाना है, ये कहीं कहीं ना कहीं किसी की शुरू हुई, फिर किसी और की ट्यून इन हुई उस फ्रीक्वेंसी पे, एंड टुडे द होल यूनिवर्स माइंड, मोस्ट ऑफ अस आर थिंकिंग लाइक दैट कि लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन। कोऑपरेशन शब्द खत्म हो गया, शेयरिंग केयरिंग खत्म हो गया, बस आगे जाना है, मुझे आगे जाना है, मुझे ऊपर जाना है, ऊंचा उठना है, नंबर वन बनना है एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग। दिस वॉजेंट आर वे ऑफ लिविंग बिफोर, ये हमारा जीवन जीने का तरीका नहीं था। इस तरीके ने हमें अपनी इनेट क्वालिटी से दूर किया। आज हम जहाँ काम करते हैं हमें सिर्फ अपने आप से पूछना है, हम एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं या हम एक दूसरे को सहयोग देते हैं? रिश्तों में भी हम एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं, हु इज बेटर आई और देम। जब हम किसी को क्रिटिसाइज भी करते हैं, जब हम किसी की गलतियां भी बताते हैं, तो हम एक्चुअली कंपीट कर रहे हैं ना उनके साथ।
1: कंपीट और नफरत भी,
2: कॉम्पिटिशन इज अ वेरी सूक्ष्म थी। हमारा लक्ष्य क्या है, हम अपने आप को बता रहे हैं और औरों को बता रहे हैं कि आई एम बेटर देन देम, आई एम बेटर देन देम हैज बिकम अ वेरी डीप इनग्रेन्ड प्रोग्रामिंग। सी मैंने उनके लिए कितना किया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उनके लिए ये किया, मैंने उनके लिए ये किया, उन्होंने क्या किया, आई एम बेटर देन देम। मैंने कितना किया फिर भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, आई एम बेटर देन देम। मैंने इतना किया उन्होंने तो ऊपर से धोखा भी दे दिया, आई एम बेटर देन देम। ये हमारे जीवन जीने का तरीका बन गया। And very soon, all of us were tuned into this frequency. And today we feel that this is the right way of living. Yehi jeevan jeene ka tarika hai. Lekin jitna atma bharti jayegi, jitna bharpoor hoti jayegi, hum khud anubhav karenge ki hum is frequency se hatte jayenge.
1: You mean to say santusht hote jayenge, contentment jitna aayega?
2: Jitni contentment aayegi, तो हमें ये समझ में आएगा कि जीवन जीने का तरीका ऐसे नहीं ऐसे है। जीवन जीने का तरीका औरों के साथ रेस करना नहीं है, जीवन जीने का तरीका है हर एक को अपने साथ लेकर चलना है, ये जीवन जीने का तरीका। ये हम बहुत पहले भूल चुके हैं सारे, ये हमारी पूरी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो उस तरफ चली गई, देन वी सेड व्हाई एम आई फीलिंग लाइक दिस। जितना आत्मा भरपूर होगी आप देखो वो ढूंढती रहेगी सारा दिन कि क्या मैं करूं, कैसे मैं किसी की सेवा करूं, किसको मैं कुछ दूं, किसको मैं हेल्प करूं, किसको मैं सहयोग दूं। वो नेचुरल उसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगी। जो फिजिकल चीजें भी हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें भी, जो पहले हमारी क्रेविंग थी कि ये मेरे पास और आ जाए, इसकी मेरे पास और आ जाए, और इतना है अभी और आ जाए, अपने आप फील होगा नहीं अब तो मेरे पास इतना है, मैं किसके साथ ये शेयर करूं सारा, पहले नहीं सोचते थे, पहले तो और इकट्ठा कैसे करूं, कहां से और लाऊं। दिस शिफ्टिंग फ्रॉम अक्यूमुलेटिंग, शिफ्टिंग टू शेयरिंग एंड गिविंग, ये शिफ्ट आएगा जितनी आत्मा भरपूर होती जाएगी उसमें। बचपन से अगर हम देखें, इवन व्हेन वी वर चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन, कभी भी मिलजुल कर किसी कार्य के लिए कुछ करना, इट यूज टू गिव अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग। कभी कुछ हम डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं सभी बच्चे मिलकर, कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, जहां अहंकार नहीं आ रहा बीच में, जस्ट अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग ऑफ अनकंडीशनली लविंग, शेयरिंग एंड कमिंग टूगेदर।
1: हम लोग जब छोटे थे साइकिल पे जाके स्काउट्स का यूनिफॉर्म पहन के गांव में जाके गांव के लड़कों के साथ वो वॉलीबॉल फुटबॉल ले जाते थे और चने मुरमुरे ले जाते थे, उनके साथ खाते थे और खेलते थे।
2: और ये बहुत अच्छी एक फीलिंग देता है, बिकॉज जब हम देने के मोड में शिफ्ट होंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि इसके रिटर्न में मुझे कुछ मिलना है,
1: इसमें मेरा क्या,
2: जैसे आपने कहा वो गांव के बच्चों के लिए हम कुछ खाने के लिए छोटी छोटी चीजें ले जाते हैं, अब उसमें आपकी ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि जब हम उनको ये खाने की चीजें देंगे तब वो भी हमें कुछ देंगे, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जैसे ही बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कोई कर्म किया, मतलब सिर्फ दिया, तो आत्मा को कितनी खुशी और शक्ति का अनुभव होने वाला है। ऐसे ही कभी कुछ ट्रेजेडी होती है, कोई क्राइसिस होता है कहीं भी, सारा देश इकट्ठा हो जाता है कि हमें उस जगह के लिए कुछ करना है, तन से मन से धन से जो स्किल हमें आता है, एवरीवन कम्स टुगेदर। ये है एक दूसरे के साथ सहयोग दे के एक कार्य को करना। इसमें जब सारी एनर्जीज इकट्ठी जुड़ती हैं, असंभव संभव कार्य हो जाते हैं, ये होते हैं। तो हम ये सब हम करते हैं, ये सारी विशेषताएं हमारे पास हैं, लेकिन फिर हम जब अब अपनी डे टू डे लाइफ में आते हैं तब हम वो चना मुरमुरा अनकंडीशनली एक दूसरे को नहीं दे पाते हैं। हम गिनने लग जाते हैं, मैंने इतना दिया उसने दिया, मैंने इतनी बार दिया उसने रिटर्न में कुछ दिया, हम तब नहीं गिनते थे। जैसे ही हमने गिनना शुरू कर दिया और ये चेक करना शुरू कर दिया कि मुझे क्या मिला, और फिर अगर मुझे नहीं मिला तो हर्ट होना, रिजेक्टेड फील करना नेचुरल था, और अगर मुझे नहीं मिला तो फिर अगली बार ना देना, ये भी मुझे लगा कि बहुत नेचुरल है। और ये करने से हम अपने देने वाले मोड से शिफ्ट हो गए, एंड फिर वो जो देना है, ये जो लेन देन हमारा चल रहा था, ये सिर्फ फिजिकल चीजों में नहीं था कि कितना दिया उसने, कितना दिया, गिफ्ट कितने दिए, मैंने कितने का दिया, पिछली बार कितना दिया था, वो सिर्फ फिजिकल चीजों में नहीं था, वो सूक्ष्म चीजों में भी होने लगा, थॉट्स एंड फीलिंग्स के लेवल पर, कि उन्होंने मुझे कितना प्यार दिया, कितना रिस्पेक्ट दी, कितना मेरा कहना माना, कितनी मुझे अप्रिसिएशन दी, उन्होंने मुझे कितना क्रिटिसाइज किया तो मुझे भी क्या करना चाहिए। थॉट्स एंड फीलिंग्स के लेवल पर भी हम सारा दिन एक दूसरे के साथ लेन देन करने लगे, और जब हमें लगा हमने दिया और हमें वहां से नहीं मिला, हमने अपने देने वाले गेट को बंद कर लिया,
1: मान सम्मान भी बंद कर देते हैं,
2: रिस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं दिया। तो दिस वी हैव टू चेक कि हम देने वाली आत्मा है।
1: हम लोग को बचपन में एक कहानी सुनाते थे कि एक ब्राह्मण रोज नहाने जाता था तो सबको राम राम, नमस्कार, राम राम, और जो भी उसको नमस्कार वापस करता था उसको आशीर्वाद देना रोज, और एक आदमी को रोज वो बोलता था और वो जवाब नहीं देता था। तो बच्चों ने उसको पूछा, आप पंडित जी इसको क्यों करते हैं, एक दिन दो दिन महीना, तो वो कभी बदलता ही नहीं है। तो वो बोला कि अगर वो अपनी आदत नहीं छोड़ सकता है राम राम नमस्कार का जवाब नहीं देने का, तो मैं अपनी आदत उसके लिए क्यों छोड़ू, मैं तो कंटिन्यू करूंगा।
2: मतलब
1: बट ये मुझे कहानी लगी, मैंने बोला ऐसे थोड़ी होता है यार, आई थॉट इट्स सेल्फ को डिसरेस्पेक्टिंग योर ओन सेल्फ।
2: वी डिसरेस्पेक्ट आवर सेल्फ व्हेन वी डू नॉट लेट दैट व्हाट इज आवर नेचुरल फ्लो थ्रू अस। ये हमारी अपनी स्व के प्रति डिसरेस्पेक्ट है कि ये मेरी विशेषता है, मुझे ये करते जाना है, लोगों की तरफ से जो भी आए मेरी विशेषता कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर कोई भी आकर मुझे मेरी विशेषता से हिला देता है तो वो मेरी विशेषता रही कहाँ? फिर वो फिर क्वालिटी नहीं है ना, वो तो फिर दूसरों के अच्छे होने की वजह से मेरी क्वालिटी है, वो फिर मेरी क्वालिटी नहीं है। अगर जैसे आपने यही कहानी बताई कि पंडित जी नमस्ते करते थे, बाकी लोग भी नमस्ते करते थे, राइट? और एक नहीं करता था। अगर पंडित जी उस एक के नहीं करने से उसको नमस्ते करना बंद कर देते हैं तो फिर लोगों को ग्रीट करना और आशीर्वाद देना उनकी विशेषता नहीं है, वो उनका सिर्फ वो कर्म था, क्योंकि लोग उनको नमस्ते कर रहे थे तो वो भी कर रहे थे, लोग अच्छे थे उनके साथ तो वो भी अच्छे थे। अच्छे के साथ अच्छा होना ये विशेषता नहीं है, ये तो दूसरे को कॉपी करके कोई भी कर सकता है। लेकिन सामने कुछ भी हो उसमें अपनी सही पर खड़े रहना, तब वो हमारी विशेषता है, नहीं तो वो दूसरे की एनर्जी का सिर्फ रिटर्न है, वो हमारी अपनी क्वालिटी नहीं है। जो देना बंद कर देता है वो अंदर घुट के खत्म हो जाता है। पानी अगर फ्लो करना बंद कर दे स्टैग्नेंट हो जाएगी, पेड़ पौधे देना बंद कर दे खत्म हो जाएंगे। मनुष्य आत्मा ने देना क्यों बंद कर दिया? और देने से तो वो लेने के मोड में शिफ्ट हो गया।
1: एक स्कूटर खरीदी थी मेरे बड़े भाई और मैंने, तो उसका एक स्टेप नहीं था पीछे टायर, और उसने कभी अपना सुख देना स्कूटर को और अपना कर्तव्य करना वो टायर ने कभी किया ही नहीं, क्योंकि जिस दिन से खरीदे थे कभी पंक्चर ही नहीं हुई,
2: राइट?
1: दो टायर अच्छे रहे, वो कड़क होके टूट टूट के प्रॉप हो गया, उसके पीसेस गिरने लगे,
2: राइट?
1: जड़ हो या चेतन हो, यूज इट और लूज इट,
2: राइट? ट्रू, योर क्वालिटीज, यूज इट और लूज इट,
1: जस्ट लाइक मसल्स।
2: यस,
1: आप यूज नहीं करोगे वो मसल में दर्द होते होते वो मर ही जाता है।
2: एंड इफ जस्ट बिकॉज दूसरे लोग नहीं यूज कर रहे कि दूसरे के अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे, ये करने से नुकसान किसका होगा? ये हमारा होगा। तो सारा दिन में चेक कि ऐसे नहीं खड़े हैं, मुझे क्या मिल रहा है सबसे, मुझे क्या देना है, देने से मेरा बढ़ता है। आप देखो पशु पक्षी प्रकृति वो देते हैं, लेकिन उनमें और हमारे में एक ही फर्क है, उनके अंदर ये थॉट नहीं आती मैंने दिया इन्होंने मुझे क्या दिया। अगर ये पेड़ गिनने लगे आज हम यहाँ आए, पूरा दिन हमने इस वृक्ष के नीचे शूटिंग भी की, हमें छाया भी मिली, ऑक्सीजन भी मिला, सब कुछ हमें मिला, हमने इसको क्या दिया? हमने तो पानी भी नहीं डाला, और ही हमने कुछ यहाँ से तोड़कर खा ही लिया होगा, किसी ने पत्थर भी मार दिया होगा। लेकिन पेड़ ने अपना काम देना कर रुका नहीं, कि पेड़ के अंदर वो थॉट नहीं आती कि मैंने इतना दिया इन्होंने मुझे क्या दिया। सेम विद एनिमल्स, क्यों आज पेट्स इतने पसंद आते हैं? क्योंकि उनके अंदर ये थॉट नहीं आती है मैंने इतना दिया। हर्ट हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, वो हो सकता है, लेकिन ये थॉट नहीं आती कि मैंने किया इन्होंने मेरे लिए क्या किया। ये थॉट जहां आती है तो हम अपने देने के नेचुरल कार्य से रुक जाते हैं, और तब जैसे आपने अभी पढ़ के सुनाया वो यूनिवर्स माइंड के अंदर इंटरकनेक्टेड है। अब जब हमें समझ में आ गया कि सारे माइंड्स इंटरकनेक्टेड हैं, तो इंटरकनेक्टेड में एनर्जीज फ्लो करनी चाहिए ना, फ्लो करनी चाहिए ना सारी। अब इसमें अगर हम सब आत्माएं एक एक भी ये जिम्मेवारी उठाकर कि मुझे सिर्फ देने के मोड में आज जाना है, बाहर घर जाना है, फैमिली के साथ, ऑफिस में लोगों के साथ ट्रैवल करते हुए, स्ट्रेंजर ऑन द रोड कोई भी मिल जाए, मुझे देना देना और देना है, हमें पता भी नहीं चलेगा कैसे थोड़े दिन के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगी। इट विल हैपन, वी विल ऑल एक्सपीरियंस इट इफ वी ओनली स्टार्ट डूइंग इट, हमारी शिफ्ट हो जाएगी। लेने में सिर्फ जितना हम मेहनत करके अक्वायर करेंगे उतना ही बढ़ेगा, लेकिन देने में जितना हमने सोचा भी नहीं होगा उससे कई गुना ज्यादा बढ़ता जाएगा। ये है हमारा एक दूसरे को सहयोग देना, एंड इसमें सबसे बड़ा सहयोग है एक दूसरे को दुआएं देना, एक दूसरे को सुख देना, एक दूसरे को मतलब जो कुछ हमारे पास है लेट्स शेयर इट विद एवरीवन, उसमें हमारी भी उन्नति सामने वाले की उन्नति, पूरे विश्व में हम एक प्योरिटी के लेवल तरफ जा रहे हैं. सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू स्टार्ट डूइंग. इट्स समथिंग विच वी रियली मूव्ड अवे फ्रॉम आर नेचुरल सेल्फ सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. कि लेना, छीनना, हड़प ही लेना दूसरे की चीज को, वी शिफ्टेड टू मच फ्रॉम आर ओरिजिनल सेल्फ. वेयर हैव वी रीच? अक्यूमुलेट करके उसको अंदर पकड़ के रख लेना, किसी के साथ शेयर नहीं करना. आज अपनी नॉलेज भी नहीं शेयर करना चाहते, अपना स्किल भी नहीं शेयर करना चाहते. आई एम द बेस्ट ना. अगर हम अपनी वर्क प्लेस पे इस मोड में जाएं कि हमें सबको देना है, सबको आगे बढ़ाना है, ये अगर हम रोज जब हम काम पे जाते हैं अपने जॉब और प्रोफेशन में, बिजनेस में, जहां हमारे अंदर डीप इनग्रेन्ड है कि वहां तो कॉम्पिटिशन ही है, डीप इनग्रेन्ड है कि कॉम्पिटिशन है, हमें सबसे आगे जाना है. अगर ये वहां हम प्रैक्टिस करने की शुरू करें कि मैं वहां औरों के साथ कम्पीट करने के लिए नहीं, औरों के साथ कोऑपरेट करने के लिए जा रहा हूं. मैं आत्मा, मुझे किसी से रेस में आगे नहीं जाना है, सबको अपने साथ आगे लेकर चलना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है. तो हमारा जो टाइम पीरियड ऑफिस में बीतता है ना, काम पर बीतता है, वो एक ब्यूटीफुल एम्पावरिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा. हम शाम को अपनी शक्तियों को बढ़ाकर घर आएंगे, क्योंकि हमने पूरे दिन में इस मोड में हम रहे होंगे कि हमने देना है, और जितना दिया होगा उतनी दुआएं रिटर्न में हम अक्यूमुलेट करेंगे. और अगर हम सारा दिन इस मोड में जाते हैं, मुझे इसके आगे निकलना है, ये निकला कैसे, इसने किया कैसे, तो शाम तक आते आते हमारी स्थिति कैसी हो जाती है. वाई आर वी सो डिप्लीटेड टूडे? बिकॉज वी आर रनिंग अ रेस. जो आत्मा हर रोज रेस में ही रहेगी वो थक तो जाएगी ना. आत्मा एक मीटिंग में भी अगर बैठे हैं, कोई करके देखे इसको, हम करके देखते हैं सेंटर्स पर, कि अगर हम एक मीटिंग में बैठे हैं, सपोज हम 5 लोग बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति बोल रहा है, अपना फैक्ट जब प्रेजेंटेशन कर रहा है, बाकी सब लोग क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट चल रहे हैं उनके माइंड?
1: बाकी सब लोग सोच रहे हैं कि मैं जब अपना बोलूंगा मैं क्या क्या बोलूं,
2: मैं उससे अच्छा क्या सुनाऊं. मतलब आई एम इन अ रेस.
1: हर जगह खाना पकाने में, खाने में, उठने में, बैठने
2: में, उससे
1: गलत
2: अच्छा
1: काम में भी रेस है.
2: अच्छा, अब एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखें कि अगर हम 5 लोग बैठे हैं, कोई एक अपना कुछ प्रेजेंट कर रहा है, चाहे जैसे आपने कहा सोशल सर्कल में, चाहे प्रोफेशनल सर्कल में, वी सिट बैक एंड हम परमात्मा से कनेक्टेड अंदर उस आत्मा को एक पावरफुल थॉट भेजें कि इसका बहुत अच्छा हो ये जो कर रहा है, इसको इस टाइम बिल्कुल सब राइट टच हो कि इसको सही सही इस टाइम क्या बोलना है यहाँ पर. ये थॉट भेजो और अंदर देखो चेकिंग कैसा फील होगा. ये हम जो यूनिवर्स माइंड में कनेक्टेड हैं, तो वो आत्मा जो प्रेजेंटेशन दे रही है और मैं आत्मा जो बैठकर सुन रही हूं, हम कनेक्टेड है ना. तो क्या हमारा सहयोग ये नहीं होना चाहिए कि वो जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनका बेस्ट होना चाहिए अभी? तो हम कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे हैं? अब अगर हमने इसकी ऑपोजिट वाइब्रेशन भेजी, जैसे आपने कहा मैं इससे बेटर करूं, मेरा प्रेजेंटेशन इससे अच्छा होना चाहिए, तो हम उसको प्रेजेंटेशन देते समय कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे हैं कि तेरा गड़बड़ हो जाए?
1: सही बात,
2: मेरा तेर से बेटर होना चाहिए. सो व्हाट आर वी सेंडिंग इनटू दैट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क?
1: आई विश नोबडी पीपल क्लैप फॉर मी मोर.
2: सही,
1: क्या तालियां बजी मेरे बाद.
2: अब ये अगर हमें सारा दिन याद रहे कि हमारी थॉट्स का इफेक्ट सामने वाली आत्मा पर पड़ रहा है, अगर हम ऐसी थॉट क्रिएट करते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, इसको टचिंग हो कि इसको राइट क्या बोलना है, अभी रिलैक्स्ड रहे, बेस्ट अपना परफॉर्म करे, तो हमारे थ्रू अच्छी एनर्जी जा रही है, दैट विल हैव अ गुड इफेक्ट ऑन मी. सामने सब पर उस एनर्जी का प्रभाव पड़ेगा, और फिर वो जो सामने वाली आत्मा है उसको जब सबकी इतनी अच्छी एनर्जी आएगी तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी. ये है इंटरकनेक्टेडनेस. और यही अगर वो टेबल पे 4 लोग बैठे हुए ये वेट कर रहे हैं कि हम इससे बेटर क्या बोलेंगे, या अगर उस सामने वाले का अच्छा हो रहा हो प्रेजेंटेशन तो एक डाउट क्रिएट करेंगे, इसका इतना अच्छा हो रहा है तो फिर मेरा क्या होगा, तो हम सब एक दूसरे को कौन सी एनर्जीज भेज रहे हैं. ये बहुत सूक्ष्म है, बट दिस इज व्हाट इज क्रिएटिंग आवर वर्ल्ड. ये हमें ध्यान रखना है सारा दिन, इवन हर आत्मा के लिए और पूरी सृष्टि के लिए अगर हम बार बार कहेंगे दुनिया की हालत देखो कैसी हो गई है, यहाँ भी गलत, ये भी दर्द, वो भी, तो हम क्या एनर्जी वाइब्रेट कर रहे हैं इनटू द यूनिवर्स, दैट्स हाउ द वर्ल्ड विल बिकम। क्यों ना हम सारा दिन ये ध्यान रखें कि मैं विश्व को कौन सी वाइब्रेशन दे रहा हूँ। एट द ब्रह्मा कुमारीज हमारा इवनिंग का टाइम 6:30 to 7:30 डेली सब सेंटर्स पर, ये जो टाइम ऑफ मेडिटेशन है वो है सारे विश्व को और सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देने का समय। सुबह का जो समय हम मेडिटेट करते हैं वो है अपने लिए कि मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्ट कर अपने अंदर पावर भरनी है। लेकिन शाम को 6:30 to 7:30 खास इस लक्ष्य से बैठा जाता है कि पूरे विश्व को, पूरे ग्लोब को, इस ग्लोब पे हर आत्मा को हमें परमात्मा से वाइब्रेशन ले सबको देनी है। वी हैव टू टुगेदर क्रिएट अ ब्यूटीफुल न्यू वर्ल्ड।
1: हाउ वेरी ब्यूटीफुल। बट कितनी ये मतलब दुआएं धरती को देना, प्रकृति को देना, सारे लोगों को देना, विश्व को देना, तो अपने अंदर कितना फिल होता होगा ना।
2: बिल्कुल। एंड लेकिन वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स अ बिगर पिक्चर। यू नो जब मैं दोनों तरफ को देखती हूँ कि एक साइड हम बैठे हैं लोगों के साथ, ये दुनिया ऐसी है जी, दुनिया ऐसी है, दुनिया में कुछ रहा नहीं, ये एक वो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, और एक तरफ मैं ये देखती हूँ सेंटर पर जब ये सभी बहनें भाई इकट्ठे बैठते हैं कि विश्व में प्योरिटी फैल रही है, द वर्ल्ड इज गेटिंग गॉड्स लव, गॉड्स पीस, सिर इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। It's such a beautiful feeling, rather than sitting with 5 people and complaining about how the world is. हमारी अपनी consciousness में एक shift आता है। हम भी पहले ऐसे ही दुनिया के बारे में गलत बात करना, सब negative ही देखना, now instead of complaining, जो है उसकी शिकायत करने की बजाय, क्यों ना जिम्मेवारी उठाकर एक नई दुनिया क्रिएट करें। Contribute with your thoughts and feelings to create that beautiful world.
1: उसके बदले में जो फल मिल रहा है, आपकी रूहानियत और चेहरे पर रूहानियत,
2: वो तो है,
1: और प्यार लेना, प्यार देना, और सारी दुनिया इसे सम्मान ही मिलेगा ना इसके बदले में।
2: बिल्कुल, क्योंकि आप सारी दुनिया को सम्मान दे रहे हैं।
1: वंडरफुल सिस्टर, थैंक यू सो मच।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू।
3: आवर माइंड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू आवर थॉट्स। At the vibration level, if one mind creates thoughts, it radiates into the universe. These vibrations will be caught by other minds and they will start creating similar thoughts and ideas. All our minds together are like one universe mind. Our thoughts and actions leave an impression on the universe mind. The more an action is performed, the more there are chances of others tuning into the pattern. Few people in the world must have created the thoughts, survival of the fittest, life is a competition, achieving and accumulating is our purpose of life. Soon, these thoughts became a part of the universe mind. Many others tuned into this pattern and it became society's way of living. If we shift from asking to giving, competition to cooperation, expectations to acceptance, hold on to letting go, accumulating to sharing, we are then radiating a different vibration into the universe mind. Soon, the world will shift to unity and harmony. When we change, the world changes.
2: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे, वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का?
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो भी मन वचन कर्म या हमारी इंद्रियों के द्वारा जो भी कार्य होते हैं, इससे बहुत कुछ फायदे भी हैं और इसका बहुत नुकसान भी है। तो आइए आज हम बात करते हैं इसे इंद्रियों की गुलामी पर। हमारा आज का विषय है इंद्रियों की गुलामी से जग की हसाई। कैसे होता है इंद्रियों की गुलामी? अगर मनुष्य ये सोचता है कि अहंकार वश या इंद्रियों की जो कमजोरी के वश कुछ भी गलत कर सकता है। एक समय की बात है, एक महान विद्वान सर्ववेदों के ज्ञाता एवं लेखक ऋषि अपने शिष्य राजा को शिक्षा दे रहा था कि राजन, आप स्त्रियों से सदैव सावधान रहना। हाँ, राजा को कभी इस विषय में हार नहीं खानी चाहिए। तो राजा ने क्या किया, राजा के ही राज्य में रहने वाली एक खूबसूरत युवती उस राजा की से विवाह करना चाहती थी। अब उसे पता चला कि उसकी इस इच्छा में गुरु ऋषि जी बाधक बन रहे हैं। जब ये पता चला तो एक दिन किसी के माध्यम से उस युवती को पता चला कि गुरुजी का जो उनकी जो कनरस प्रेमी है युवती, वो स्वयं एक गायिका थी। उसने एक उपाय निकाला कि क्यों ना गुरुजी के आश्रम में जाकर कुछ सुनाया जाए। वह वहां जाकर एक गाने की एक गुनगुनाने लगी। फिर क्या होता है कि गुरुजी ध्यान से सुनने लगे। कुछ देर सुनने के बाद स्वयं ही उसके पास आकर संपूर्ण गाना सुनने के लिए प्रार्थना करने लगे। युवती जो थी तो ऐसा ही गया चाह रही थी कि मतलब जो भी है, उसने झट पूरा गाना सुना दिया। गुरुजी ने कहा, एक गीत और सुनाओ। युवती को गुरुजी की कमजोरी का जो बोध हो गया कि मतलब क्या होने वाला है, और यह भी समझ में आ गया कि गुरुजी को क्या है, वश में कैसे किया जाए। युवती ने दूसरा गाना चालू किया, परंतु बीच में ही गाना बंद कर दिया।

गुरुजी ने कहा कि पूरा गाना सुनो। युवती बोली कि बाकी कल। बाकी कल सुनाऊंगी। राजा भी अपने गुरुजी से मिलने प्रतिदिन आश्रम में आया करता था। जैसे ही युवती आश्रम से बाहर निकली तो क्या होता है कि राजा से उसकी भेंट हो गई। युवती ने राजा से कहा कि राजन, कल आप छुपकर देखना कि आपके गुरुजी क्या खेल करते हैं। अगले दिन निश्चित समय पर राजा गुरुजी के आश्रम में छुपकर खड़ा हो गया। उधर युवती ने आश्रम में पहुंचकर अपना गाना प्रारंभ किया। गुरुजी गाना बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गाना पूरा होने पर गुरुजी दूसरा गाना सुनने की मांग करने लगे। इंद्रियां तो विषयों को पाकर क्या करती है, और की रट लगाना शुरू कर ही देती है। जितना गुरुजी ने गुरुजी सुनने के लिए व्याकुल होने लगे, युवती को भी अपनी मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई देने लगी। युवती गुरुजी से बोली, गुरुजी देखो, और तो मैं तब सुना सकती हूँ जब आप घोड़ा बने, आपके मुंह में घोड़े की तरह लगाम डली हुई हो, और मैं आपके ऊपर सवार के रूप में बैठी हुई हूँ। सोचो, मन और इंद्रियों के जो वशीभूत ज्ञानी पुरुष भी कितनी जल्दी बहक जाता है ना, किसी भी इंद्रिया के विषय को पूरा करने के लिए अपने समस्त आदर्शों व ज्ञान की जो भी विद्वता है वो तुरंत वो क्या करता है, बलि चढ़ा देता है अपने उस नैतिक वैभव को जिसको उसने बहुत वर्षों तक परिश्रम करके अर्जित किया होता है, क्षणिक सुख के लिए ताक पर रख देता है, भुला देता है। हाँ, तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं इंद्रियों की गुलामी से क्या होता है जगहंसाई। तो हम चर्चा कर रहे थे कि एक राजा और गुरुजी की कहानी क्या होता है, किसी भी इंद्रिय के विषय को पूरा करने के लिए अपने समस्त आदर्शों व ज्ञान को विद्वता को तुरंत बलि चढ़ा देता है कौन, गुरुजी ने। फिर क्या होता है, कनरस के प्रलोभन में गुरुजी ने अपना सिर झुका दिया और मन को यह कहकर समझा दिया कि चलो यहाँ कौन देखता है, मेरा क्या बिगड़ता है। हाँ, ऐसे ही सही, मनुष्य दूसरे को धोखा देने के लिए तो थोड़ा प्रयास करता है, परंतु अपने आप को धोखा देने के लिए कुछ उपाय ही नहीं करता। उसे करना ही नहीं पड़ता है, केवल अपने मन को अंदर ही धीरे से कोई बात सुनानी होती है। उस वक्त मनुष्य का विवेक जो है वो सुन्न हो जाता है, अर्थात क्या होता है, विवेक जो है मन के वशीभूत हो जाता है और गलत कार्य पर बैठता है। बाद में क्या होता है, पश्चाताप करने लगता है। इसके लिए कहावत है कि अब पछतावे होत क्या जब चुनिया चुग गई खेत। युवती के प्रस्ताव को स्वीकार कर गुरुजी घोड़े के रूप में अपने क्या करते हैं, शरीर को झुका देते हैं। उनके मुख में लगाम की तरह एक रस्सी डाल दी जाती है। युवती गुरुजी के ऊपर बैठ जाती है। विद्वान गुरुजी घुटनों के बल घोड़ा बने हुए चल रहे हैं। युवती बीच बीच में ऊपर से धीरे धीरे चाबुक मार रही है। वाह रे इंद्रियों, ये विषय में इन्हीं के वश गुरुजी भी थे। ठीक है, वही छुपकर बैठा राजा यह सब देख रहा था। देखकर गुरुजी के सामने आया और बोला, गुरुजी यह क्या। गुरुजी ने घबराते हुए क्या किए बड़बड़ाते हुए उत्तर दिया कि राजन यह वही है, इसके लिए मैं आपको सावधान करता रहता था, आप ही सोच लो, अब मेरा यह हाल है तो तुम्हारा व आम आदमी का क्या हाल होगा। राजन मैं तुमको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो और उस पर अमल करना, मन की चंचलता ही बुरे कार्य करने को विवश कर देती है, अतः बुरा कार्य करने से पहले 100 बार सोचो। कहा भी गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए। उस कर्म के परिणाम के बारे में चिंतन मनन करो। यदि मैंने युवती के प्रस्ताव के परिणाम के बारे में सोचा होता तो आज मेरी यह दुर्दशा ना होती। इसलिए हे राजन, मन की चंचलता को रोकना होगा और यह तभी संभव है जब मन को प्रभु के हवाले कर दोगे। तो इसी के साथ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को

तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। तो आज हम सुन रहे थे किसकी कहानी, राजा की कहानी। इसमें एक राजा था, तो उसको इंद्रियों के वश में था। उसके लिए गुरुजी से उन्होंने जो भी शिक्षा ली, लेकिन गुरुजी भी इंद्रियों के वश में थे। तो यहाँ पर यही पता चलता है कि इंसान जो है, मनुष्य अपने से ही अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको शक्ति की जरूरत होती है। लेकिन वो शक्ति हमें कहाँ से मिलेगी, इसके लिए भी हमें बहुत कुछ जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे भगवान कौन है, शिव। भगवान शिव कहते हैं कि इंद्रियों की जो गुलामी से बचने के लिए सबसे बड़ा सिद्ध मंत्र है कौन सा, मनमनाभाव। मनमनाभाव का अर्थ होता है कि मुझे याद करो, यानी कि जिसका अर्थ है चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जगते, एक भगवान शिव को हाँ ही मन में रखो और उन्हें क्या करो, उनसे लगाव रखो और उनको याद करो। मतलब यह मत सोचो कि इंद्रियों की गुलामी करते हुए मुझे कोई देख नहीं रहा है, अपनी ही अंतरात्मा को देख। हाँ, अपनी जो अंतरात्मा है वो तो हमें देख ही रही है ना। अंतरात्मा को हमें देखना है कि अपनी ही अंतरात्मा तो देख रही है ना, परमात्मा पिता तो देख ही रहे हैं ना। हाँ, इसमें अगर किसी दूसरे ने देखने पर अपने मन को रोका तो वह कोई ज्ञान युक्त नियंत्रण नहीं है। इसका अर्थ हाँ, तो यह हुआ कि अगर कोई दूसरा देखेगा नहीं तो हम पाप करते ही चले जाएंगे। अपने आप को रोकने के लिए अंकुश भी अपने आप के पास ही होना चाहिए। दूसरों का जो अंकुश कारगर सिद्ध नहीं होता, इसलिए एकांत में बैठकर अपने आप को यह पाठ पढ़ाओ कि मैं भगवान की संतान हूँ, मैं इंद्रियों का मालिक हूँ, इनका गुलाम नहीं। संसार से अगर सम्मान पाना है तो इंद्रियों को जीतो। इंद्रिय जीत ही माया जीत है और प्रकृति जीत है। हाँ, वही विश्वजीत राजा बनता है। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे, वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, a new way of responding, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: लेकिन यही मेरे पास नौकर था, आज मैं इसका कर्जदार हूं।

0: ख्वाबों का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुंदर रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ साथियों, बहुत ही खुशी हो रहा है मुझे इस एपिसोड में आपके साथ जुड़ते हुए, क्योंकि पिछले एपिसोड में जो बातें आपने की थी जिसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे 7219190005 पर, और उन सारे तमाम श्रोताओं को जिन्होंने प्यार से अपनी भावनाओं को हम तक पहुँचाया है और जो सुनकर आनंद उठा रहे, उन सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आवाज के इस हम सफर के साथ। यानी मैं हूं आपका हम सफर आरजे सनी, और मेरे साथ आज के हम सफर है विवा जी। जी हाँ, जिनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन 60s 70s के होते हैं। तो आइए, विवा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में।
2: नमस्कार सनी जी, मैं बिल्कुल जोश में हूँ और बड़े अच्छे प्यारे से गाने लेके आई हूँ।
1: प्रोग्राम के शुरुआत में पहला गाना कौन सा है आपके पिटारे में?
2: पहला गाना मेरे पास अगेन एन अक्षर से है, नजर लगी, और इसमें अपने प्रेमी के करीब रहने की इमेजिनेशन हो रही है। जैसे प्रेमी और प्रेमिका इमेजिन करते हैं कि दूसरा पास ना होते हुए वो अगर अपने घर में है तो वो कैसा, और कैसे नजरें टिकी रहती हैं प्रेमिका स्पेशली प्रेमी के, और वो करीब रहने के लिए बहाने कर रही है, कभी कोयल की है और कभी जाते हुए देख, और नजर के उस बंगले के हाव और वहां की एक्टिविटीज है, और दुल्हन बनकर भटकती हुई भी तुम्हारे बंगले पे जाने के इसके बोल हैं। और कुल मिला के गाना बहुत अच्छा है
1: जी। विभा जी, काफी अच्छी बातें आपने अपने गानों के साथ जुड़े हुए भावनाओं को व्यक्त किया अपने शब्दों में। मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा, आशा भोसले का गाया हुआ, सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा, ये गाना जो है काला पानी इस एल्बम से है। तो हम लोग सीधे गाने की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर हम अपने श्रोताओं से जुड़ेंगे। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुना। जी हाँ, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। ये जो गाना है ये मुझे लगता है काला पानी इस एल्बम से है। और इसमें देवानंद, मधुबाला, नलिनी और आगा जो है इस फिल्म के कलाकार थे। और देवानंद और मधुबाला पर पिक्चराइज किया हुआ गाना आपने अभी सुना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ विभा जी, और भी बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत गाने उनके पास है। तो अगला गाना कौन सा है?
1: अगला पास है नजर मेरे दिल के पार भी, देखो ना देखो मेरी हार भी। आशा पारिक पर फिल्माया हुआ गया, स्टेज पर डांस करते हुए गाया गया है। और इसमें अपने का इजहार है। और निगाहें मिली और वो मुस्कुराए, बस इतने में सब हो गया हाय हाय। बहुत खूबसूरत गाना।
0: चलिए, जब प्यार किसी से होता है इस एल्बम का ये गाना आपने याद कराया है। शैलेंद्र साहब ने लिखा है, लता मंगेशकर ने गाया है, शंकर जयकिशन का खूबसूरत संगीत से सवारा हुआ ये गाना है नजर मेरे दिल के पार हुई। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको सीधे इस गाने की तरफ ले चलता हूँ, जब किसी से प्यार होता है। 1961 का ये फिल्म है, देवानंद और आशा पारिक पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत गाना आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबों के सफर में। मैं हूँ आपका हम सफर सनी, और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, और ये गाना जो है देवानंद और आशा पारिक पर पिक्चराइज किया गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: अगला गाना है मेरे पास, नजर न लग जाए किसी की राह में, छुपा के रख लू आ तुझको बाहों में। प्यार की इंतहा है इस गाने में, जमाने से नजरों में रखने की बात हो रही है, कहीं नजर न लगे। इस गाने में विश्वजीत के प्यार को महसूस कर सकते हैं, जो माला सिन्हा के लिए उन्होंने अपने दिल में छुपा रखा है, और इसके बोल बहुत अच्छे हैं, और मुझ में कोई रहे आ करीब और करीब आ।
1: जी जी जी, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है, और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये गाना बहुत पसंद आएगा। और ये गाना जो है आपने याद कराया, नाइट इन लंदन 1967 में ये फिल्म आई थी, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ है, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बहुत ही अच्छा संगीत इसमें दिया गया है, नजर न लग जाए किसी की राहों में। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया विभा जी। और ये नाइट इन लंदन जो फिल्म आई थी, विश्वजीत मालासिन्हा हेलन जॉनी वॉकर पर पिक्चराइज किया गया था। देश और विदेश की जो बातें हैं, मिक्स कल्चर को बताने की कोशिश की गई थी, तो बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी ये उस समय की। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहूंगा कि अगला गाना कौन सा है आपके पास?
1: अगला गाना मेरे दिल के बड़ा करीब है, ये मुझे बहुत ही पसंद गाना है। अगर आपको टाइम मिले तो इसको स्क्रीन पे जरूर देखिएगा। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। बहुत ही उदासी भरा गाना है, बोल दिल को छू जाते हैं। इतनी सुंदरता से नृत्य किया गया है वैजयंती माला ने, इस पे बहुत ही ब्यूटीफुली इन पे डांस किया है। और उनके अगर आप उनकी ड्रेस और उनके हाव भाव और नृत्य देखेंगे तो आप बिल्कुल उनके दीवाने हो जाएंगे, इतना सुंदर एक्ट है इसमें।
0: अच्छा,
1: और इसके बोल भी बहुत अच्छे हैं। कहता है समय का उजियारा, एक चंद्र भी आने वाला है, इन ज्योत की प्याली अखियन में उसे पिलाने वाला है। कुल मिलाकर गाने में दर्द के साथ साथ एक उम्मीद भी है।
0: बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। और ये अम्रपाली 1960s का गाना आपने याद कराया, नील गगन की छाओ में दिन रैन गले से मिलते हैं, क्या बात है। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। जी हाँ, अमरपाली का एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। अब जैसे कि विभा जी कहती है कि ये गाना जो है बहुत ही ब्यूटीफुल शूट किया गया है, और इसमें जो डांस है विशेष, जैसे कि अमरपाली की जो हीरोइन है वैजयंती माला है, सुनील दत्त है, प्रेमनाथ है, विपिन गुप्ता जी इस पे काम किया है, तो वैजयंती माला बहुत ही खूबसूरत डांस इसमें करती हैं। तो चलिए, इस डांस को अगर देखना हो तो ज़रूर आप फिल्म में इस गाने को ज़रूर यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: अगला गाना है नील गगन पर उड़ते बादल, आ आ आ धूप में तपता केतन हृदय तू छाया। ये सुनील दत्त और नूतन का गाना है, इनको खेतों में फिल्माया गया है।
1: अच्छा,
2: कि जैसे पंछियों के साथ और बहारों के साथ बातें करते हुए वो इसको गुनगुना रहे हैं और नेचर को फील कर रहे हैं। अपने खेतों में से लहराते हुए वो गुनगुना रहे हैं, कभी बादलों से तो कभी पानी से और कभी पंछियों से बातें कर रहे हैं। और इस गाने में फुल एनर्जी है, ये बहुत एनर्जी वाला, और इसमें प्यार प्यार के साथ पॉजिटिव एनर्जी भी बहुत है।
1: जी जी जी जी हाँ, ये गाना आपने खानदान फिल्म का बताया है और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, ये एक फैमिली ड्रामा इसमें बताया गया है। तो आइए इस गाने का आनंद लेते हैं और उसके बाद फिर बातें करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों के सफर में। आशा और रफी की आवाज में आपने ये खूबसूरत गाना सुना। राजन कृष्ण साहब का लिखा, रवि साहब का संगीत से सजा, खानदान इस एल्बम से ये गाना था। खानदान एक बहुत ही प्यारी जो फैमिली ड्रामा इसमें बताया गया, जहाँ पर एक विकलांग व्यक्ति की कहानी को दर्शाया गया है और फिर भी दो परिवार जो है एक ही छत के नीचे संपत्ति के लिए अजनबी बनकर रहते हैं। तो ये एक बहुत ही अलग जो है स्टोरी इसमें क्रिएट करके डायरेक्टर ने बताया है। ये भीम सिंह साहब ने इसका डायरेक्शन किया था और इस फिल्म को भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार उस समय पे मिला था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत की तरफ हम बढ़ते हैं। विभा जी, अगला कौन सा गाना है आपके पास?
1: मेरे पास सनी ये है, ये भी नेचर से रिलेटेड है। नीले इतने धरती का प्यार,
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: में आते हैं सुबह ऐसे ही शाम ढल। अगेन ये नेचर पर फिल्माया गया गाना है। प्रेमी नेचर का व्याख्यान कर रहे हैं, सुंदरता प्यार
0: जी जी।
1: बरखा देले मस्ती में खेले पेड़ों से मिलके गए।
0: जी विभा जी, बहुत ही खूबसूरत गाना। मुझे लगता है ये उस समय में 70s या 60s के करीब बहुत लोगों ने इसको सुना था। और कभी कभी ये जो शब्द है, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, कभी कभी हम लोग हमारे जो परिवार में जो लोग थे उनसे मैं कभी कभी ये गाने का जो लाइन है वो सुना करता था। तो मुझे तब याद नहीं था कि ये फिल्मी गाना है या फिर इसे पिक्चराइज किया गया है, लेकिन बड़ा अच्छा सूदिंग है वर्डिंग्स इसके, जो हमें एक तरफ नेचर की तरफ ले चलते हैं
1: और पूरी एनर्जी देता है। नेचर को फील करते हुए कि जैसे एकदम ही आप जैसे नीले गगन के तले नीले आप एक पिक्चराइज कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं उसको, और धरती का प्यार बोले ब्यूटीफुली। अगर इसको एक एक लफ्ज को सुनते हुए आप उसको विजुलाइज करते हुए आप साथ तो इसमें और भी पॉजिटिव एनर्जी आप।
0: तो आइए इस गीत की तरफ चलते हैं। साहिल जानवी साहब का लिखा, महेंद्र कपूर की खूबसूरत आवाज और रवि साहब से रवि साहब ने इसे संगीत से संवारा है। हमराज इस एल्बम का एक खूबसूरत गाना आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो,

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना हमराज इस एल्बम का, और आपके दिलो दिमाग पर मुझे लगता है कि ये गाना छा ही गया होगा और एक बार फिर से आपको पुरानी यादें ताजा हो गई होगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं शायरी उसी के लबों पर सजती है साहेब, शायरी उसी के लबों पर सजती है साहेब, जिसकी आंखों में इश्क रोता है। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबू का सफर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: गाना है मेरे पास प्यार भरा गाना है, और आंखों में सावरिया की तस्वीर रखने का, नींद कभी रहती आंखों में अब रहते हैं सा, चैन कभी रहता था दिन में अब रहते हैं सा।
1: जी जी जी, बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो आइए सावरिया का ये गाना जो है बहुत ही प्यार से सुनते हैं। और ये आसरा 1966 में आई थी फिल्म। ये फिल्म में जो कलाकार थे, माला सिन्हा, विश्वजीत राय, विश्वजीत, निरुपमा राय, बलराज सहानी पर ये फिल्म बनी थी। तो चलिए इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना जो अभी विभा जी ने याद कराया है, इस गाने को सुनते हैं, उसके बाद फिर आपसे मुखातिफ होते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना था। मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा ही मजा आ रहा होगा इन गानों को सुनकर, क्योंकि ये ऐसे कलेक्शन है जिसके बारे में शायद अभी के जमाने में, नए जमाने में लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। एक खलिश सी रह गई दिल में, मुझ जैसा इश्क करता मुझसे भी कोई। तो चलिए रिबा जी, अगला गाना कौन सा है? मुझे लगता है कि हम लोग आखिरी मोड़ पे हैं, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं, और अंतिम पड़ाव वाला गाना जो है थोड़ा सा दमदार हो।
2: जी बिल्कुल, नींद ना मुझको आए, दिल में बुराए, चुपके चुपके मेरी आंखें सोया प्यार जगाए। वाकई इस प्यार को जगाने की
1: जी जी जी,
2: और होता तो नींद नहीं आती, ये तो एक्सपीरियंस ही बता सकता है। और एक बेचैनी रहती है, दिल घबराता है, और मीठा मीठा सांस दिल है, आंखों के रास्ते दिल तक जाने।
1: क्या बात है, क्या बात।
2: ये हर आशिक की गाथा है, ये किसी की नहीं, ये आशिक ज्यादा अच्छे से इसको महसूस कर पाते हैं कि जब नींद नहीं आती तो कौन सा चेहरा आपके सामने है। तो इसमें इसके गाने, इसके बोल भी बहुत अच्छे
1: संतोषी साहब ने लिखा था, और इसके साथ इस गाने को गाया था लता मंगेशकर और हेमंत कुमार ने। वक्त हो गया इजाजत का, तो विभा जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही खूबसूरत गाने हमारे सभी श्रोताओं को आज के इस एपिसोड में सुनाए, और मुझे लगता है कि गाने जो है एक से बढ़कर एक थे, बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन आपने दिया हमें, तो थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू आपका भी, और सुनने वाले हमारे श्रोताओं का भी, जिन्होंने बड़े प्यार से गानों को सुना और हमारी कक्षा को भी सुना।
1: जी
2: बहुत बहुत प्यार भरा, प्यार के साथ नमस्कार।
1: जी जी जी, आपको भी ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार। जाते जाते दो लाइने आपके लिए, आज कुछ लिखने की फिराक में हूँ, आज कुछ लिखने की फिराक में हूँ, आज सुबह ही मुझे इश्क हुआ है। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। चलिए साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और जाते जाते आपके लिए ये खूबसूरत गाना। अगले एपिसोड में मिलेंगे इसी तरह कुछ नए कलेक्शन लेकर, तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ। सलाम नमस्ते, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर, एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नीतू जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर आई हूं जिसका नाम है शिक्षक दिवस। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान शिक्षक, दार्शनिक और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि एक अच्छे शिक्षक का योगदान समाज और देश के भविष्य को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षक हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक बच्चा था जिसका नाम था आरव। आरव पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसे कक्षा के सामने बोलने से बहुत डर लगता था। जब भी शिक्षक उसे कुछ बोलने के लिए कहते, वह घबरा जाता और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता। एक दिन उसकी शिक्षिका ने उसकी परेशानी समझी। उन्होंने उसे डांटने की बजाय प्यार से कहा, आरव, तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है, तुम्हें केवल खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। शिक्षिका ने उसे रोज थोड़ा थोड़ा बोलने का अवसर दिया। जब आरव से कोई गलती होती तो वे उसे डांटने की बजाय समझाती और दोबारा प्रयास करने के लिए प्रेरित करती। कुछ महीनों बाद आरव का डर दूर हो गया। एक दिन उसने अपने स्कूल के मंच पर सैकड़ों बच्चों के सामने भाषण किया। सभी ने तालियां बजाई। बड़े होकर आरव एक सफल व्यक्ति बना। जब उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा गया तो उसने कहा, मेरी शिक्षिका ने मुझे केवल किताबों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि खुद पर विश्वास करना सिखाया। यह छोटी सी कहानी हमें बताती है कि शिक्षक केवल हमें पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व और भविष्य का निर्माण भी करते हैं। शिक्षक दिवस का महत्व यही है कि इस दिन हम अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान, प्रेम और आभार व्यक्त करते हैं। शिक्षक हमें सही और गलत में अंतर समझाते हैं। वे हमें अनुशासन, ईमानदारी, मेहनत, दया और अच्छे संस्कार सिखाते हैं। इस दिन का उद्देश्य शिक्षकों के योगदान को याद करना, उन्हें धन्यवाद देना है। शिक्षक एक ऐसे दीपक की तरह हैं जो स्वयं प्रकाश देकर दूसरों का जीवन रोशन करते हैं। वे हमारी गलतियों से सीखने में मदद करते हैं और असफल होने पर हमें फिर से प्रयास करने की हिम्मत देते हैं। इसलिए शिक्षक दिवस केवल एक उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, उनकी दी हुई सीख को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अंत में मैं अपने सभी शिक्षकों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। गुरु वह है जो ज्ञान की रोशनी से हमारे जीवन का अंधकार दूर करते हैं। मेरे सभी आदरणीय शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्रोताओं, फिर मिलेंगे एक नए चिंतन के साथ। बने रहे हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहे इसी तरह प्यार से। खुश रहे, खुशियां बांटे।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आज का?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: ऐसी धरनी को नमन करता है पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई के प्रदेश में, जी हाँ, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। भारत का ये सुंदर प्रदेश गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा राज्यों से घिरा हुआ है और इसके पश्चिम में है वीरांत अरब सागर। आइए अब जानते हैं कुछ यहाँ के दिलचस्प इतिहास के बारे में। प्राचीन 16 महाजनपदों में अश्मक या अशक का स्थान आधुनिक अहमदनगर के आसपास का माना जाता है। सम्राट अशोक के शिलालेख भी मुंबई के निकट पाए गए हैं। महाराष्ट्र के पहले प्रसिद्ध शासक सातवाहन, जो ईस्वीसन पूर्व 230 से 225 तक रहे, वे महाराष्ट्र राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने अपने पीछे बहुत से साहित्यिक, कलात्मक तथा पुरातात्विक प्रमाण छोड़े हैं। उनके शासन में ही मानव जीवन के हर क्षेत्र में भरपूर प्रगति हुई। फिर इसके बाद वाकाटक आए, जिन्होंने भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। उनके शासनकाल में महाराष्ट्र में शिक्षा, कला और धर्म सभी दिशाओं में अत्याधिक विकास हुआ। उनके शासन के दौरान ही अजंता की गुफाओं में उच्च कोटि के भित्ति चित्र बनाए गए। वाकाटकों के बाद कुछ समय के लिए कलचुरी वंश ने शासन किया और फिर चालुक्य सत्ता आई। इसके बाद तटवर्ती इलाकों में शिलाहारों के अलावा महाराष्ट्र पर राष्ट्रकूट तथा यादव शासकों का भी नियंत्रण रहा। यादवों ने मराठी को शासन की भाषा बनाया और दक्षिण के एक बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित। इसके बाद याद करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, जो कि पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपना राज्य दक्षिण में मदुराई तक फैला दिया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद कर ली। वह जो स्थान था वो पहले देवगिरी नाम से प्रसिद्ध था और अहमदनगर के पास था। बहमनी शासकों ने महाराष्ट्र तथा इसकी संस्कृति को समन्वित किया और शिवाजी के कुशल नेतृत्व में महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास हुआ है और ये एक अलग पहचान के साथ उभर कर सामने आया। शिवाजी ने स्वराज तथा राष्ट्रीयता की एक नई भावना पैदा की। उनकी प्रचंड शक्ति ने मुगलों को भारत के इस भाग में आगे नहीं बढ़ने दिया।

पेशवाओं ने दक्षिण के पठार से लेकर पंजाब पर हमला बोलकर मराठाओं का आधिपत्य स्थापित किया, परंतु 1820 तक आते आते अंग्रेजों ने पेशवाओं को हरा दिया था और ये प्रदेश भी अंग्रेजी साम्राज्य का एक अंग बन गया था। फिर शुरू हुए स्वतंत्रता संग्राम। इसमें भी महाराष्ट्र सबसे आगे था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भी यही हुआ है। मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों के अनगिनत नेताओं ने पहले तिलक और बाद में महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस के आंदोलन को आगे बढ़ाया। गांधी जी ने भी अपने आंदोलन का केंद्र महाराष्ट्र को बनाया था और गांधी युग में राष्ट्रवादी देश की राजधानी सेवाग्राम। स्वतंत्रता के संग्राम की बात आ गई तो सुन लेते हैं एक देशभक्ति का गीत।

0: ऐसी धरनी, ऐसे व्यक्तित्व को नमन करता है पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: और आप हो हमारे साथ महाराष्ट्र के सफर में। अब जानते हैं महाराष्ट्र की पहचान एक प्रदेश के रूप में कैसे हुई। शायद आप सभी जानते होंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात का जो स्थापना दिवस है 1 मई को मनाया जाता है। अब ये दोनों राज्य मुंबई का हिस्सा थे। जब मुंबई राज्य से महाराष्ट्र और गुजरात के गठन का प्रस्ताव आया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुंबई को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की वकालत की। उनका तर्क था कि अगर मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बने रहना है तो यह करना आवश्यक है। किंतु देश के पहले वित्त मंत्री और वित्त विशेषज्ञ चिंतामणि देशमुख ने इसका प्रखर विरोध किया और इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा भी दे दिया। देश की आजादी के बाद मध्य भारत के सभी मराठी भाषा के स्थानों का समीकरण करके एक राज्य बनाने को लेकर बड़ा आंदोलन चला और 1 मई 1960 को कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र जो खानदेशी नाम से जाना जाता है तथा विदर्भ सभी संभागों को जोड़कर महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की गई। महाराष्ट्र आपस के मराठी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है जो पहले 4 अलग अलग प्रशासनों के नियंत्रण में था। इनमें मूल ब्रिटिश मुंबई प्रांत में शामिल दमन तथा गोवा के बीच का जिला, हैदराबाद के निजाम की रियासत के 5 जिले, मध्य प्रदेश के दक्षिण के 8 जिले तथा आसपास के ऐसी अनेक छोटी छोटी रियासतें शामिल थी जो समीपवर्ती जिलों में मिल गई थी। महाराष्ट्र भारत के स्तर में बसा हुआ है और भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये राज्य मुख्यतः पठारी है। महाराष्ट्र पठारों का पठार है। इसके उठे हुए पश्चिमी किनारे सह्याद्री पहाड़ियों का निर्माण करते हैं और समुद्र तट के समानांतर तथा इसके ढलान पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर धीरे धीरे बढ़ती है। और राज्य के उत्तरी भाग में सातपुड़ा की पहाड़ियां हैं जबकि अजंता और सतमाला पहाड़ियां राज्य के मध्य भाग से होकर जाती है। अरब सागर महाराष्ट्र की पश्चिमी सीमा का पहरी है जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश इसके उत्तर में है। राज्य की पूर्वी सीमा पर छत्तीसगढ़ है और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश इसके दक्षिण में। महाराष्ट्र में कई प्रकार की आकर्षक भू आकृतियां हैं। नर्मदा नदी जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती हुई अरब सागर में गिरती है राज्य की उत्तरी सीमा के एक हिस्से का निर्माण करती है और अरब सागर में ही मिलने वाली ताप्ती नदी की विभ्रंश घाटी इसकी उत्तरी सीमा के दूसरे हिस्से को चिन्हित करती है। ये दो नदी घाटियां सतपुड़ा श्रृंखला नामक उत्खंड से विभक्त होती है। ताप्ती घाटी के दक्षिण में अरब सागर के किनारे कोकण का तटीय क्षेत्र है और जिसके पूर्व में पश्चिमी घाट या सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से विख्यात कगार स्थित है। सह्याद्री पहाड़ियों की तराई कोकण में अरब सागर से 6.4 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचती है। कोकण का जो तटीय किनारा है संकरा है, इसके बीच बीच में सह्याद्री पहाड़ियों के पर्वतीय स्कंद है और क्षेत्र को कई पश्चिमवर्तीय द्रुतगामी नदियां प्रवाहित करती है। उत्तर में स्थित उल्लास इनमें सबसे बड़ी है। सह्याद्री पहाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में दीवार की तरह लगभग 640 किलोमीटर तक लगातार स्थित है लेकिन इसमें गुजरने वाले कई दर्रे तटीय भूमि और भीतरी क्षेत्र के बीच महत्वपूर्ण सड़क और रेल संपर्क उपलब्ध कराते सह्याद्री की पूर्वी ढलान का उतार दक्कन के पठार की ओर क्रमिक है जो पूर्व की ओर ढलान वाली गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदी की घाटियों द्वारा निर्मित है और इन नदियों के अंत प्रवाह से महादेव, अजंता, बालाघाट और अन्य पर्वत श्रृंखलाओं को आकार मिलता है। महाराष्ट्र में स्थित ये पर्वत श्रृंखलाएं और घाटियां रुके हुए लावे से निर्मित है जिनकी मोटाई कई स्थानों पर 3050 मीटर है। कई पहाड़ियों में लावे के विभिन्न प्रकार के अपरदन के कारण पठारी समतल जैसे ऊपरी हिस्से से युक्त सीढ़ीनुमा गगार की विशेष संरचनाएं बन गई है। अगर बात करें कृषि की, तो महाराष्ट्र के लगभग 65% श्रमिक कृषि तथा संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं, तूर, उड़द, चना और दलहन। ये राज्य तिलहन का प्रमुख उत्पादक है। महाराष्ट्र को पूरे देश का औद्योगिक क्षमता का केंद्र माना जाता है और राज्य की राजधानी मुंबई देश की वित्तीय तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्र है। राज्य की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये बात हुई राज्य की आर्थिक विकास की, पर शिक्षा की बात करें तो ये शिक्षा एक ऐसा स्तंभ है जो किसी भी देश या प्रदेश को विकास की ओर ले जाता है। तो आइए थोड़ा जानते हैं महाराष्ट्र के शिक्षा के बारे में। यहाँ के शिक्षण संस्थान में मुंबई विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय, कोल्हापुर में जो है शिवाजी विश्वविद्यालय, मुंबई में एसएनजीटी महिला विश्वविद्यालय, फिर मुंबई की है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, कवि गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय जो रामटेक में है, और इसके अलावा भी कई विश्वविद्यालय शामिल है। यहाँ शिक्षा और प्रशिक्षण की निगरानी और प्रायोजन के लिए शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा निदेशालय बने हुए हैं। महाराष्ट्र में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ अग्रणी अनुसंधान संस्थान भी है। ये संस्थान जल तथा विद्युत, उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण अभियांत्रिकी, परमाणु अनुसंधान आदि से संबंध रखते हैं। महाराष्ट्र में शिक्षा के और भी अवसर कई अलग अलग क्षेत्र में प्राप्त किए जा सकते हैं और वंडरफुल है यहाँ की संस्कृति, बहुत ही निराली। महाराष्ट्र का सांस्कृतिक जीवन तो प्राचीन भारतीय संस्कृति, सभ्यता और ऐतिहासिक घटनाओं के प्रभावों का मिश्रण है। ये मराठी भाषा और मराठी साहित्य विकास महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति है। स्थानीय क्षेत्रीय देवताओं के प्रति भक्ति, ज्ञानेश्वर और तुकाराम जैसे संत कवियों की शिक्षाएं, छत्रपति शिवाजी और अन्य राजनीतिक तथा सामाजिक नेताओं के प्रति आदर भाव महाराष्ट्र की संस्कृति की विशेष पहचान है। कोल्हापुर, तुलजापुर, पंढरपुर, नासिक और अन्य धार्मिक स्थलों पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मेलों और त्योहारों का भी महत्व कम नहीं है। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में गणेश चतुर्थी, रामनवमी और अन्य स्थानीय व क्षेत्रीय मेले और त्योहार महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके द्वारा लोगों का स्थानीय तथा क्षेत्रीय मेल मिलाप होता है और ये सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। अभी जो गणेश जी की यादें ताजा हो गई है तो क्यों नहीं हम सुने उनकी महिमा का ये।

0: आप हो हमारे साथ।
1: ऐसी धरनी को नमन करता है पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
0: महाराष्ट्र के शहर पर मेरे भाई और बहनों, महाराष्ट्र के नाम से अभिनय का नाता तो बहुत पुराना है। वैसे पूरे भारत के फिल्म उद्योग की जो शुरुआत है, इसका श्रेय दादा साहेब फाल्के और बाबूराव पेंटर इनके जैसे अग्रणियों को जाता है। पुणे की जो प्रभात फिल्म कंपनी, उन्होंने संत तुकाराम और ज्ञानेश्वर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी। हिंदी सिनेमा में नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित जैसे मराठी कलाकार विशेष रूप से सफल रहे। मराठी साहित्य की ही तरह महाराष्ट्र में संगीत की भी प्राचीन परंपरा रही है। लगभग 14वीं शताब्दी में इसका मेल भारतीय संगीत से हुआ और आधुनिक काल में पंडित पलुस्कर और पंडित भातखंडे ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई दिशा दी। विलायत में हुसैन अल्लाह रखा इन जैसे अन्य वादकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आज हम पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर जैसे गायक इनको याद करते हैं। वे महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। महाराष्ट्र में कला की भी प्राचीन परंपरा रही है। जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण, लकड़ी के खिलौनों, चमड़े के सामान और मिट्टी के बर्तन, इनकी डिजाइनों की तरफ आप देखेंगे तो पता चलेगा महाराष्ट्र की कला भी बहुत ही वंडरफुल रही है। 1833 में स्थापित सर जेजी स्कूल ऑफ आर्ट कला शिक्षा के क्षेत्र में पहला आधुनिक संस्थान था और अब महाराष्ट्र के अधिकांश नगरों और बड़े शहरों में कला संस्थान स्थापित है। शास्त्रीय नृत्य शैलियों ने प्रतिभाओं को आकर्षित किया और पुणे जैसे बड़े नगरों में इनके प्रशिक्षण विद्यालय फल फूल रहे हैं। लावणी, ओवाड़ा मना रोमानी गीत और ओजस्वी नृत्य और तमाशा जैसी संगीत, नाटक व नृत्य से युक्त लोक कथाएं पुनर्जीवित हुई है। कला और फिल्म निदेशालय, साहित्य और संस्कृति बोर्ड राज्य सरकार की गहरी रुचि के परिचायक है। महाराष्ट्र की जो संस्कृति का प्रभाव महाराष्ट्र से बाहर भी फैल रहा है। भूतपूर्व मराठा साम्राज्य की राजधानियां जैसे बड़ौदा, अभी वो वडोदरा के नाम से जानी जाती है, ग्वालियर और अन्य नगरों में महाराष्ट्र मंडल इसमें खास सक्रिय भूमिका निभा रही है। महाराष्ट्र की और विशेषता सुनने से पहले हम लता जी के इस मनभावन कंठ को भी सुन लेते हैं।

0: आपको हमारे साथ महाराष्ट्र की सैर पर।
1: ऐसी धरनी ऐसे व्यक्तित्व को नमन करता है पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
0: दोस्तों, आप हमारे साथ है महाराष्ट्र के प्रवास पर, महाराष्ट्र के सैर पर। महाराष्ट्र में देखने और घूमने के लिए कैसे स्थान है ये भी हम देखते हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र हैं खास अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कैनरी गुफाएं, पितलखोरा, कारला गुफाएं, इनके बाद महाबलेश्वर, माथेरान और पंचगनी, जवाहर, मालशीज घाट, अम्बोली, चिकलधारा और पन्नाला पर्वतीय स्थल। इसके अलावा यहाँ कई धार्मिक स्थान भी हैं, जैसे पंडरपुर है, नासिक है, शिरडी, नांदेड़, वैद्यनाथ, त्र्यंबकेश्वर, तुलजापुर, गणपति पुले, भीमा शंकर, हरिहरेश्वर, शेगांव आदि। ऐसे सुंदर स्थल और प्रकृति दोनों ही साथ है महाराष्ट्र में। यह था हमारा और आपका महाराष्ट्र का सफर। अब आगे बढ़ते हैं एक मंजिल की ओर, 29 राज्य, एक राष्ट्र, एक कहानी।
1: ऐसी धरनी ऐसे व्यक्तित्व को नमन करता है पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
0: फिर मिलकर रहेंगे, लेकिन अंत में ऐसे महान राष्ट्र को दिल से सलाम करते हुए आपके खिदमत में पेश है ये गीत।

की।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर, पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: हमारा भोजन हमारा व्यक्तित्व, लेखिका सुधापुरी। पात्र परिचय: उन्नति, दृष्टि, यश, वेदांत, आदित्य प्रकाश, आदित्य, सैंडी, आकाश।
3: मजा आ गया, ये तरबूज तो बहुत ही मीठा है।
4: आह, मेरे खरबूजे का तो कोई मुकाबला ही नहीं।
2: ने क्या बात करते हो, फलों के राजा के सामने किसी और फल की तारीफ, लाहौल बिलाकवत।
5: वो क्या होता है?
2: मुझे भी पता नहीं, पर ऐसा ही कहते हैं ना जब कोई कुछ गलत करता है।
5: ये फलाहारी पिकनिक मुझे बहुत अच्छी लगती है।
3: हाँ, ये मेरी ही दादाजी का आइडिया था।
4: हाँ, मैं तो उन्हें बाबूजी कहकर पुकारता हूँ।
6: और मैं बाबा।
3: वो मेरे सब दोस्तों को बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं बचपन में बहुत सारे दोस्त बनाने चाहिए, बचपन की दोस्ती हमेशा प्यारी लगती है।
7: मेरे पापा भी यही कहते हैं।
4: मैं भी इस बात में विश्वास रखता हूँ कि हर एक दोस्त जरूरी होता है।
2: जैसे किसी के साथ हम कोई खास खेल खेल सकते हैं,
5: कोई पढ़ाई में मदद करता है चाहे वो खेलने में उतनी दिलचस्पी नहीं लेता हो,
3: और कोई हमारा मजेदार चटपटा खाना खाने में हमारे साथ होता हो।
7: जैसे इस समय हम सभी मिलकर गर्मियों के मजेदार फल खा रहे हैं।
3: ये ठीक है।
6: ये फलों का आइडिया अच्छा है, कितना ही पेड़ भर के क्यों न खा लो, कभी सुस्ती ही नहीं आती,
7: बल्कि इन्हें खाकर हम ताजा ही महसूस करते हैं।
8: तुम्हें पता भी है फल हमारे शरीर की किस प्रकार मदद करते हैं?
3: मजे करने में।
8: वो तो है ही, पर सबसे जरूरी बात ये है कि ये हमारी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं।
7: तो रोटी, पूरी, आलू, दाल, ये सब?
4: हाँ, और दूध।
8: वो सब भी जरूरी है, पर अलग अलग भोजन हमारे शरीर को अलग अलग तरीकों से मदद करते हैं।
9: अभी हम उस जगह पर पहुँचे ही हैं, विज्ञान में।
8: हाँ, तुम सब इन अलग अलग फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे कुछ बॉडी बिल्डिंग के लिए होते हैं, कुछ एनर्जी देने के लिए, तो कुछ बीमारियों से रक्षा के लिए।
2: सब भोजनों में अलग अलग पौष्टिक तत्व होते हैं ना?
8: जैसे दालों में प्रोटीन, जो बढ़ने में और शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करता है। अनाज में कार्बोहाइड्रेट, जो काम करने की शक्ति देता है। मक्खन और घी में वसा, ये भी हमें शक्ति देता है। और कई विटामिनों को शरीर में ग्रहण करने की भी क्षमता है। फल और सब्जियों में विटामिन और मिनरल होते हैं।
5: और दीदी, संपूर्ण आहार पता है किसे कहते हैं?
3: मुझे पता है, दूध को।
10: और संतुलित आहार?
6: ऐसा भोजन जिसमें सब पौष्टिक तत्व सही मात्रा में हो।
7: पर ऐसा तो किसी व्यक्ति की उम्र, अवस्था, लिंग, वो क्या कार्य करता है, इस सब पर भी तो निर्भर होगा ना कि उसके लिए हम किसे संतुलित आहार कहेंगे।
8: हाँ, जैसे बढ़ते बच्चों के लिए खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए।
4: और किसी मजदूर को शक्ति देने वाले भोजन की जरूरत होगी।
8: बिल्कुल ठीक,
2: पर मुख्य बात तो यह है ना कि हमें जीने और बढ़ने के लिए भोजन की जरूरत है।
5: क्यों, बीमारियों से रक्षा भी तो।
3: और ताकतवर बनने की भी।
7: कहते हैं सबसे पौष्टिक भोजन वह होता है जो सबसे कम पका हो।
8: हाँ, उसके पौष्टिक तत्व आग से और पकने से नष्ट नहीं होते।
6: पर कच्चा भोजन तो बस फली हुए ना, जैसे अमरूद, केला, खरबूजा,
7: अनार, सीताफल, खुरमानी, आलू बुखारा, नाशपाती।
8: केला भूल गए, छोटे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी।
4: मुझे तो जामुन बहुत अच्छा लगता है।
2: मेरे दादाजी इन्हें बहुत खुश होकर खाते हैं।
8: ये मधुमेह की बीमारी वाले लोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है।
2: उन्हें तो पपीता भी बहुत पसंद है।
5: मुझे तो बेर बहुत पसंद है।
3: मुझे शहतूत।
10: मुझे फालसे।
6: क्यों, कुछ सब्जियां भी तो है जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं, जैसे गाजर, मूली, टमाटर, चुकंदर
7: और ककड़ी, खीरा।
8: टमाटर को हम सब्जी कहते हैं पर असल में ये एक फल होता है।
2: अच्छा,
4: फिर नट्स भी तो, जैसे मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट,
2: किशमिश और चिलगोजे भी।
5: पता है अब चिलगोजे बहुत मुश्किल से मिलते हैं।
3: कहीं मौसम में बदलाव तो इनके कम उगने का कारण तो नहीं?
10: तुम भी ना हर बात को प्रदूषण तक ले जाते हो।
8: तो गलत क्या है जब पशुओं की इतनी प्रजातियां विलुप्त हो रही है मानव के प्रदूषण फैलाने से, तो पेड़ भी तो हो रहे हैं।
6: जरा सोचो ऐसा हो कहीं एक दिन हमें भोजन देने वाले पेड़ पौधे कहीं विलुप्त ना हो जाए, जैसे मक्का, बाजरा।
7: क्यों, गेहूं भी तो है।
4: और दालें, फल, मटर, राजमा, चना,
2: सब्जियां जैसे पालक, गोभी।
5: पर अगर पौधे प्रदूषण से प्रभावित हुए तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे, क्योंकि तेल और घी भी तो इन्हीं से आता है, कुछ सीधे सीधे और कुछ
3: पता है इनडायरेक्ट तरीके से।
10: गाय घास या पौधा खाती है, दूध देती है, मक्खन निकलता है और घी।
6: पर बात सुनो, अगर पौधों पर प्रदूषण का बुरा असर पड़ेगा तो पशुओं पर भी पड़ेगा, तो दूध पर भी, दही, शहद, पनीर, अंडे या मांस।
7: मैं तो शाकाहारी हूँ।
2: मैं भी मांसाहारी नहीं हूँ, शाकाहारी हूँ।
8: चलो कुछ सकारात्मक सोचते हैं, कुछ नहीं होगा, तुम सब हो ना। जब जानते हो क्या समस्या है तो समाधान भी तुम ही निकालोगे। अच्छा ये तो बताओ, क्या तुम सब खाने से पहले हाथ धोते हो?
7: मैं तो धोती हूँ।
4: मैं भी, अच्छी तरह साबुन से।
2: मैं भी।
5: सबको हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए और खाने को खूब अच्छी तरह से चबा चबा के खाना चाहिए।
3: दादाजी कहते थे हमारे 32 दांत होते हैं, तो हर एक दांत को एक एक बार तो भोजन चबाने का मौका मिलना ही चाहिए।
10: ये बात ठीक है, ऐसा हम हर कौर को कम से कम 32 बार चबा कर ही लेंगे।
8: हाँ, पर खाते खाते बातें नहीं करनी चाहिए।
6: मेरी मम्मी कहती है कि सही समय पर भोजन करना चाहिए।
7: वह कहते हैं कि जो बच्चे नाश्ता करके स्कूल जाते हैं उनका दिमाग बहुत तेज चलता है।
4: तो हमें नाश्ता जरूर करना चाहिए।
2: हमारी टीचर उस दिन कह रही थी कि दिन में नाश्ता, दोपहर को लंच और रात का खाना तो जरूर ही खाना चाहिए।
5: और दीदी सबसे जरूरी बात जो सब भूल ही रहे हैं वो है साफ खाना खाना, ढका हुआ और ताज़ा खाना।
3: बासी खाना या सड़ा गला भोजन करने से बीमारी हो सकती है।
10: हाँ, और उन पर मक्खियाँ बिल्कुल ना बैठी हों, ये ध्यान रखना चाहिए।
6: और साफ बर्तनों में खाए, इस बात का सबको ध्यान रखना चाहिए।
7: पर सबसे जरूरी बात तो ये है कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए।
8: हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें इतना अच्छा भोजन मिल रहा है, उतना ही लेना चाहिए जितना कि हम खा सकें।
4: दीदी शादियों में देखा है लोग अपनी प्लेटों में कितना खाना भर लेते हैं और
2: फिर खाया नहीं जाता तो फेंक देते हैं।
5: चलो आज मिलके कसम खाते हैं, न खाना वेस्ट करेंगे न किसी को करने देंगे।
3: हाँ उतना ही प्लेट में डालेंगे जितना खा सके।
10: इन सब बातों से ही तो एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होगा।
9: अच्छा भोजन, अच्छा व्यक्तित्व,
7: ताज़ा, लाभदायक, रुचिकर, सबको पसंद आने वाला, सही मात्रा में सब गुणों वाला, साफ, सशक्त, समस्याओं से लड़ने में सहायक।
8: ये भोजन की बात कर रहे हो कि व्यक्तित्व की?
9: दोनों की।

0: डाल दे, जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी ये ना, ये ना.
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत.
3: दादी भोळी माझी आई, सुखाची कुसावली.
0: या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: ओम शांती. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत. खुशी को जब हमने देखना शुरू किया तो हमने पास्ट में देखा, तो हमें पता चला कि जितना हम पास्ट को पकड़ के बैठेंगे खुशी उतनी छूटती जाएगी. फ्यूचर में जब हम जाते जाते हैं, प्लानिंग करते हैं या हर अचीवमेंट जो ऐसा होगा तो मुझे खुशी मिलेगी, तो डिपेंडेंसी वहाँ पहुँचती रहती है. और बार बार ये कहा भी जाता है कि पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर प्रेजेंट में रहना चाहिए, यानी ये लम्हा, ये मोमेंट जब हम आपके साथ हैं या कोई भी जीवन में जब भी हम जहाँ हैं वो हमारा प्रेजेंट. कैसे उसको अगर हम सही तरीके से लें तो हमारी खुशी कायम रह सकती है और वो इंडेक्स बहुत स्ट्रेट रह सकता है. इस पर बात करते हैं. हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
5: ओम शांति
4: सिस्टर शिवानी. सब कुछ तो हमें समझ में आ गया, मतलब जिस जिस पर डिपेंड कर रहा था वो तो छूट गया हमसे. मतलब पास्ट भी छूटा और फ्यूचर पर भी हमें समझ में आया कि जहाँ प्लानिंग सही है, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इज नॉट बैड, बट देन माई डिपेंडेंसी ऑफ बींग हैप्पी, वो अगर फ्यूचर पर डिपेंड होगी तो उसके साथ तो बहुत प्रॉब्लम आएगी. प्रेजेंट पे आ जाते हैं. व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय, मतलब हर बार बात ये की जाती है, प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट पे रहना?
5: एक्चुअली क्यों पास्ट और फ्यूचर में क्या होता कि जब भी हम पास्ट का वर्णन करते या फ्यूचर का करते, वी आर इन द डूइंग मोड. यू नो, पास्ट के बारे में ऐसे व्हाट शुड हैव आई डन, एंड इन द फ्यूचर ऐसे व्हाट डू आई हैव टू डू. सो इट बिकम्स द डूइंग, यू नो, द ह्यूमन डूइंग. एंड इस प्रोसेस में हम क्या भूल जाते, द बीइंग पार्ट, व्हाट डू आई हैव टू बी. एंड आज हम अपनी वोकैबुलरी को भी देखें तो हमारी सारी वोकैबुलरी क्या है, व्हाट आई शुड हैव डन, व्हाट आई शुडंट हैव डू, व्हाट शुड
4: हैव, हाउ मच आई हैव बीन डूइंग,
5: तो सब कुछ डूइंग पर फोकस्ड है. और इसीलिए हमारी हैप्पीनेस भी डूइंग पर फोकस्ड हो गई कि ये करेंगे, ये होगा तो खुशी होगी. तो राजयोग हमें सिखाता दैट यू आर नॉट ह्यूमन डूइंग, यू आर अ ह्यूमन बीइंग. सो फर्स्ट बी हैप्पी, नॉट डू एनीथिंग सो दैट यू कैन गेट हैप्पी, बट जस्ट दैट बीइंग हैज टू बी हैप्पी. तो वो बीइंग तो प्रेजेंट, हर मोमेंट में हम उसको रियलाइज कर सकते. तो प्रेजेंट में रहना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ एक बातें ऐसे हम अगर ध्यान रखें तो फिर प्रेजेंट में रहना बहुत ईजी हो जाएगा.
4: जैसे प्रेजेंट में खुश रहना या प्रेजेंट में ही
5: रहना? है तो खुश है.
4: हाँ, I know, amazing.
5: प्रेजेंट में है तो स्टेबल है. डिस्टर्बेंस कहाँ आ रहा था? पास्ट का कोई इमोशन, कोई हर्ट, या फ्यूचर का कोई, यू नो, फियर या एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन भी क्या होती, क्योंकि हमने कहा एक्सपेक्टेशन हमें डिस्टर्ब करती. एक्सपेक्टेशन मीन्स फ्यूचर में आपका बिहेवियर या कोई सिचुएशन उसको प्रेडिक्ट करना, दिस इज एक्सपेक्टेशन. सो वी आर नॉट इन द प्रेजेंट. अगर हम प्रेजेंट में होंगे तो एक्सपेक्टेशंस हमारी खत्म होती जाएंगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज सम काइंड ऑफ अ प्रेडिक्शन. तो प्रेजेंट ऑलवेज वुड मीन स्टेबिलिटी. तो इसमें कुछ एक बातों पर हम ध्यान देते. सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात इज कि आई द सेल्फ, जो मैं हूँ, आई एम ऑलरेडी कम्प्लीट, आई एम ऑलरेडी ब्यूटिफुल. आई डू नॉट नीड टू कम्पीट और कंपेयर विद एनीवन. जब हम फ्यूचर में भी अपनी हैप्पीनेस ढूंढते हैं तो हम देखते हैं मैं इनके जैसा बन जाऊं तो, मैं इस पोजीशन पर पहुंच जाऊं तो, इनके पास जो है वो मेरे पास भी आ जाए, तो देन वी शिफ्ट इनटू द फ्यूचर.
4: आई डोंट फील कंप्लीट, सो व्हाई, इवन इफ आई क्रिएट, ओके, आई क्रिएट दिस थॉट, देन ओनली आई विल फील कंप्लीट,
5: बिकॉज फीलिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट थॉट आई क्रिएट.
4: ओके, दैट इज व्हाई आई फील इनकम्प्लीट, बिकॉज आई थिंक that I'll only be complete if this is a thing will happen.
5: Yes, I think that I will only be happy. Suppose I am assistant manager, let's say, okay? So I create a thought that I will be happy when I become सीनियर मैनेजर. व्हेन आई रीच देयर आई क्रिएट अ थॉट कि मैं तब खुश होंगी व्हेन आई बिकम जनरल मैनेजर. तो ये थॉट्स कौन क्रिएट कर रहा? ये तो मैं ही क्रिएट कर रही हूँ. या इनके पास जो गाड़ी है, जब ये गाड़ी मेरे पास भी आ जाएगी देन आई विल बी हैप्पी. तो ये जो सेल्फ है, ये एनर्जी है, ये शक्ति है. ये शक्ति को ना कोई वस्तु की ज़रूरत है, ना किसी पोजिशन की ज़रूरत है. ये अपने आप में कम्प्लीट है और हैप्पीनेस इसकी नेचर है. इसकी कोई वस्तु या कोई पोजिशन या कोई फिजिकल ब्यूटी इसको कम्प्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि दिस इज़ एनर्जी. This doesn't require any physical object to be complete. This just requires the right thought.
4: Meri, you know, me being this complete energy and me acting in the present also, maybe, you know, doing things or whatever, me being this person also, how does it relate?
5: I am this person only. What is this person? This person means main wo energy jo thoughts create karti, feelings create karti, is body, is costume ke dwara. मैं अपना रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ. अब हैप्पीनेस कहाँ है? हैप्पीनेस मेरी थॉट है. दिस आई कैन क्रिएट एनी टाइम, एनी प्लेस, एनी मोमेंट, इरिस्पेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग. लेकिन मैंने ही वो थॉट्स क्रिएट किए कि मैं इस पोजीशन पर पहुँचूँगा, मैं इनके जैसा सुंदर हो जाऊँगा, मेरे पास इतना सैलरी आ जाएगा, देन आई विल बी हैप्पी. जो एनर्जी है, ये धन से कैसे, क्योंकि एनर्जी है. एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होगा? सिर्फ राइट एनर्जी ही चाहिए होगी ना. फिजिकल चीज़ उसको कंप्लीट नहीं कर सकती. हाँ, ब्यूटी है. अगर कोई हम फिजिकल ब्यूटी की बात कर रहे हैं, अगर मेरा हाथ कट गया सपोज यहाँ, तो हाँ मैं फिजिकली इनकम्प्लीट हूँ, क्योंकि ये फिजिकल है, इसका एक फिजिकल पार्ट ठीक नहीं है, तो आई से आई एम इनकम्प्लीट. सिमिलरली ये एनर्जी है, इट्स ओनली थॉट्स. सो ऑल दैट आई हैव टू डू to feel complete, to feel happy, is to create right kind of thoughts. Even agar ab mera ye haath kat gaya yahan se, dono haath kat gaye, dono paav kat, it doesn't matter because I am here. Ye incomplete hoga, ye body incomplete hogi, lekin main phir bhi kahan hu? I am here. To agar main yahan baith kar, I can create the right thought, even agar.
4: Oh, to agar main wo right thought nahi create kar rahi,
5: to sab kuch hote hue
4: bhi main incomplete hoon.
5: एंड तब मेरी वो डिज़ायर्स की लिस्ट इतनी लंबी होती, ये होगा देन आई फील कम्प्लीट, ये होगा देन आई फील कम्प्लीट, एंड द लिस्ट जस्ट गोज ऑन, एंड देन आई एम ईदर इन द पास्ट और इन द फ्यूचर, क्योंकि मैं सोचती हूँ ये सब मिलेगा देन आई बी कम्प्लीट. तो ये जो सेल्फ रियल, इसीलिए कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन हो, कहते ना गो इनवर्ड्स. हम हमेशा गो इनवर्ड्स मतलब क्या? जस्ट रिमेंबर कि मैं एक शक्ति.
4: And again, make it a belief system, you know, make it a belief actually.
5: You make it a belief, for uske saath aap experiment karo, and dheere dheere it will become the truth.
4: Again, you know, the moment we'll start looking for, jab bhi hume lagne lage ki hume kuch aur chahiye, khud ko complete karne ke liye, khud ko kitni baar hum kehte hain, oh my God, I can actually remember, ki I want to feel complete, you know, I feel so incomplete. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अधूरी हूँ.
5: जैसे अगर हमारे जीवन से कोई रिश्ता टूट जाए किसी के साथ, तो मैं लगता है हम उनके बिना हम अधूरे हैं. एंड दिस गोज एंड टेक्स मी इनटू अ वैक्यूम.
4: डोंट इवन क्रिएट दैट,
5: यू नो, इवन इट्स नॉट ट्रू, इट विल ओनली कॉज मी पेन.
4: यस, यू नो, लाइक लेट्स ट्राई. ओह माय गॉड, अमेजिंग. द फर्स्ट थॉट टुडे इन द एपिसोड ओनली हैज मेड मी फील वेरी वेरी गुड, यू नो, बिकॉज समवेयर ये जो अधूरापन है, यही हमसे बहुत कुछ करवा रहा है.
5: और ये अधूरापन को ही हम कहते हैं वैक्यूम. जो हम कहते हैं ना, अंदर पता नहीं हॉलो फील हो रहा है. हॉलो मतलब क्या? इनकम्प्लीट, अंदर खालीपन है. क्यों खालीपन है? क्योंकि हम बाहर ढूंढ रहे हैं, और बाहर ढूंढने के प्रोसेस में सी है कम्प्लीट, लेकिन थॉट्स क्या क्रिएट कर रहे हैं? ये होता तो, ये होता तो ये किस तरह की थॉट्स हैं? नेगेटिव थॉट्स हैं. ये मेरी एनर्जी को डिप्लीट करती हैं. आई ओनली हैव टू टेक केयर right kind of thoughts to stay complete and fulfilled. And ye jaise hi hum create karna shuru karte, I will feel very very free, liberated, independent. Fir hoga right maine mein independence ki I am free. Nahi to hum hamesha kisi na kisi par, ya kisi na position par, vastu par, dhan par dependent hi rehte hain. Aur ek jo bahut important baat aati, jo humne pichli baar bhi dekha, ki kyun hum future mein jate hain, क्योंकि वर्तमान में, प्रेजेंट में कोई ना कोई बाधा है, कोई ना कोई परिस्थिति है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है, और वो ऑब्स्टिकल मेरे अंदर दर्द क्रिएट कर रहा है. मैं ये समझती हूँ कि वो ऑब्स्टिकल आया तो मेरे अंदर दर्द है. तो मैं क्या करती हूँ? आगे के बारे में सोचना शुरू करती हूँ तो एटलीस्ट आई विल बी पेन फ्री, बट आई हैव टू बी इन द प्रेजेंट. अब प्रेजेंट में ऑब्स्ट्रक्शन जो आई है उसको फेस करने के लिए मुझे क्या थॉट क्रिएट करना पड़ेगा कि ये एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है.
4: अच्छा, फेस तो फिर भी करना ही पड़ेगा ना.
5: फेस तो करना ही है, फेस करना तो है ही मुझे, लेकिन फेस कैसे करना है? क्या मैं ऐसी थॉट क्रिएट करूं ताकि वो मेरे को एक ऑब्स्टिकल लगे ही नहीं. सो वी क्रिएट अ थॉट, व्हाट्स इन द वे इज एक्चुअली द वे, इट्स नॉट इन द वे. हम कहते हैं ये मेरे लिए
4: रास्ते में,
5: ये मेरे रास्ते में खड़ा है, ये एक्चुअली मेरे रास्ते में नहीं है, ये ही रास्ता है. व्हाट्स इन द वे इज एक्चुअली द वे. दिस परिस्थिति जो आई है ये आई है ताकि मुझे एक ऐसा रास्ता लेना. सो लेट्स से दिस इज एन ऑब्स्टिकल, ठीक है. अब हम जा रहे हैं सड़क पे और बीच में एक बहुत बड़ा
4: पत्थर
5: है. अब हम पत्थर को कहकर कहें कि यही पत्थर मेरे रास्ते में खड़ा है और हम रुक जाएं, नहीं. रास्ता ही एक्चुअली कौन सा है? ऐसा है, रास्ता ही ये है.
4: ओह, तो वो पत्थर आया ही मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए.
5: रास्ता ही वो है. हम क्या करते हैं, हम रुक जाते हैं. सपोज रोड डिवाइडर आता, तो व्हाट इज अ रोड डिवाइडर? ऐसे एक रास्ते में बैरियर लगा है, तो हम वहाँ खड़े हो जाते हैं कि यहाँ बैरियर है, अब हम आगे नहीं जा सकते. नो, वी नो, वी सो वी से व्हाट इज द वे? द वे इज लाइक दिस. सो दैट्स व्हाई वी से इट्स नॉट इन द वे, इट्स देयर सो दैट वी सी द वे. और उससे क्या होता है, हमें रुकना नहीं है, हमें उसके अराउंड रास्ता ढूंढना है कि मेरा रास्ता क्या है. फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इट्स नॉट एन ऑब्स्टिकल, इट्स जस्ट कम एंड आई हैव टू लुक फॉर द अदर वे कि कौन सा रास्ता है आगे जाने का. उससे क्या होगा, मेरी थिंकिंग की क्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. इंस्टेड ऑफ नहीं अब मेरा क्या होगा,
4: यू नो, एक वो हताश होने वाला जो एहसास है वो खत्म हो जाएगा.
5: एब्सोल्युटली.
4: क्योंकि जैसे ही वो पहाड़ की तरह पत्थर आ जाता है सामने, हम फिर भी रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा, इससे मुझे जूझना है, तो उसे तो मुझे इग्नोर ही कर सकती हूँ.
5: वो कुछ है ही नहीं, वो जो आया है परिस्थिति
4: वो
5: आई, वो रहेगी, वो आई ही उसे लिए है ताकि मैं अपनी सोच को एक नई दिशा देकर, उसको एक ऑब्स्टिकल नहीं, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझकर. लेकिन उसको अगर एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे तब ना, जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी देखेंगे कैसी थॉट्स चलेंगे, इट विल बी अ डिफरेंट क्वालिटी. एंड दैट्स व्हाई व्हेन लाइक यू से सिचुएशन हिट मी, यू नो दिस हैज हैपेंड टू मी, सो वी विल से नथिंग हैपेंस टू मी, इट हैपेंस फॉर मी. जो भी हुआ, जो भी परिस्थिति आई, छोटी से लेके बहुत बड़ी तक, इट्स नॉट दैट हैपेंड टू मी, इट हैपेंड फॉर मी. क्योंकि जैसे ही परिस्थिति आएगी, इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स, इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स. और ये परिस्थिति ही इसलिए आई है ताकि वो मेरे क्रिएटिव रिस्पॉन्स को और इन्हांस करती है. इस सिचुएशन को आप देखो कितनी परिस्थिति,
4: तो टेस्ट नहीं हो रहा है. हम जैसे जिंदगी को एक टेस्ट बना के रखते हैं ना, कि ये टेस्ट आते हैं, ये मतलब हर उससे गुजरना ही पड़ेगा. ऐसे लगता है कि हम पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा कंपटीशन खेल रहे हैं, यू नो, हर्डल रेस.
5: इट इज, इवन इफ वी लुक एट इट लाइक अ हर्डल रेस, लेट्स से हम जीवन को उस तरह की एक हर्डल रेस भी करें, तो हर्डल रेस होता है तो क्या आता है, जब वो बैरियर आता है, वो हर्डल आता है, तो हम क्या करते हैं,
4: कूद जाते हैं,
5: थोड़े उधर खड़े हो जाएंगे. ये आया ही मेरे रास्ते में, मेरे भाग्य में ही ये हर्डल है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता. डू वी इवन गिव इट अ थॉट देयर, जस्ट जंप. तो जीवन में हर्डल्स तो आने ही हैं, चाहे वो परिस्थितियों के रूप में आएंगे, कई बार लोगों के रूप में आ जाते हैं, कई बार रिश्तों के रूप में आ जाते हैं. बट अगर हम उस हर्डल को लेकर ही बैठ जाएं, जैसे ही हम उसको हर्डल समझते, सी व्हाट आर वी ट्राइंग टू चेक, वी आर ट्राइंग टू चेक हमारी थॉट्स कैसी चलती हैं. हमारी थॉट ये चलती है, अब मेरा क्या होगा, मेरे भाग्य में, उनका भाग्य तो बिल्कुल ठीक है, उनके साथ तो सब अच्छा हो रहा है, एंड वी गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग वो तो अच्छे नहीं है, लेकिन उनके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है. मैंने तो जीवन में सब कुछ अच्छा किया, मेरे साथ फिर भी सब बुरा बुरा, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है मैं उसको कैसा देख रही हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मेरा भाग्य खराब है. सो व्हाट हैज हैपेंड, मैं हर्डल पर आकर वहाँ खड़ी हो गई और हर्डल को देखकर मैं गुस्सा करती जा रही हूँ, दर्द क्रिएट करती जा रही हूँ. और ये दर्द जब मैं क्रिएट करती, मैं ड्रेन आउट हो जाती हूँ,
4: मैं देख ही नहीं, मुझ में हिम्मत ही नहीं रह जाती फिर कूदने की भी.
5: एब्सोल्युटली, ताकत खत्म हो गई ना.
4: हाँ,
5: हर्डल आया तो उस टाइम एक्चुअली और क्या चाहिए, और भी ज्यादा ताकत चाहिए. अभी तो आप एक स्पीड पर भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही हर्डल आया, इट रिक्वायर्स एनर्जी टू जंप. लेकिन जैसे ही ऐसी वाली थॉट्स क्रिएट की, कंपैरिजन की, कंपटीशन की, क्रिटिसिज्म की, ताकत सारी वहीं खत्म हो गई और हम वहाँ हर्डल के सामने आकर खड़े हो गए।
4: इनफैक्ट जब रेस एक्चुअली शुरू भी होती है, आई स्टिल रिमेम्बर, कहा जाता है हर पार्टिसिपेंट को कि फोकस ऑन योर यू नो पाथ। ये आई रिमेम्बर दैट यू नो कि हमें कोच क्या कहते थे, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना, जस्ट कॉन्सेंट्रेट यू नो कि आप कहाँ जा रहे हो और आपकी हर्डल्स को कैसे क्रॉस करें।
5: बस अगर आपने सिर्फ अपनी यात्रा पर देखा तो फिर हर्डल को क्रॉस करना बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन जब हमने अपनी यात्रा को एक कंपटीशन बना लिया है, जीवन की यात्रा में हम फ्यूचर में क्या ढूंढ रहे हैं, हम सक्सेस ढूंढते हैं, सक्सेस अचीवमेंट्स, ये होगा तो खुशी मिलेगी, क्योंकि हमने जीवन को कहा इट्स विनिंग एंड लूजिंग एंड सक्सेस इज विनिंग विनिंग विनिंग, तो मुझे सक्सेस चाहिए सक्सेस, और थोड़ा सा भी अगर वो नहीं हुआ जो राइट मुझे लगा के होना चाहिए, आई कॉल दैट एज फेलियर। जैसे ही फेलियर आया आई गो ठीक ठीक, व्हाई, बिकॉज आई क्रिएटेड अ बिलीफ सिस्टम, लाइफ इज अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, इट्स अबाउट कॉम्पिटिशन, कौन आगे जा रहा है किस, ये सारे बिलीफ सिस्टम्स मुझे क्या करेंगे, ड्रेन आउट ही होते रहेंगे। सक्सेस क्या है, सक्सेस इज अबाउट फीलिंग वेरी लाइट ब्यूटिफुल एंड स्टेबल, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, दैट शुड बी सक्सेस, क्योंकि सक्सेस किसका सक्सेस है, माई सक्सेस, हु एम आई, सो वो जब समझ में आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें जो हमने क्रिएट की थी ये हमारे लिए ऑब्स्टिकल नहीं बनेंगी। नहीं तो आज सक्सेस के नाम पे हम बहुत ज़्यादा यू नो ये दर्द से, स्ट्रेस से, गुस्से से, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, एंड सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या, when I achieve
4: winning
5: this, when I achieve this, that's not success. इतना दर्द क्रिएट किया इन द प्रोसेस, इतने लोगों के साथ इतना कुछ हो गया ऊपर नीचे और पहुंच गए वहां पे, really going to feel successful at the end of it, it's not going to happen. So the right belief
4: actually system, फिर वही होता है कि फिर आपका वो सक्सेस को पाने का दूसरा मरहला जो है आपने तय कर लिया होता है फिर।
5: ये नहीं है कि हमें वो चीजें जो हैं, जो ओहदे हैं, जो पोजीशन है, वो सब हैं, आएंगी और आती ही रहेंगी, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, सक्सेस अगर अपने आप को कहना है तो सक्सेस विल बी कि हर परिस्थिति में हम स्टेबल हैं, हर रिश्ते में हम दे रहे हैं, हर एक जिसको हम मिल रहे हैं उसके साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत पॉजिटिव एनर्जी का है, देन वी कैन कॉल आर सेल्फ सक्सेसफुल, क्योंकि मैं जो हूँ वो जो मेरी शक्ति है, जो जो मुझे मिलता जा रहा है उसके साथ मैं वो शक्ति एक्सचेंज करते जा रही हूँ, देन आई एम सक्सेसफुल। सो वी नीड टू चेक आर बिलीफ सिस्टम्स, और जो हम पास्ट में बहुत बार हर्ट हो जाते, दैट दे हर्ट मी, यू नो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें धोखा दिया है, कभी भी अगर बैठ कर सोचो किसने मुझे धोखा दिया, किसने मुझे हर्ट किया, तो एक लंबी लिस्ट आ जाती, तो इसके लिए हम हमेशा याद रखते कि इट्स नॉट दे हु हर्ट अस, किसी ने हमें हर्ट नहीं किया, उन्होंने जो कहना था वो कहा, जो करना था वो किया, इवन चाहे वो बिजनेस में बहुत बड़ा था या चाहे वो रिलेशनशिप में, उन्होंने किया, मैंने
4: क्रिएट किया वो हर्ट
5: उस सिचुएशन में, जो जो क्रिएट किया, आई क्रिएटेड माय हर्ट, इफ आई रिमेम्बर दिस देन द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट हर्ट, सी वी कैन मेक अप,
4: अपने आप को तो हम आराम से माफ भी कर पाएंगे, लेकिन एक बात है कि मतलब जब कोई कहता है कि उसने मुझे ये कह दिया, मतलब मैं उसके लिए क्या था और उसने मुझे ऐसे किया, आई कैन अंडरस्टैंड कि उसकी कही हुई बात से मैं वो हर्ट क्रिएट करती हूँ, लेकिन वो इतना फास्ट होता है,
5: लेकिन वो देखो कहा उसने ना, वो यहाँ है, उन्होंने कहा अपने दृष्टिकोण से, अपने पर्सपेक्टिव से, जो भी राइट समझा, अब हम कहते हैं कि ऐसे तो नहीं कहना चाहिए था ना, यू नो सो मेनी टाइम्स वी से कि इतना गलत, मतलब हमें लगता है कि सामने वाला इतना गलत कैसे हो सकता था, क्योंकि हमारी डेफिनेशन से वो गलत है, जिसने कहा उसने तो बहुत अपनी डेफिनेशन से राइट ही कहा, लेकिन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, हर एक ने अपने अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया, यू नो कई बार हम कहते हैं बेसिक डिसेंसी, बेसिक कर्टेसी, बेसिक प्रोटोकॉल, उतना भी नहीं है ऐसे बोल दिया, लेकिन उसमें भी हमें ये याद रखना पड़ेगा कि डिसेंसी, कर्टेसी, इसके भी मेजर्स हर एक ने
4: अपने अपने तरीके
5: अपने बनाए हुए हैं, जो मेरे लिए डिसेंसी है ज़रूरी नहीं हर एक के लिए वही होनी पड़ेगी, एंड मैंने अपनी डेफिनेशन ऑफ डिसेंसी क्रिएट की, एंड आई हैव गॉट अटैच टू इट, एंड नाउ आई एक्सपेक्ट दैट एवरी वन शुड फॉलो इट, एंड जो उसको फॉलो नहीं करेगा तो आई गेट वेरी वेरी हर्ट, देन आई ऑलवेज गो इन टू द पास्ट कि उन्होंने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे धोखा दिया, लेट देम गो. वो सारे जो यहाँ बैठे हुए हैं, लेट देम गो, क्योंकि अगर उनको यहाँ बिठा कर रखेंगे तो हम वो दर्द क्रिएट करते जाएंगे. सो लेट्स लर्न कि उन्होंने हमें धोखा नहीं दिया, हमने उनकी वो बात से अपने अंदर वो क्रिएट किया. अभी भी वो आ रही हैं वो थॉट्स, अभी भी वो फीलिंग्स आ रही हैं. जब भी वो आए, रुक कर अपने आप को फिर से याद दिलाएं कि ये जो हर्ट अभी क्रिएट हो रहा है, ये कौन क्रिएट कर रहा है, ये मैं क्रिएट कर रही हूँ. देन इट्स ओके, यू नो इट विल टेक सम टाइम, नॉट दैट अभी डिसाइड किया और अभी ख़त्म हुआ, लेकिन सिर्फ जब वो अगली बार क्रिएट होगा तो आप अपने साथ प्यार से बैठें और अपने आप को सिर्फ याद दिलाएं कि ये हर्ट कौन क्रिएट कर रहा है, अभी ये हर्ट मैं क्रिएट कर रही हूँ, इंस्टेड ऑफ ये धोखा उन्होंने दिया.
4: अच्छा, एंड देन नथिंग टेक्स ओवर ना. देन सी अगेन, अगर अभी भी मैं उन फीलिंग्स को क्रिएट करना बंद नहीं कर पा रही, सो दैट्स ओके, बट इट्स लाइक ऐसा नहीं एहसास है कि मतलब समवन एल्स हैज टेकन ओवर.
5: आई एम स्टिल, आई एम एबल टू टेल माई सेल्फ कि यस, ये दर्द की थॉट्स ये मैं क्रिएट कर रही हूँ और मुझे ही इनको फिनिश करना है.
4: तो किसी ना किसी टाइम पे अपने आप से बात करते करते करते करते मुझ में ये ताकत आ जाएगी कि मैं कर दूँ.
5: जब हमें ये पता चलता कि हम क्रिएट कर रहे हैं, फिनिश करना ईजियर होता है. जब तक उन्होंने किया तो हम तो अपने आप को कह देते जीवन भर मैं नहीं भूलूंगा ये. क्यों? क्योंकि उन्होंने किया तो उनकी गलती इतनी बड़ी है कि जीवन भर उसे भूलना नहीं चाहिए. उनको क्षमा करना, हमें क्षमा ही नहीं करना, मैं जीवन भर उनको फॉरगिव नहीं करूँगा. उनको नहीं फॉरगिव करना है, वी आर क्रिएटिंग पेन फॉर आर सेल्फ टिल वी डोंट लेट देम गो. तो सिर्फ अपने आप को याद दिलाएं, आई एम हर्टिंग माई सेल्फ, स्टॉप, टॉक टू योर सेल्फ विद लव, खत्म हो जाएगा. दो बार चार बार याद आएगा, उसके बाद फिनिश हो जाएगा. लेकिन जहाँ वो थॉट्स उनके बारे में चली जाती है,
4: फिर वो तो हमारे हाथ में नहीं होते ना, फिर वो तो इट एक्चुअली स्टार्ट्स, क्योंकि उनके बारे में तो मुझे पूरी फ्रीडम में मिल जाती है कि मैं किसी भी हालत तक सोच सकती हूँ. लेकिन अपने लिए अगर मैंने खुद क्रिएट किया ये पता चल जाएगा, देन दिस इज रीअश्योरेंस.
5: और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि अगर दूसरे ने किया तो मेरा दर्द में रहना जस्टिफाइड हो जाता है. यू नो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपने आकर मुझे जोर से यार मारा, तो आपने मारा ना, मेरे को दर्द हो रहा है अब, तो मैं दर्द में बैठती हूँ, उन्होंने मुझे मारा.
4: हमसे हमें अगर अपने आप लगता है ना तो इतना दर्द नहीं होता. यस,
5: लेकिन अब तो मार भी कौन रहा है? बार बार जब मैं वो थॉट क्रिएट कर रही हूँ, मैं अपने आप को मार रही हूँ. दिस आई हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज इमोशनल अब्यूज एवरी टाइम क्रिएटिंग दैट थॉट. सो आई जस्ट हैव टू टेल माई सेल्फ कि अपने आप को मारना तो बंद करो, दर्द तो अपने आप खत्म हो जाएगा. बार बार वो थॉट क्रिएट करते हैं तो जोर जोर से हम अपने आप को मार रहे हैं, कोई और नहीं मार रहा. आप मुझे मारो तो मुझे, मेरे हाथ में नहीं है, आप बहुत स्ट्रांग है, आप मुझे मार रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को मार रही हूँ, तो अपने आप को रोकना. कई भाई बहने ईमेल्स में या क्वेश्चंस में ये भेजते कि हम जोर जोर से अपने आप को यहाँ मारते हैं, या कई बार तो दीवार के साथ. दिस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ फीलिंग ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल, कि कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है. क्या कब वो होता है कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आप मतलब आप बिल्कुल
4: बदल ही नहीं रहे, आप समझ ही नहीं रहे,
5: तो मैं अपने आप को ही मारना शुरू कर देती हूँ. देखो, जो फिजिकली अपने आप को मारना शुरू कर दे, अंदर वो कितना अपने आप को अब्यूज कर रहे होंगे. इट इज सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग पेन, बहुत ज्यादा दर्द अपने आप को देना. कुछ एक बातों को इस तरह से अगर हम ध्यान रखें कि आई एम ऑलरेडी कम्प्लीट, आई एम ऑलरेडी ब्यूटिफुल, मुझे कम्पीट नहीं करना है, मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आई है, इट हैज़ कम ओनली फॉर मी टू लर्न द वे. ये कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, और ये इट हैज़ नॉट कम टू मी, इट हैज़ कम फॉर मी टू लर्न हाउ टू क्रिएट द रिस्पॉन्स. और दूसरा, सक्सेस की जो परिभाषा है वो है स्टेबिलिटी एंड एक्सचेंज ऑफ राइट एनर्जी इन रिलेशनशिप्स, एंड कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता. No one can hurt me. तो जिन जिन को आज दिन तक समझा था, एक एक करके उनको हल्का होकर जाने दे, and then you see happiness कैसे हो जाएगी.
4: It becomes your property actually, and this is what we all want. So why don't we try it out? जो आज अभी हमने जो, in fact अगर आपको इस श्रृंखला की शुरुआत याद हो तो हमने बात की थी कि जो हमारी feeling है happiness की, हम बात कर रहे थे, either happy or sad. So हैप्पीनेस भी एक फीलिंग है, सैडनेस भी एक फीलिंग है, और वो मेरे थॉट्स से, मेरे बिलीफ सिस्टम्स से आ रही थी. कहीं ना कहीं ये जो बिलीफ सिस्टम था पूरा का पूरा कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, मुझे कुछ चाहिए कंप्लीशन के लिए, या मेरा सक्सेस, या मेरी अचीवमेंट, या मेरे वो व्यक्ति, या वो लोग, या मेरे अपने बच्चे भी. कितनी बार, कितनी चीज़ों पर हम खुद को कंप्लीट होने का एहसास दिलाते हैं अगर वो हैं तो. ये डिपेंडेंसी है. अगर मैं कंप्लीट हूँ, ये फीलिंग मुझे आ जाए, ये मेरा बिलीफ बन जाए कि आई एम अ कंप्लीट बीइंग एंड देन आई एम इंटरेक्टिंग विद अदर्स, अमेजिंग. इट्स गिव्स मी सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग. और ये हैप्पीनेस का सबसे आई थिंक पहला पायदान होगा. और उसके बाद जिस तरह से कोई भी ऑब्स्टिकल आ रही है, जैसे आपने कहा कि उसे हम एक इट हैज़ नॉट कम टू मी, इट इज़ फॉर मी, सो आई हैव टू लुक फॉर द राइट डायरेक्शन. तो कई सारी बातें आज हमने समझी, उन्हें अनुभव में लेकर आए. ये बिलीफ सिस्टम अपनी अब डायरी में हम नोट करना शुरू कर दें और हर रोज़ पढ़ने लग जाएं, ताकि जो पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं वो डिलीट होने शुरू हो जाएं. कोई बात, कोई मन में आपकी बात ऐसी है जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई बिलीफ सिस्टम है जो डिलीट नहीं हो पा रहा, प्लीज़ फील फ्री, आप हमें फ़ोन करें या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. ससुर शिवानी, थैंक यू सो मच आज की इस पूरी बातचीत के लिए. ओम शांति. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि ये जो पूरा प्रयास है ये आगे भी चलेगा. हर बात जो हम कह रहे हैं, जो मान रहे हैं, उसे अपने अनुभव में जरूर लाएं. फिर मिलेंगे. ओम शांति.

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8 खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: चलिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: अनुराधा, ओ अनुराधा, क्यों री पगली? अरे इस तरह रोने से क्या होगा? ओ तुम आंसू पोंछ रही हो, मगर मुझे हिचकियों की आवाज तो सुनाई दे रही है। अच्छा सुनो, तुम्हें एक कहानी सुना। बहुत दिन हुए, एक बार

मगर सबसे ज्यादा दुख जानती हो किसे हुआ था? अनुराधा जैसी एक राधा थी, बिचारी बिचारी रो रो कर कहती थी।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। मेडिटेशन को जब सही परिपेक्ष में समझा जाना और ये भी जाना कि किस तरह से उससे पहले का जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है और जो भी थॉट्स आना चाहते हैं उन्हें आने देना चाहिए एक साक्षी भाव से, अगर हम उन्हें देख पाते हैं तो फिर मेडिटेशन का जो रास्ता है वो आसान हो जाता है, क्लैरिटी आ जाती है। आज हम में से ज़रूर सब ने थोड़ा थोड़ा अनुभव किया होगा क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस है, काम करते करते ही होगा। लेकिन अब आगे सवाल ये उठता है कि एक बार जब वो महसूस होने लग गया, वो एहसास कि मैं एक पीसफुल सोल हूँ या मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, तब उसे जीवन में जब दिन भर हम साथ रहेंगे तब कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है और उसका क्या लाभ हमें अपने दिनचर्या में मिलना चाहिए, इसी पर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। और इस पर बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, पिछली कड़ी के बाद अब ये क्लैरिटी हो गई कि मेडिटेशन से पहले जो क्लिंजिंग प्रोसेस है, जो बेस है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही एक्चुअली इन द रियल सेंस जो हम अभी तक बात करते आ रहे हैं कि क्या अनुभव होना चाहिए, उसका थोड़ा थोड़ा एहसास होना शुरू हुआ है। अब ये एहसास दिख भी रहा है कि और गहरा होगा, समझ में आएगा, योग भी लगेगा, दिन भर क्या होगा फिर?
1: अब एक बार हमने मॉर्निंग में अपनी तैयारी कर ली तो हमें साथ साथ ये भी थोड़ा सा अटेंशन रखना पड़ेगा कि दिन भर हमें वो स्टेज को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि एक है प्रेपरेशन। जैसे अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज तो कर आएंगे लेकिन फिर सारा दिन में भी तो ध्यान रखेंगे ना कि आप क्या खाते हैं, राइट? अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया सारा दिन तो वो मॉर्निंग के एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगी। वो आपको फिटनेस देगी, सारा दिन में फिर जंक खाएंगे, या वो आपके वेट को कम करेगी, सारा दिन में फिर अगर बहुत ज़्यादा फैटनिंग खाना खाएंगे तो फिर वेट बढ़ जाएगा, तो मोर और लेस फिर उधर ही पहुँच जाएंगे। तो और अगर सारा दिन में ध्यान नहीं दिया तो कुछ दिनों के बाद लगता है कि कोई परिवर्तन तो आ ही नहीं रहा, मेरे अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसलिए प्रोसेस ठीक है लेकिन फिर मुझे उसके ऊपर सारा दिन में भी ध्यान देना है कि यहाँ से चार्ज किया तो सारा दिन उस चार्ज को मेंटेन करके रखना, ये नहीं कि छोटी छोटी बातों में उसको गवा देना। लीकेज नहीं होनी चाहिए बार बार। जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ या मैं एक आत्मा हूँ, प्योरिटी, वो जब आ जाती तो डिस्टर्बेंस खत्म हो जाती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि डिस्टर्बेंस इसी वजह से थी, ये भूल गया कि मैं कौन हूँ, तो हर्ट बहुत जल्दी हो जाते थे। और जब ये स्थिति बन जाती है तो सारा दिन में कई ऐसे पहलू हैं जिस पर हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, जिसमें हम अपने आप में पहले में और अभी में बहुत ज़्यादा अंतर देख पाएंगे। सारा दिन में जो भी सिचुएशंस आती या जितने भी लोगों से हम मिलते हैं तो हम उनको जिस तरह से देखते हैं या जिस तरह से उनकी बात को सुनते हैं और समझते हैं, तो हमारे सुनने और समझने के लिए या हमारे देखने के लिए एक फिल्टर बीच में आ जाता है जिसको हम कहेंगे हमारा परसेप्शन, मेरा दृष्टिकोण, और मैं हरेक को उसी दृष्टिकोण से देखती हूँ। यू नो, आप चाहे कैसे भी हो लेकिन मेरे अंदर जो आपका इमेज क्रिएट होगा वो इस फिल्टर को पास करके होगा, विच इज़ माय परसेप्शन। एंड मेरा परसेप्शन किस आधार पर बना है? मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस और मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरी मान्यताएं क्या हैं और मैंने पास्ट में आपके बारे में क्या क्या सुना है।
0: तो मैं ये सोचती हूँ आपके बारे में कि आप एक बहुत गुस्से वाली हैं या आप एक हर तरह से ऐसी बात सिचुएशन क्रिएट करती हैं या आप हमेशा नाराज ही होंगे। सो वही परिप्रेक्ष्य,
1: राइट? तो अब क्या होगा कि क्योंकि ये फिल्टर बीच में आ जाता है और क्योंकि ये फिल्टर बना है पास्ट एक्सपीरियंसेस से और बिलीफ से, मतलब कहीं ना कहीं ये फिल्टर का आधार पास्ट है, बीती हुई बातें। अब मुझे जो इवैल्यूएट करना है और कर्म करना है, डिसीशन लेना है, वो मेरा अभी का प्रेजेंट और मेरा भविष्य बनाएगा। लेकिन ये प्रेजेंट और भविष्य, फ्यूचर, इस पास्ट से कलर्ड होने लग जाता है क्योंकि वो इस फिल्टर के थ्रू हर एक को देख रहा है। तो आप मेरा परसेप्शन इज लाइक ग्लासेस जो मैंने पहने हैं। तो अगर मैंने ग्रीन कलर के ग्लासेस पहने हैं तो इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने कोई भी कलर की ड्रेस पहनी हो, मुझे उसमें ग्रीनर शेड ही दिखाई देगा। ईच वन ऑफ अस इज गोइंग थ्रू चेंज, हम हर रोज परिवर्तन हो रहे हैं। लेट्स से कि आपके अंदर अगर गुस्सा करने की आदत है लेकिन नाउ यू आर ऑन अ जर्नी, आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आप रोज मेडिटेशन कर रहे हैं, आपके संस्कारों में इतना परिवर्तन आ रहा है, लेकिन मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि आप गुस्से वाले हैं. अब इफ आई एम नॉट एबल टू लुक एट यू हाउ यू आर नाउ, देन इवन दो यू हैव चेंज्ड, फॉर मी यू हैव नॉट चेंज्ड. And that's very damaging for me.
0: Because you haven't even understood the right
1: Absolutely.
0: Me.
1: I am not looking at you as you are. I'm looking at you through that filter of my perception. And my perception says, कि आप गुस्से वाले. तो उससे क्या होगा? कि भले आपके अंदर चेंज आया है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण वही है, नहीं, ये तो गुस्से वाले हैं. तो आज आप कुछ भी करें, मैं फिर भी आपको उसी दृष्टिकोण से देखूं. मैं आगे के भविष्य के बारे में जो सोचूं उसी दृष्टिकोण से अगर सोचूं तो कितना डैमेजिंग है, क्योंकि आप तो वो है ही नहीं.
0: और बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये कि सिर्फ व्यक्तियों के साथ ही नहीं, इवन सिचुएशंस के साथ हम ऐसा करते हैं कि ये सिचुएशन आएगी तो उसको ऐसे ही हैंडल करना. इसमें कहीं ना कहीं हमारे इनोवेशन भी खत्म हो रही है,
1: क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है. वो फिल्टर लगाने के कारण हम हर सिचुएशन को अपने बिलीफ सिस्टम के अनुसार ले लेते थे. तो बाहर परिस्थिति चाहे कैसी भी हो या व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, हम उसको मोल्ड करके अपने बिलीफ सिस्टम के अनुसार अंदर फिट कर लेते थे कि नहीं, इन्होंने तो ऐसा ही किया होगा या ये तो है ही ऐसे, भले वो चेंज हो गया है. तो अब जब मैं वो स्थिति मेंटेन कर सकती हूँ कि आई एम अ पीसफुल सोल, देन दैट परसेप्शन, दैट फिल्टर विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ पास्ट बिलीव्स, दैट ड्रॉप्स. एंड मैं हर एक को, जो आपने कहा क्लैरिटी, वो क्लैरिटी क्यों आएगी? क्योंकि वो डिस्टोर्शन खत्म हो गई है. जब इमोशनल डिस्टर्बेंस है अंदर तो वो डिस्टोर्शन है, वो सब वो परसेप्शन से क्रिएट हो रहा, लेकिन अब एकदम क्लैरिटी. तो आप जो हैं, जैसे हैं, मुझे वैसे ही दिखाई देंगे. मैं अपने पास्ट को अपने फ्यूचर पर इन्फ्लुएंस नहीं होने दूंगी.
0: बट हम हमेशा ये कहते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है. सो मेनी टाइम्स एक्चुअली वी इफ आई,
1: इसीलिए हमारे साथ कुछ नया नहीं होता, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये थॉट अंदर डाल दिया कि मेरे साथ तो ऐसा ही होने वाला है, या मेरे साथ तो होता ही नहीं है कुछ ठीक से, या मुझे तो जॉब मिलती ही नहीं है, या मेरे से तो वो ठीक से बात करते ही नहीं है. तो व्हाट हैव आई डन? आई हैव फिक्स्ड कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो फ्यूचर भी ऐसा ही होगा. तो उसके लिए यहाँ के डिस्टर्बेंस को फिनिश करें एक दिन के लिए सिर्फ. जस्ट ट्राई दिस आउट फॉर वन डे. हर एक को सिर्फ एक दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करना है कि अपने माइंड और इंटेलेक्ट को इस पीसफुल स्थिति में रखना है. और उसके लिए क्या करना है? अगेन द सेम थिंग, नो जजमेंट, नो क्रिटिसिज्म. हर एक जो है, जैसा है, जो कर रहा है, उसको उस एक दिन के लिए जैसा है वैसे स्वीकार कर ले.
0: इट्स एक्चुअली वेरी, इट्स वंडरफुल. व्हाई? बिकॉज़ एक नया एंथुसियाज्म, जो न्यूनेस की हम तलाश करते हैं, तो उन्हीं लोगों के साथ हर सिचुएशन, हर मीटिंग एक नया एक्सपीरियंस होता है.
1: एब्सोल्युटली.
0: सो दैट्स गुड, वी कीप ऑन लुकिंग फॉर दैट न्यूनेस.
1: एंड इट इज न्यू बिकॉज़ हर बार जब हम मिल रहे हैं, वी आर न्यू. हम कल में और आज में सेम नहीं हो सकते हैं, कोई भी. इट्स नॉट नेसेसरी कि जो सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं या जो हर एक व्यक्ति के अंदर हर रोज हर क्षण परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि हर सोच एक परिवर्तन है. मेरी कोई भी दो थॉट्स सेम नहीं है. तो विद इन दिस मोमेंट एंड द नेक्स्ट मोमेंट आई हैव चेंज्ड.
0: ओके सिस्टर शिवानी, अगर हम एक इसी पे एक बात ही करते हैं कि जब ये हमने एग्जांपल कई बार लिया है, बट नाउ इट कैन बी एक्चुअली लुक्ड इनटू अ डिफरेंट, इवन अगर अपने प्रोग्राम में भी देखें तो हर बार हम उसी मुद्दे को अगर उठाते हैं तो एक डिफरेंट परसेप्शन हमारे सामने आ जाती है. तो जैसे एक जब प्रमोशन के लिए जाता है और एक किसी व्यक्ति का प्रमोशन नहीं हो पाता है, कोई भी वजह रही हो, या जो उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है, तो पहला थॉट ये आता है कि मेरे बॉस ने, क्योंकि वो बॉस हमेशा ही करता है, तो ऐसा ही किया है.
1: तो उनकी वजह से मुझे नहीं मिला होगा. कारण और कई हो सकते हैं, और हो सकता थोड़े बाद में आपको कारण पता चले कि कारण कुछ और था, कि उस टाइम किसी को नहीं दिया या कुछ भी. लेकिन मैं ना बिलीव सिस्टम में मैं उसको फिट कर लूंगी कि नहीं, मुझे क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने बीच में कोई ऑब्स्टिकल डाला होगा. तो हम हर सिचुएशन को अपने बिलीफ के साथ मोल्ड कर लेते हैं.
0: इनफैक्ट मदर इन लॉ सिस्टर, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का बहुत बड़ा ये इशू हो सकता है, बिकॉज देयर इज अ माइंडसेट, यू नो. जब भी कोई सिचुएशन आती है, मेरे मदर इन लॉ तो ये करना ही था, उन्होंने तो ऐसा ही बिहेव करना था.
1: Absolutely.
0: और जबकि अल्टीमेटली बाद में जाके अगर हमें रियलाइज भी हो कि ऐसा नहीं था, you know, so somewhere it is very important to get into.
1: वो तब हो सकेगा when I'm able to maintain that stability, क्योंकि वो inner peace और stability होगी, तो जो चीज जैसी चल रही है, I'll be able to सी इट जस्ट लाइक दैट. और इसको हम सारा दिन में एक दिन के लिए प्रैक्टिस जरूर करके देखें, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा. कि किसी व्यक्ति पे और किसी सिचुएशन पर जजमेंट नहीं पास करना
0: और अपने पास्ट एक्सपीरियंस को हावी ना होने,
1: वो होगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा. क्योंकि जब इसको अनडिस्टर्ब्ड रखेंगे तो वो जैसा है वैसा ही दिखाई देगा. यहाँ जब डिस्टर्बेंस आने शुरू करती है तो जजमेंट और क्रिटिसिज्म भी पास्ट से इन्फ्लुएंस होकर आते हैं. तो जजमेंट नहीं तो वो पास्ट भी हावी नहीं होगा. एंड अभी जैसा है आई विल बी एबल टू सी इट इन द राइट पर्सपेक्टिव. तो उससे क्या होगा, मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर ये चेंज होता जाएगा, ये चेंज हो जाएगा और ये एक्यूरेट हो जाएगा. फिर हमारी परखने की शक्ति, हमारी निर्णय करने की शक्ति ये बहुत बढ़ती जाएगी. तो पावर ऑफ पीस जो है दैट गिव्स मी द पावर टू लुक एट थिंग्स एज दे आर एंड नॉट कलर्ड बाय माय पास्ट. दूसरी चीज़ जो इस स्थिति में रहने से मुझे मिलती है वो है पावर टू इन्फ्लुएंस. हर एक व्यक्ति आज सारा दिन

0: बहुत इजीली कर पाएंगे क्योंकि हम उनको वो पावर दे रहे हैं. सो आई डू नॉट हैव टू ऑर्डर, आई डू नॉट हैव टू डिक्टेट, बट आई जस्ट हैव टू बी दैट. वो स्थिति अपनी मेंटेन करें, वो ऑटोमेटिकली वो करते जाएंगे जो मुझे चाहिए या जो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए बहुत अच्छा है. यू नो, कई बार लोग कहते हैं कि लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा है. यस, बट दे नीड द पावर टू डू इट, एंड वो पावर आई विल बी एबल टू गिव फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम हियर.
1: Okay, so once we get got empowered by the peace,
0: yes,
1: we are able to empower the other person.
0: Absolutely, क्योंकि दूसरे को परिवर्तन करने के लिए शक्ति चाहिए. उसको समझ मिल गई है उसके पास शक्ति नहीं है. लीडर्स जो हम देखते हैं, जो आज दिन तक हमने इतने सारे लीडर्स देखे, या एक कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हम लीडर देखते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस क्यों कर पाते हैं, क्यों लोगों से वो मोटिवेट कर पाते हैं? क्योंकि वो अपनी इनर स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं. जहाँ उन्होंने वो खो दिया तो वो किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे. और जब हमारी वो स्टेबिलिटी होती है तो हमारी कम्युनिकेशन वो भी बहुत अच्छी हो जाती है,
1: स्ट्रॉन्ग हो जाती है, किसी क्लैरिटी के
0: साथ, कंफ्यूजन नहीं.
1: यहाँ पे वो जो सवाल उठता था कि बिना एंगर के काम नहीं होता, बिना भय दिए काम नहीं हो सकता, सबॉर्डिनेट से जो काम करवाने वाली बात है,
0: क्योंकि तब हमें काम करवाना था, अब हमें काम करवाना नहीं है. हम जो है वो बन रहना है अंदर, काम ऑटोमेटिकली होता जाएगा, अपने आप होता जाएगा. एंड जो उसकी क्वालिटी निकलेगी, दैट्स नॉट कि सिर्फ काम अच्छा होगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स. क्योंकि अगर हम वो पीसफुल स्टेट मेंटेन कर सकते हैं तो जिसके भी कांटेक्ट में हम आएंगे उनको भी ऑटोमेटिकली वो पीसफुल वाइब्रेशंस.
1: और यहाँ आई थिंक एक और अंडरलाइन जो बात ये होती है कि वो कम्प्लीटली समझ ले, तो वो जितना समझ पा रहा है उतनी पेशेंस और उतना मुझे लगता है उतनी एक वो रखना बहुत जरूरी है कि ओके दिस मच इज इन्फ्लुएंस्ड, ये एक्सेप्टेंस, ये हम क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी तरह से, क्योंकि ये उसके लिए बहुत अच्छा है इसलिए वो पूरी तरह से समझ ले, लेकिन वो अपनी अपनी समझ से ही समझ पाएंगे. ये भी एक
0: एक्सेप्टेंस अपने आप मिलती जाएगी जब अंदर यहाँ स्टेबिलिटी आएगी. तो हम इसको भी सारा दिन में करके देखें, जैसे इमेजिन करें कि जब कोई अगर परिस्थिति आ जाती है, क्राइसिस जिसको हम कहते हैं, ऑफिस में या घर में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जहां आपको दिखाई दे कि सारे चारों तरफ बहुत हलचल सी मच गई है, और जिस टाइम समझा जाए कि ये तो स्वाभाविक है, बात ही ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी कि सब लोग डिस्टर्ब हो गए, जस्ट रिमेम्बर कि मैं कौन हूँ. एंड उस स्थिति को मेंटेन करते, इमेजिन योर सेल्फ जैसे एक शिप होती है, एक तूफान में जा रही है, लेकिन तूफान आ गया तो वो अपना एंकर डालकर रुक जाएगी. अब तो एंकर क्या होगा, हमारा जो लंगर डालेंगे हम, वो क्या है, वो हमारी अवेयरनेस की स्थिति. उस लंगर को नीचे फेंकते हैं तो वो जाकर हिट करता है उसको, क्योंकि एक फाउंडेशन चाहिए, एक पकड़ चाहिए. वो पकड़ क्या होगी, मेरी अंदर की स्टेज वो ऑलरेडी स्टेबल होगी कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ. मैंने वो अवेयरनेस क्रिएट की कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, और उस कॉन्शियसनेस से वो पीस और पावर की वाइब्रेशंस जैसे कि उस एंकर से होती हुई यहाँ ऊपर आ जाती है, और यहाँ से आकर वो ऑटोमेटिकली चारों तरफ फैल जाएंगे. तो उस समय क्या कि सब लोग थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में है, सब लोगों का बात करने का तरीका चेंज हो गया है, लैंग्वेज चेंज हो गई है, काम करने का तरीका चेंज हो गया है, एंड देयर आई एम एब्सोल्युटली स्टेबल. तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आई विल टू रिमेन स्टेबल, लेकिन एवरीवन एल्स अराउंड मी विल गेट द पावर टू बिकम स्टेबल. दैट इज अ लीडर. किसी भी एक दिन इसको प्रैक्टिस करें कि कोई एक ऐसी जब सिचुएशन आएगी तो प्रभाव में ना आ जाए सिचुएशन के, अपने आप को जस्टिफिकेशन ना दे, नहीं नहीं सब लोग डिस्टर्ब्ड है, मैं इमिजिएटली आई हैव टू बी द लीडर, आई हैव टू बी द वन जिसने सबको एम्पावर करना है. साक्षी, नॉर्मली क्या होता है जब कोई परिस्थिति या डिस्टर्बेंस आती है तो हम बहुत ज़्यादा वाचा में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कर्मण में आ जाते हैं कि नहीं नहीं क्या करना है, भाग दौड़. उस समय लगता है टाइम भी नहीं है एक मिनट के लिए, लेकिन वो एक मिनट निकालने से बहुत सारी टाइम और एनर्जी बच जाती
1: है, कंटेन हो जाती है. इनफैक्ट अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जो अगर मदर और टीनेज जो चिल्ड्रन है उनका जो क्योस होता है, और उसमें जब होता है कि मेरे बात नहीं समझ रहा, मैं उसी के लिए कह रही हूँ, वो जो क्योस और वो जो इन्फ्लुएंस की बात है, यहाँ ये जो स्थिति में आई थिंक वो
0: एब्सोल्युटली पेरेंट चाइल्ड के इन्फ्लुएंस में, टीचर और स्टूडेंट, नॉर्मली टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप में भी ये बहुत आता है, क्योंकि टीचर्स ये समझते कि हमारी जिम्मेवारी है इनको चेंज करना, इनको परिवर्तन करना, और फिर वो अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है क्योंकि वो हो नहीं रहे.

0: The wonder एक बहुत
1: समझ क्यों नहीं रहे हैं, वो समझते क्यों नहीं है, again
0: समझते क्यों नहीं. I will have to maintain that stability, and वो stability अपने आप औरों को inspire करती है उन जैसा बनने के लिए. और उस समय जब वो सिचुएशन ऐसी हो, अगर दूसरे लोग कोई हमें यू नो प्रवोक भी करना चाहें कि यू नो आपको टेंशन नहीं हो रही है या आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, ऐसा बी केयरफुल, बी केयरफुल. डोंट थिंक यू नो, क्योंकि कई बार लोग समझते हैं कि अगर हम उस समय यू नो वो टेंशन के वायुमंडल में नहीं जाएंगे तो लोग समझेंगे कि हमें कोई ध्यान नहीं है, हम कंसर्न्ड नहीं है. अब हमें अंडरस्टैंडिंग है कंसर्न क्या है. ये कंसर्न नहीं है, ये केओस कंसर्न नहीं है. तो अगर कोई हमें उस वायुमंडल में खींचने की भी कोशिश करे, ये है साक्षी. यू नो कई बार लोग डरते कि हम डिटैच हो जाएंगे. हम दुनिया से नहीं डिटैच हो जाते, लेकिन ये सिचुएशन से इस तरह की क्राइसिस में अपने आप को डिटैच्ड रख सकते हैं और वो डिटैचमेंट से उस क्राइसिस को बाहर निकाल सकते. अभी दिन तक हम सोचते थे कि जैसी परिस्थिति वैसी मेरी मन की स्थिति, तो परिस्थिति डिस्टर्ब्ड, मन डिस्टर्ब्ड. परमात्मा ने हमें आकर सिखाया जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति. क्योंकि आपकी स्थिति, आप आत्मा हो, आप शक्तिशाली हो, परिस्थिति है क्या चीज. तो अभी तक हमने अपने आप को बहुत कमजोर समझा, तो परिस्थिति का स्थिति पर प्रभाव. लेकिन एक्चुअली होता है स्थिति का परिस्थिति पर प्रभाव. स्थिति डिस्टर्ब्ड होती है तो परिस्थिति भी सारी डिस्टर्ब दिखाई देती है. स्थिति स्टेबल होगी, वो बड़ा से बड़ा क्राइसिस ऐसे हो जाएगा, एकदम स्टेबल आ जाएगा. तो डोंट लूज योर काम दैट टाइम. तो वो जो सुबह में किया होगा मेडिटेशन और वो स्थिति की प्रैक्टिस और सारा दिन में अटेंशन, उसको ऐसे टाइम पे यूज करना है. डोंट फॉरगेट इट एट दैट टाइम.
1: सिस्टर शिवानी, इसमें बात करते करते मुझे एक बात सामने आई है कि व्हेन आज के अगर दौर में देखते हैं तो वी आर ऑल लुकिंग फॉर मिरेकल्स.
0: दिस इज मिरेकल,
1: दिस इज मिरेकल. यू नो हम देखें तो कि परिस्थिति के ऊपर हम हावी होंगे, यू नो स्थिति हावी हो जाती है, हम किस स्थिति में हैं, क्योंकि परिस्थितियां तो फिर अपने उस हिसाब से बदल जाएंगी. इट्स वंडरफुल एक्चुअली.
0: एंड तब क्या होगा, हमें दिखाई देने लगेगा धीरे धीरे कि हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में है. अभी ऐसे लगता है कि कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज आई गेट स्वेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आई गेट कैरिड अवे अकॉर्डिंग टू द पीपल. बट व्हेन आई एम एबल टू मेंटेन दैट एंकर इनसाइड, then I have that master of the situation. And ये है स्वराज्य. फिर और ये इतना सहज है, और इसकी टेक्निक जब सीख ले तो इसको कभी भी कहीं भी कितनी भी बार दिन में यूज कर सकते हैं. तो लाइफ कैसी होती जाएगी, वेरी स्ट्रीमलाइंड होती जाएगी, बहुत स्मूथ होती जाएगी. और तीसरा जो हमें ये स्थिति हेल्प करती है वो है प्रोटेक्शन. आई एम अ पीसफुल सोल. इसको जब हम इस स्थिति में अनुभव कर लेते और इसको स्टेबलाइज कर लेते हैं तो ये हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा काम करती है. आज दिन तक क्या होता था कि जब भी हमें कोई क्रिटिसाइज करता, हम तो लोगों को क्रिटिसाइज करते थे, जजमेंट पास करते, लेकिन लोग भी तो हमें क्रिटिसाइज करते. अब हम तो शायद बंद कर दें, लेकिन सब लोग तो नहीं बंद करने वाले हैं,
1: और वो हर्ट हम लेते जाते हैं.
0: तो किसी ने हमें क्रिटिसाइज कर दिया, किसी ने हमें इंसल्ट कर दिया, किसी ने सबके सामने कुछ ऐसा कह दिया, तो नेचुरल संस्कार बन गया था हर्ट का. तो हर्ट मतलब कि मेरे आसपास कोई प्रोटेक्शन नहीं है. आपने कोई ऐसी एनर्जी फेंकी, नेगेटिव एनर्जी आपने फेंकी, और वो एनर्जी ने मेरे ऊपर अपना प्रभाव डाल दिया. तो वेन एवर आई फील हर्ट, अगर मुझे बुरा लगता है किसी की इंसल्ट से या किसी की क्रिटिसिज्म से, तो उस समय अंदर क्या चल रहा है, सबसे पहले ये याद रखना होगा, मैंने क्रिएट किया ये. ये हर्ट मैंने क्रिएट किया है.
1: हम हर्ट के लिए तो कभी भी खुद को नहीं कहते, हम हर्ट तो इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द अदर एंड एक्चुअली.
0: बट एक्चुअली नॉट. ना नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि आपको जो बोलना है बोलिए, आपको जो करना है करिए, मुझे कैसा फील करना है वो मेरे हाथ में है. लेकिन जब बुरा लगता है, कोई बात नहीं, उस समय अपने आप को याद दिलाएं, ये हर्ट मैंने क्रिएट किया. ये हर्ट क्यों क्रिएट हो गया, क्योंकि मेरी प्रोटेक्शन वाले लेयर नहीं थी. ये पेन मैंने क्रिएट किया, मैं पेन नहीं हूँ, मैं दर्द नहीं हूँ, ये दर्द मैंने क्रिएट किया और इसीलिए मैं ही इसको
1: सॉल्व
0: फिनिश कर सकती हूँ. सारा दिन में हम एक रेडिएटर की तरह हैं कि हम जो कुछ यहाँ सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, इट इज transmitting to everyone around me. तो अंदर अगर यहाँ बहुत negativity है, बहुत दर्द है, बहुत दुख है, तो हम जहाँ जाएंगे, जिनसे मिलेंगे, उनको वो वाइब्रेशंस हमसे आती जाएगी। और अगर सबको ये वाइब्रेशन मुझसे आए कि मैं बहुत कमजोर हूँ, तो क्या होगा? लोगों को पता चल जाएगा कि ये तो बहुत कमजोर है, इनको टेक ओवर करना तो बहुत इजी है। तब उनको पता चल जाता है कि कुछ भी थोड़ा सा बोला तो ये तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। एंड दैट्स व्हेन आई बिकम वेरी वल्नरेबल। अगर हम मॉर्निंग में जब मेडिटेशन कर रहे हैं एंड आई क्रिएट दिस थॉट, ये थॉट मेरा अराउंड एक ऑरा क्रिएट कर देंगे, क्योंकि एवरीवन इज वॉकिंग विद एन ऑरा। एंड अब अगर मेरा ऑरा स्ट्रेंथ का है, पॉजिटिविटी, पहले था वरी का, नेगेटिविटी का, तो वो वीक ऑरा था, कोई भी आता तो मुझ पर अटैक कर लेता। लेकिन अब जो ऑरा है वो प्योरिटी और पॉजिटिविटी का है, तो अब सामने से कोई मुझ पर अटैक नहीं कर सकता है, दैट्स फॉर श्योर। आप अपना नेगेटिव एनर्जी फेंकेंगे, लेकिन मेरे अराउंड वो शील्ड बने हुए हैं। आज एक दिन में प्रैक्टिस भी इसको करके देखें कि कभी भी अगर, क्योंकि सारा दिन में कोई ना कोई एक मिल जाएगा जो इस तरह से कोई तीर फेंकेगा क्रिटिसिज्म का, तो जब कोई ऐसा तीर फेंक दे तो तुरंत से अपने अराउंड याद रखें कि मेरे पास एक प्रोटेक्टेड शील्ड है। तो वो जो तीर आप फेंकेंगे सामने से, अपना कुछ भी जो आपने बोला होगा, वो तीर यहाँ आएगा, इस शील्ड को हिट करेगा और फिनिश हो जाएगा। और उल्टा मैं आपकी तरफ अब एक बहुत अच्छा सा तीर फेंक सकती हूँ, विच इज़ ऑफ प्योरिटी एंड पॉजिटिविटी। तो आपके अंदर की भी जो नेगेटिविटी है वो भी धीरे धीरे धुलती जाएगी।
1: क्योंकि एंड आई डोंट इवन हैव टू स्पीक इट, यू नो, लाइक इट जस्ट गोस,
0: इट डजंट हैव टू बी सेड, इट डजंट हैव टू बी सेड एट ऑल, सो वी बिकम वेरी प्रोटेक्टेड। तो अभी जो हमें डर और इनसिक्योरिटी है सारा दिन में, क्योंकि अभी इनसिक्योरिटी इसलिए क्योंकि कोई भी हमें अटैक कर ले, बट आई हैव टू फर्स्ट प्रोटेक्ट माई सेल्फ। हम ज़्यादा क्या सोचते हैं, उसको सुधारना या उसको बताना कि उसने मुझे हर्ट किया, इस टाइम वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले अपनी सुरक्षा, जब कोई अटैक करता है तो पहले अपनी सुरक्षा देखी जाती है, ना कि अटैकर को बाकी समझाया जाता है कि आपको अटैक नहीं करना चाहिए था। पहले अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर लें। सो दैट मेडिटेशन एंड दैट पावरफुल पीसफुल स्थित, दैट गिव्स मी दैट प्रोटेक्शन लेयर, एंड दिस कैन स्टे विद मी थ्रू आउट द डे। और ये स्थिति एक और मुझे बहुत हेल्प करती, जब और लोग दुखी होते हैं, यू नो, कोई और परेशान है, अपसेट है, दुखी है, तो अभी तक क्या होता, मैं भी उनके साथ दुखी हो जाती। अब क्या होगा कि इफ आई एम इन दैट स्टेज कि आई एम अ पीसफुल बींग, नाउ आई कैन गिव दैट टू यू। तो आप दर्द में हैं, अब मैं आपके पास आकर वो दर्द को नहीं डिस्कस करूं या वो दर्द में ही ना बह जाऊं, लेकिन मैं वो थॉट्स क्रिएट करूं, तो आपको भी वो वाइब्रेशंस मुझसे मिलेंगे जिससे आप उस दर्द से बाहर निकल सकते हैं, एंड दैट विल बी वेरी एम्पावरिंग। अभी तक हम सिंपथाइज करते थे तो हमें लगता था कि वो सही तरीका है चलने का, कि नहीं वो दर्द में है तो मुझे भी दर्द में होना चाहिए, लेकिन वो ऑलरेडी दर्द में है, उसे दर्द की नहीं जरूरत है, उसे उसका एंटीडोट चाहिए।
1: और इनफैक्ट उस टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि वो हमारा दर्द उसके जो एक्चुअल दर्द में है उससे ज्यादा बड़ा हो जाता है,
0: क्योंकि बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट है ना, तो वो और ज्यादा हो जाता है। तो हमें तो उस समय उसकी मदद करनी है, हमें उसे वो गिफ्ट देना है। हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं किसी को, कोई दर्द में है, हम उस समय क्या दे सकते हैं?
1: पीस दे सकते हैं।
0: लोग कहते हैं मेरा कंधा है, आप रो लीजिए, आई हैव अ शोल्डर फॉर यू टू क्राई, बट नो, व्हाई आर वी एनकरेजिंग देम टू क्राई? दे वांट पावर, दे वांट पीस एट दैट टाइम। डू आई हैव दैट टू गिव इट टू देम? सो इफ आई हैव दैट, आई विल बी एबल टू गिव दैट टू एवरीबॉडी,
1: आई विल क्राई विद यू, यू नो, ये कहा जाता है समवेयर, आई थिंक
0: व्हाट्स द बेनिफिट? अभी एक जना रो रहा था, अभी दो जने रो रहे हैं, वेरी सून बहुत सारे लोग साथ में रो रहे हैं। हु विल pull them out of that at that time? I can be the one. Kyun? Because I have that. Sabko jo chahiye wo mere paas agar hai, kyunki maine Paramatma se shakti wo li hai, I can give that to everybody else.
1: Very beautiful. Bahut sundar. Matlab pura ehsaas hi kahin na kahin hamare perception ko change karta hai, aur zindagi ka jo pura din bhar mein jo hai, jo hamare wahi har baar wrong beliefs ke sath jo jee rahe hote hain, wo badal jate hain. Aaj ki is puri baat cheet ke liye Sister Shivani, bahut bahut shukriya. Om Shanti. और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं जो आपके पास हों, आपको खुला निमंत्रण देते हैं, आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं।
2: हमारे फोन नंबर है 09999344555, 09999344666, 09873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com।
1: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफर यूं ही चलता रहेगा। आने वाली कड़ियों में फॉरगिवनेस पे बात करेंगे कि सचमुच क्षमा को सही परिप्रेक्ष्य में कैसे देखें। अब दीजिए इजाजत, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया। आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, आज हम संत कबीर के बारे में जानेंगे। संत कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोधी थे। उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्मों के बंधनों को गिराने का काम किया। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महानतम कवि थे। इनकी रचनाओं ने उत्तर और मध्य भारत के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई हैं। वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान उन्होंने अनेक कविताएं लिखी, अनेक दोहे लिखे। कबीर साहब का जन्म काशी में हुआ था, जहां नीरू और नीमा नामक दंपति ने उन्हें गोद लिया था। संत कबीर को अपने सच्चे ज्ञान का प्रमाण देने के लिए जीवन में अनेक कसौटियों से गुजरना पड़ा। उनको मारने का असफल प्रयास भी कुछ लोगों द्वारा किया गया, लेकिन वे उन्हें मार नहीं पाए। कबीर साहब रामानंद जी से दीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन रामानंद जी सुबह नहाने गए थे, तभी कबीर जी 2.5 साल के बच्चे का रूप धारण के समान घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी का पैर कबीर को लग गया। रामानंद जी ने झुककर उनको उठाया और राम का नाम जपने को कहा। तभी से रामानंद जी कबीर के गुरु हुए। कबीर जी के शिष्य धर्मदास द्वारा लिखित कबीर सागर में दिव्य धर्म यज्ञ का उल्लेख आता है, जिसके अनुसार उस समय के कुछ लोग पाखंड और दिखावा करने में अधिक विश्वास करते थे, कबीर जी से नफरत करने लगे। कबीर जी लोगों को परमात्मा के बारे में समझाया करते थे। वे समझाते थे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी, ताकि वह आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर साहेब जी को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका बड़ा आदर है। कबीर साहेब जी ने सिर्फ मानव धर्म में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में एक दोहा लिखा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहार, वाते तो चाकी भली पिसी खाए संसार, कबीर माया पापनी फंद ले बैठी हटी, सब जग तो पंधे पड़ा गया कबीरा काटी। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यह पापिन माया फंदा लेकर बाजार में आ बैठी है, इसने बहुत लोगों पर फंदा डाल दिया है, पर कबीर ने उसे काट कर साफ बाहर निकल आए हैं। हरि भक्त पर फंदा डालने वाला खुद ही फंस जाता है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते, मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, संत कबीर जी के अनेक दोहे प्रसिद्ध हैं। संत कबीर ने अपने दोहों में कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अर्थात परमात्मा के बारे में और उनके ज्ञान के बारे में यहाँ पे संत कबीर जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में वर्णन किया है। संत कबीर जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि ज्ञान की बात करनी चाहिए, क्योंकि असली मोल तो तलवार का होता है, म्यान का नहीं। संत कबीर जी कहते हैं, माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात संत कबीर जी कहते हैं, अपनी उपरोक्त वाणी के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो लंबे समय तक हाथ में माला तो घुमाते हैं पर उनके मन का भाव नहीं बदलता, उनके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन को सांसारिक आडंबरों से हटाकर भक्ति में लगाओ। संत कबीर जी कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। अर्थात संत कबीर साहेब लोगों को नेकी करने की सलाह देते हुए इस क्षणभंगुर मानव शरीर की सच्चाई लोगों को बता रहे हैं कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही यह देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। संत कबीर जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात संत कबीर जी जब इस संसार में बुराई खोजने चले तो उन्हें कोई बुरा नहीं मिला। संत कबीर जी कहते हैं, जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। संत कबीर जी ने हमें यहाँ पे स्पष्ट किया है कि हम दूसरों की बुराई खोजना छोड़कर अगर अपने मन को देखना शुरू करेंगे तो हमें अपने मन के अंदर अनेक कमी कमजोरियाँ नज़र आएंगी, और जब हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं तभी हम वास्तव में अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। परिवर्तन तभी प्रारंभ होता है। संत कबीर जी कहते हैं, पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में लोग मर गए पर कोई ज्ञानी नहीं हुआ। जो व्यक्ति प्रेम का ढाई अक्षर सीख गया वही सच्चा ज्ञानी है। संत कबीर जी कहते हैं कि ज्ञानी वही है जिसके अंतर मन में किसी के लिए नफरत नहीं हो, सभी मनुष्य आत्माओं के लिए, सभी प्राणियों के लिए, जिसके अंतर मन में सिर्फ प्रेम बसा हो वही सच्चा ज्ञानी है। श्रुते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, संत कबीर जी अपने दोहों में कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। अर्थात दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं लेकिन सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही नहीं सकता। संत कबीर जी कहते हैं, नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नरके गए, पढ़ी पढ़ी चारों वेद। अर्थात संत कबीर दास जी कहते हैं कि जिसने परमात्मा के सच्चे नाम का स्मरण कर लिया उसने मानो सभी वेदों का सार और रहस्य समझ लिया। केवल वेदों को पढ़ लेने से लाभ नहीं होता। यदि मनुष्य ईश्वर के नाम का जाप और भक्ति नहीं करता तो चारों वेद पढ़ने के बाद भी उसे आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सच्चे नाम का स्मरण ही मुक्ति और परम ज्ञान का मार्ग है। संत कबीर जी कहते हैं कि परमात्मा की याद ही मुक्ति का मार्ग है। कबीर जी कहते हैं, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अर्थात संत कबीर दास जी कहते हैं कि सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिस व्यक्ति के हृदय में सच्चाई होती है उसके हृदय में स्वयं परमात्मा का वास होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए और झूठ से दूर रहना चाहिए। सच बोलना और सच्चा जीवन जीना सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति सच्चा होता है उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है। संत कबीर जी कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। अर्थात संत कबीर जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें केवल उतना ही धन और साधन दे जिससे उनके परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह हो सके। वे न तो अधिक धन की इच्छा रखते हैं और न ही अभाव में रहना चाहते हैं। उनकी कामना है कि वे स्वयं भी भूखे न रहे और उनके द्वार पर आने वाला कोई साधु संत या अतिथि भी भूखा न लौटे। इसी साखी में संतोष, दया और परोपकार की भावना का संदेश दिया गया है। संत कबीर जी कहते हैं, माटी कहे कुम्भार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। अर्थात कबीर साहब कहते हैं कि मिट्टी कुम्भार से कहती है, आज तुम मुझे पैरों से रोंद कर घड़ा और बर्तन बना रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारा शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा और तब मैं तुम्हें रोंदूंगी। इस साखी के माध्यम से कबीर साहेब मनुष्य को अहंकार न करने और मृत्यु को सदैव याद रखने की शिक्षा देते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली या बड़ा क्यों न हो, अंत में उसे मिट्टी में ही मिल जाना है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां बांट।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रुते हो संत कबीर जी अपने दोहे में कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। अर्थात कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि संसार में हर कार्य अपने समय पर ही पूरा होता है। जैसे माली किसी पेड़ को चाहे 100 घड़े पानी से सींच दे, फिर भी फल तभी लगते हैं जब उनकी उचित ऋतु आती है। उसी प्रकार जीवन में सफलता, ज्ञान और अच्छे परिणाम समय आने पर ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें अधीर होने के बजाय धैर्य और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। संत कबीर जी कहते हैं, क्षीर रूप सतनाम है नीर रूप व्यवहार, हंस रूपी कोई साधु जन है जो शब्द का करत छननहार। अर्थात सतनाम परमात्मा का नाम दूध के समान शुद्ध और अमूल्य है, जबकि संसार के व्यवहार पानी के समान है। जिस प्रकार हंस दूध और पानी के मिश्रण में से केवल दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार सच्चा साधु केवल सत्य ज्ञान को ग्रहण करता है और असत्य बातों को छोड़ देता है। संत कबीर जी कहते हैं, सात समंदर की मसी करूं लेखनी सब बन राई, धरती सब कागत करूं तापर गुरुगुण लिखा न जाए। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि यदि सातों समुद्रों की स्याही बना दी जाए, जंगल के सभी पेड़ों की कलम बना ली जाए और पूरी धरती को कागज बना दिया जाए, तब भी गुरु के गुणों और महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरु की महिमा इतनी महान और अनंत है कि उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। इस संसार में सच्चा सद्गुरु केवल एक परमात्मा है, जिसकी महिमा हम शब्दों में वर्णन कर नहीं सकते, क्योंकि उसकी महिमा अनंत है। कबीर जी कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले वृथा, श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास को आवन होए न होए। अर्थात मनुष्य को अपनी हर सांस के साथ परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए और जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। किसी को नहीं पता कि जो सांस अभी बाहर गई है वह वापस आएगी या नहीं, इसलिए जीवन की अनमोल सांसों को संसार के मोह माया में व्यर्थ न करके ईश्वर भक्ति और अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। संत कबीर जी कहते हैं, दस द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहने को अचरज नहीं जात अचंभा कौन। अर्थात यह मानव शरीर 10 द्वारों वाला एक पिंजरा है जिसमें प्राण रूपी पक्षी निवास करता है, यानी कि आत्मा निवास करती है। इस शरीर में आत्मा का रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जब यह आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है तब यह सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि वह कहाँ चली गई और उसका क्या हुआ। इस साखी के माध्यम से कबीर साहब मानव जीवन की नश्वरता और आत्मा के रहस्य को समझाने का प्रयास करते हैं। मनुष्य को अपने शरीर और सांसारिक मोह में

वतन करा के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। 19वीं शताब्दी की शुरुआत की बात है। अंग्रेजी हुकूमत और भारतीय सूदखोरों द्वारा किया जा रहा जनता का शोषण अपनी चरम पर था। जाहिर है नियति को विद्रोह का फैसला लेना पड़ा। आदिवासी समुदाय ने अपने तीर कमान उठा लिए। शुरुआत में सबने अपनी अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन जरूरत थी कि स्व की लड़ाई को स्वाभिमान की लड़ाई में बदल दिया जाए, स्वाभिमान देश का। तब सामने आया वो नायक जिसने एक छोटी सी चिंगारी को दावानल में बदल दिया। उसने एक संगठित विद्रोह द्वारा 20 साल तक अंग्रेजों को नाको चने चबवाए। तब हताश होकर अंग्रेजों को पहली बार एक क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए पुलिस ब्रिगेड बनानी पड़ी, मगर विडंबना देखिए वो ब्रिगेड भी उसे पकड़ ना सकी। और तब वही हुआ जो अक्सर आजादी संग्राम के इतिहास में हुआ करता था, गद्दारी। उस महानायक के अपने ही साथी ने उसे गिरफ्तार करवा दिया। 4 दिसंबर 1889 को फांसी के फंदे को गले लगाकर वो देश की खातिर शहीद हो गया। उस क्रांतिकारी का नाम था टंट्या भील।

कुछ व्यक्तित्व होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। स्कॉलर, आलोचक, दार्शनिक, क्रांतिकारी, कवि, योगी या फिर ऋषि। जब इतने अलौकिक गुण एक व्यक्ति में समाहित हो जाएं, तो वो महर्षि अरविंद घोष बन जाता है। महर्षि भारतीय समाज को संस्कारों और आध्यात्म का आधार देकर मजबूत करना चाहते थे, जबकि अंग्रेज अंग्रेजियत से युक्त शिक्षा प्रणाली द्वारा भारतीयों को उनकी जड़ों से काटना चाहते थे। अरविंद ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो व्यक्तित्व को मजबूती देकर लोगों को उनके वास्तविक चित्त से जोड़ सके। अंग्रेजों को ये बात खतरनाक लगी और उन्होंने अरविंद घोष को जेल में डाल दिया। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जब जेल में उनसे मिलने गए तो उनके सामने शीश नमन करते हुए बोले, देश के दोस्त, भारत की आत्मा, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ।

ऋग्वेद में कहा गया है, अज्येष्ठा सो अकनिष्ठास्थे संभ्रांत रोवा वृधः सोमगाया, अर्थात मनुष्यों में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, सब बराबर के भाई हैं। सबको मिलकर लौकिक और पारलौकिक उत्थान के प्रयास करना चाहिए। वेदों को आधार बनाकर छुआछूत का विरोध करने वाले और भारत के संविधान के निर्माता थे बाबा साहब अम्बेडकर। संपूर्ण मानव जाति को एक कुटुंब मानने वाले डॉक्टर अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था ताकि भारतीय समाज को पुनर्गठित करके उसमें सामाजिक एक रास्ता लाई जा सके। शायद ये देश की आजादी के लिए बेहद जरूरी भी था।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। संगीतकार थे उमेश वीनस, तापसी नागराज और मॉरिस लाजरस। आलेख और उद्घोषणा सुधानुपम, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: सुनहरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: थैंक यू सो मच। ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू
1: सिस्टर। करेज के ऊपर कुछ मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट मिला था, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूंगा। इट सेज करेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल द वर्च्यूज, बिकॉज विदाउट करेज यू कांट प्रैक्टिस एनी अदर वर्च्यू कंसिस्टेंटली। यू कैन प्रैक्टिस एनी वर्च्यू erratically, but nothing consistently without courage.
2: हमने पिछली बार देखा power to decide against all public opinion also, चाहे लोग कुछ भी और कह रहे हो, चाहे मान्यताएं कुछ और हो, belief systems कुछ और हो, और ये इतना beautiful है कि ये सब कुछ करने के लिए, मतलब अपनी सारी values, qualities, originality पे सदा टिकने के लिए। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट थी कि इराटिकली तो आप कोई भी वर्च्यू को प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब कभी किया कभी नहीं किया, थोड़े दिन किया फिर छूट गया, छोटी मोटी बातों में किया, बड़ी बातों में गिव इन कर दिया। तो इराटिकली तो आप कोई भी वर्च्यू को प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है तो फिर सदा के लिए सबसे बड़ी वर्च्यू, या इसको हम पावर भी कह सकते हैं, वो है करेज, हिम्मत। क्योंकि बातें आएंगी हर बार, परिस्थितियां आएंगी हर बार, अपनी वैल्यू को पकड़ के रखना, अपनी उस ओरिजिनलिटी पे टिके रहना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए होगी हमारी हिम्मत, हमारी करेज, विच ऑल्सो मीन्स द पावर टू फेस एनी सिचुएशन एंड एनी पर्सन।
1: हो सकता है कोई रॉन्ग डूइंग के लिए मुझे बहुत सारा पैसा मिले, wrong business, मतलब which is not legal or whatever, which is not right. तो वहाँ करेज टू से नो भी आना चाहिए ना।
2: दिस इज ओनली इट कि अपनी वैल्यूज पे टिके ना, लोग क्या कहते हैं उस पे नहीं सकम्प किया, ग्रीड क्या कहती है उस पर नहीं सकम्प किया, फैमिली भी कई बार कह सकती है कि इट्स ओके टू डू दिस, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस, सारे प्रेशर्स के अगेंस्ट, अपने पुराने संस्कार के भी अगेंस्ट,
1: अपने ग्रीड, अपने लालच,
2: अपना ईगो, अपना स्टेटस, अपनी पोजीशन, वो सब कुछ तो बढ़ेगी ना अगर हम धन ले लेंगे इस तरह से, उन सारे चीजों के अगेंस्ट खड़े होकर अपनी ओरिजिनलिटी के थ्रू डिसाइड करके आंसर देना।
1: कितना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, करेज,
2: करेज, कितनी हिम्मत होनी चाहिए। और इसलिए राजयोग में जब हम पावर्स सीखते हैं, समझते हैं और अनुभव करते हैं, ये हमारी नेक्स्ट पावर बन जाती है। दैट इज पावर टू फेस एनी सिचुएशन एंड पावर टू फेस एनी संस्कार एंड पावर टू फेस द संस्कार ऑफ एनी अदर पर्सन। एक हमने देखा सहन करने की शक्ति, एक्सेप्ट करने की शक्ति, पावर टू फेस मतलब सामना करने की शक्ति, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देर इज ऑलवेज दैट परख कि किस बात में सहन करना है, किस बात में सामना करना है, किस बात में एडजस्ट करना है, किस बात को फेस करके मुझे एक्सप्लॉइट नहीं होना है। ये भी थिन लाइन है, ऐसे नहीं हम तो सहन कर रहे थे, कोई हमारे साथ गलत भी कर रहा था, हमने कहा हम तो सहन कर रहे थे, कितने सालों के बाद बोलेंगे I was being abused for so many years. होता है ना ऐसा, एक बार भी कोई ऐसा कुछ करे तो हमारे पास सामना करने की शक्ति होनी चाहिए। कितने लोग 5 साल 10 साल के बाद I was being abused by so and so in my family, I was being exploited by so and so at my workplace. कितनी बहने पता नहीं कितने सालों बाद कहते हाँ मेरे हस्बैंड तो मुझ पर हाथ उठाते ही हैं, मुझे मार तो खानी ही पड़ती है, क्या करे सहन कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते इसको सहन नहीं करना है, सहन क्या करना है और किसका सामना करना है, वो भी परखने की शक्ति चाहिए। सहन क्या करना है, किसी का कोई संस्कार है उसके साथ एडजस्ट करके हमें चलना है, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो हमारा नुकसान कर रही है और उसका हम सामना करने के बजाय मजबूरी से सोशल प्रेशर के कारण हमने कहा हम इसको सहन कर रहे हैं, और जो छोटे छोटे लोगों के संस्कार हैं जिसको हमें सहन करना है उसको हम सामना करते हैं, वी कन्फ्रंट पीपल, जहां हमें एडजस्ट करना चाहिए हम कन्फ्रंट कर देते हैं, जहां हमें कन्फ्रंट करना चाहिए वहां हम कहते हैं हमने एडजस्ट कर लिया। दिस थिन लाइन, ये करेज इसलिए चाहिए, करेज टू फेस सिचुएशंस एंड पीपल आल्सो।
1: वो वाली लाइन याद है आपको, ओ गॉड गिव मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज,
2: वेरी ट्रू,
1: द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन एंड द विजडम टू नो
2: द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये विजडम सामना करने की शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। कई जगहों पर ऐसा होगा कि हम जो प्रिंसिपल्स पे चलना चाहते हैं, जो सही है, वैल्यू सिस्टम जो सही है, दूसरे लोग नहीं चलेंगे हमारे आसपास, उसमें भी उस चीज का भी सामना करना, हो सकता है उसके लिए हमें कुछ तंग भी किया जाए, कुछ के, उसका भी सामना करना। एंड दैट्स व्हाई दैट लाइन इज सो ब्यूटीफुल, कंसिस्टेंटली अगर फॉलो करना है अपनी वर्च्यूज को तो फिर करेज के बिना तो वो होने वाला नहीं है। जहां सामना करना है अगर हम वहां नहीं करते तो अंदर ही अंदर आत्मा की शक्ति बढ़ने की बजाय एक्चुअली घट रही है, राइट? कभी कभी हमें कुछ कहने की जरूरत है, हमें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना पॉइंट पुट अक्रॉस करने की जरूरत है, हमें असर्टिवली होकर अपनी बात कहने की जरूरत है। हम वो नहीं करते, हम कहते हमने सहन किया, हम चुप रहे। जहां सामना करना था वहां अगर चुप रहे तो वहां आत्मा की पावर बढ़ नहीं रही है। हर बार हर डिसीजन में सिर्फ चेक करना है आत्मा की शक्ति बढ़ रही है या आत्मा की शक्ति घट रही है। ये अगर हम चेक करते जाएंगे देन वील कम टू नो इफ यू आर यूजिंग द पावर इन द राइट वे। एक बॉइल्ड फ्रॉग सिंड्रोम कहते हैं, अगर हम एक पतीले में पानी को बॉईल करने के लिए रख दें और उसके अंदर एक फ्रॉग को डाल दें, क्योंकि फ्रॉग के अंदर बहुत एडजस्ट करने की पावर होती है, वो अडेप्ट करता रहता है पानी के टेम्परेचर से अपने आप को। तो बॉइल फ्रॉग सिंड्रोम में क्या समझाते हैं कि आप पानी को गर्म करना शुरू कर दो तो फ्रॉग क्या करता है, वो मेंढक अपने आप को पानी के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट ही करता जाता है। जब वो पानी बॉइलिंग टेम्परेचर पर आता है तब उस फ्रॉग ने एक्चुअली जंप आउट करना होता है, क्योंकि नाउ इट कैन नॉट टेक इट एनी मोर, उसने अब एडजस्ट नहीं कर सकता वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो व्हेन द वॉटर रीचेस द बॉइलिंग पॉइंट वो फ्रॉग जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन जंप करना जो उस फ्रॉग की नेचुरल चीज थी वो उस क्षण जंप कर ही नहीं पाता बाहर, क्योंकि वो एडजस्ट करते करते अपनी पूरी शक्ति को खत्म कर देता है। एंड देन इन द मैनेजमेंट वर्कशॉप्स दे आस्क अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, व्हाट किल्ड द फ्रॉग, इज इट द वॉटर और इज इट द डिसर्निंग पावर ऑफ द फ्रॉग टू सी व्हेन इट हैड टू जंप आउट।
1: सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, सबके पास ये शक्ति नहीं है। कई आप लड़कियों को पूछो कि आपके घर के अंदर आपके रिश्तेदार आपको एक्सप्लॉइट कर रहे थे तो आप बोल नहीं सके, तो मुझसे वो उन्होंने कहा भी कि मैंने अपनी माँ को बोला और मुझे माँ ने मुझे थप्पड़ मारे, तो वो क्या करे, मजबूर है वो।
2: अगर आप वो अलाउ करते रह गए समथिंग विच डजंट अग्री विद योर सेल्फ रिस्पेक्ट,
1: क्या करें, घर छोड़ के भाग जाए,
2: अपनी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे। आज प्रोटेक्शन
1: नहीं
2: के
1: होता
2: लिए
1: कई गांव में, कई गरीब लोगों में नहीं होती, तकलीफ है ये।
2: ये है हमारी शक्ति की कमी, इसका गांव और शहर और किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। गांव में भी बहुत कमाल की कहानियां सुनने को मिलती है, कहां कितनी हिम्मत से क्या कुछ नहीं ओवरकम कर लेते हैं लोग। इसमें गांव और शहर की बात नहीं है, इसमें बाहर सपोर्ट क्या मिलेगी नहीं मिलेगी की बात नहीं है, इसमें है आत्मा में कितनी पावर है सामना करने की बात की।
1: यहाँ के विलेज में औरतों ने मिलकर पूरे बुटलेगर्स को, पूरे अल्कोहल के जितने सेलर्स को विलेज के बाहर निकाल दिया।
2: तो वो तो शहर में भी नहीं हुआ अभी तक।
1: नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं किया, गांव की औरतों ने बोले कोई नहीं बेचेगा।
2: तो इट्स नॉट अबाउट वेयर यू आर, बात कभी भी सिचुएशंस की, लोगों की, सर्कमस्टांसेस की नहीं होती है, बात होती है मेरी अपनी शक्ति की। बार बार इसको हमें अपने आप के साथ रिवाइज करना है। आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं किसी चीज के लिए भी नहीं कह सकती मजबूरी, मजबूरी नहीं। हाँ सही है कुछ और मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही, उस पर मुझे वर्क करना है, लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा और उसके साथ हम एडजस्ट करें, ये हिम्मत नहीं, ये मेरी कमजोरी की निशानी है। तो हर बार चेक करना है, मैं आत्मा कहीं लोगों से डर के, दुनिया क्या कहेगी, सोशल प्रेशर से डर के, या ये डर के कि मेरा आगे भविष्य क्या होगा इफ आई स्टैंड अप अगेंस्ट दिस, इन दैट जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स एम आई कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माई वैल्यूज एंड प्रिंसिपल समवेयर, बिकॉज दैट विल ऑल्सो डिप्लीट सोल पावर। जितना हम रोज परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे, अगेन मेडिटेशन के बिना हर एक के अंदर ये शक्ति अगर नहीं भी है तो डेली मेडिटेशन करने से ये शक्ति इमर्ज होती है। ये हर एक को आज चेक करना पड़ेगा, कहीं ऐसा कोई चीज तो नहीं है, कोई लोग तो नहीं है, कोई हमारा अपना संस्कार तो नहीं है जिसका हमें सामना करने की जरूरत है। वी हैव टू फेस इट एंड चेंज इट। कोई ऐसा तो नहीं है जिसके साथ हमें सहन नहीं करना, लेकिन अगर हम सहन करते जा रहे हैं तो मेरी अपनी शक्ति कम हो रही है, वो करेज को मुझे वापस अपने अंदर वापस इमर्ज करना है। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, सर्वशक्तिवान, जब हम कहते हैं ऑल माइटी अथॉरिटी, रोज उससे अगर कनेक्शन हम जोड़ेंगे, रोज पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ेंगे, तो ये जो फियर्स है ना, छोटे छोटे हमने जो पकड़ के रखे हुए, चाहे वो सोशल स्टिग्मा के हैं, चाहे वो अपनी ही कोई फियर है, ये सारे फियर से हमारे लिए ऊपर उठना बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए आपकी वो लाइन बहुत अच्छी है, कोई भी एफर्ट हम करें, कोई भी पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, कोई हम डिसीशन आज लेते हैं कि ये मैंने चेंज करना है, ये संस्कार को मैंने बदलना है, उसको बदलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। बाहर लोगों के साथ तो हिम्मत चाहिए,

0: सामना, वो भी हिम्मत से, कि हम कभी भी अपने ही संस्कार के परवश होकर हार तो नहीं जाते।
1: पुरानी आदतें
0: तो उस पर भी तो हिम्मत से ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ना।
1: मैंने महात्माओं में देखा है, बड़े बड़े संतों में देखा है, किसी को एंगर कितने बड़े बड़े महात्मा में देखा है, वो संस्कार कितना लास्ट जाता है, उन्होंने खान पीन पान पे, बात करने पे साइलेंस करते हैं, मौन करते हैं, दिन में 5-5 घंटे इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन है
0: हाँ, तो उस संस्कार का सामना करना, लेट अस नॉट अलाउ इट टू लिव इनसाइड अस, हमें उसका सामना करना है, उसको भी अपने घर से निकालना पड़ेगा।
1: वो कम्फर्ट जोन है ना मेरा, आई एक्सेप्ट दिस कम्फर्ट जोन, ठीक है जी, मेरा नेचर एक ही तो है, बाकी सब जगह तो मैं अच्छा हूँ।
0: एक चीज भी हमारी पावर को क्या करेगी, डिप्लीट करेगी ना। इट्स नॉट कि हमने एकदम से उस पर ओवरकम कर लिया, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। सी, जैसे हम औरों को क्या एक्सेप्ट करना है, क्या नहीं एक्सेप्ट करना है,
1: दूसरे के अंदर जो एंगर है वो मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ ऐसे,
0: तो अपने
1: अंदर एक ही है, बाकी इतनी अच्छी क्वालिटीज है,
0: बिल्कुल
1: वो मैं कभी नहीं बोलूंगा।
0: कभी भी अपने को हम ये नहीं कहें कि क्या करें, ये तो नहीं जाता, यू नो, ये आदत तो चेंज नहीं होती, मैं कमजोर हूँ। परमात्मा हमेशा सिखाते हैं, इवन अगर आप 1,00,000 बार हार गए उस आदत से, नेक्स्ट मॉर्निंग You will have to get up with a different thought. अगर अगले दिन ये thought से उठे, नहीं होता, बहुत difficult है, कितनी बार सोचा है, शायद ये आदत मेरी जल्दी change नहीं होगी, चलो औरों में भी तो है, धीरे धीरे कभी ना कभी मेरी भी हो जाएगी, इतना भी कौन सा नुकसान हो रहा है इस आदत से, ये वाली thoughts अगर create की, तो हमने अपनी ही will power को
1: कमजोर
0: कर दिया। इट्स लाइक पुटिंग अ डिलीट बटन इन द विल पावर।
1: यू फेल ओनली व्हेन यू स्टॉप
0: गिविंग
1: ट्राइंग।
0: बिल्कुल,
1: ट्राई करना छोड़ दिया और बोले नहीं, अब मैं मेरे से अब इस उम्र में क्या होना है जी,
0: तो वो कंसिस्टेंसी खत्म हो गई। फिर वो जो हिम्मत मींस हर रोज यही कहना, आज मैं इस संस्कार को फिनिश कर दूंगी।
1: 10 साल पहले सिस्टर मैंने ये लाइन बोली थी, अब यार इस उम्र में क्या करना, नहीं होता है, अभी ये उम्र में चेंज करना अपने आप को मुश्किल है, और आज इतनी चेंजेस आज की मैंने,
0: बिकॉज वी डिड नॉट गिव अप ऑन इट ना, हिम्मत।
1: हाँ, लेकिन बड़ा इजी था वो बोलना।
0: बोलना इजियर है क्योंकि वो बोलते ही फिर उसके बाद कुछ करना थोड़ी पड़ेगा,
1: और लिबर्टी है ना।
0: हाँ, जैसे
1: आपको लिबर्टी भी दे रहे हैं,
0: जैसे
1: दोबारा करो और कर लो,
0: तो वैसे ही रहेंगे। अब वैसे रहते रहते आत्मा की पावर धीरे धीरे तो घटेगी ना। द मोर आई यूज माई अक्वायर्ड संस्कार्स, आत्मा की पावर तो धीरे धीरे धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है। और जैसे ही हमने कहा नहीं, दिस इज गोइंग टू चेंज, ये संस्कार कंफर्टेबल नहीं है, इट हैज टू गो, और फिर हिम्मत से इसने कहा करेज, उस करेज से उसके साथ लगे रहे, जैसे किसी के साथ लड़ते हैं ना, तो लगे रहते हैं, गिव अप नहीं करते, लड़ते जाएंगे जब तक जीतेंगे नहीं, ऐसे ही अपने संस्कार के साथ हिम्मत से लड़ना। वी विल नॉट लूज, वी मे नॉट हैव रीच्ड कंप्लीट विक्ट्री, बट इफ वी गिव अप ऑन दैट संस्कार टुडे, वो हिम्मत अगर आज छोड़ दी कि नहीं होता, चलो ना धीरे धीरे कर लेंगे, ये एक एक वर्ड भी, ये एक एक थॉट भी आत्मा की कितनी शक्ति को वेस्ट कर देता है। हम बहुत इजिली कहते ट्राई कर लेंगे, चलो कल करते हैं, आज अभी। परमात्मा एक बहुत अच्छी लाइन हमें कहते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं,
1: इवन टू स्टार्ट मेडिटेशन।
0: यस,
1: मैं कितनी बार सोचा आज तो लेट नाइट हो गया था, मेहमान आए थे, फलानी जगह डिनर है, आज पार्टी है, कल सुबह तो लेट उठूंगा, कल मेडिटेशन ही परसों से कर, परसों बच्चे आ गए, रात को बच्चे नींद उठा दी, ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे साथ सो गए थे, बच्चे बाहर गए, परसों से करूंगा।
0: ऐसे करते करते इट्स लाइक जैसे हमें कोई और कोई कमिटमेंट देता है और फिर नहीं उसको पूरी करता।
1: वाह,
0: होता है ना ऐसे कुछ?
1: बहुत बुरा लगता है मुझे,
0: बुरा लगता है ना। अभी मैं आपको आज कहूँ मैं कल सुबह आपका ये काम कर दूंगी,
1: मेरा टेलर ये कुर्ता अगर बोले कल सुबह देता हूँ और 2 दिन तक नहीं दे
0: तो क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी उस व्यक्ति की? तो आप कहेंगे इस व्यक्ति की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कनेक्शन, रिलेशनशिप, ये सेम थिंग विद अस।
1: मेरी क्रेडिबिलिटी मेरे साथ ही, मैं तो अपने असलियत जानता हूँ ना।
0: क्रेडिबिलिटी नहीं हुई ना, आज अपने आप को कहा

0: कल सुबह मैं उठूंगा या कल से मैं ये करूंगा, ये कहा, मतलब अपने आप को कमिट किया।
1: तो फिर मैं बोलूंगा मैं तो ऐसे ही बोलते ही रहता हूँ, करते तो पोस्टपोन करते रहते।
0: और जो लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं ना, ऐसे भी लोग मिलते हैं ना जो लोग बोलते रहते हैं, हाँ हाँ कर देंगे, यस यस यस आई विल डू फॉर यू डोंट वरी। तो थोड़े दिन के बाद हम क्या कहते हैं, इस व्यक्ति की तो बिल्कुल क्रेडिबिलिटी नहीं, इसकी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जब हम अपने आप को रोज एक बात कमिट करेंगे कि कल से मैं ये करूंगा, फिर हम खुद अपने आप को कल दो बहाने भी बना देंगे उसके लिए कि नहीं आज तो ऐसा हुआ, फिर दो दिन बाद हम फिर कमिट करेंगे नहीं आज से तो पक्का करूंगा, फिर हम फिर कुछ कारण बना देंगे, कहेंगे आज हम नहीं कर पाए क्योंकि इसलिए ऐसा हुआ था। ये करते करते अपना अपने ऊपर विश्वास कम होता जाएगा एंड धीरे धीरे फिर कहेंगे मेरे से नहीं होता, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, अदर पीपल मस्ट बी डूइंग इट, नॉट फॉर मी। एंड अपने ऊपर पहले विश्वास खत्म हुआ, फिर अपने ही ऊपर गिव अप ही कर दिया और फिर अपने आप को अलाउ कर दिया उस कमजोर आदत या कमजोर संस्कार के साथ चलने में, और धीरे धीरे वो आदत संस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, कुछ समय के बाद तो हम उसको छोड़ने का भी नहीं सोचेंगे, कहेंगे आई लिव विद दिस, इट्स ओके।
1: छोड़ने का मन नहीं है इसलिए हम ये कल परसों करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास करेज नहीं है,
0: हम हिम्मत नहीं, हम उस क्षण गिव अप कर देते हैं ना उस आदत
1: गिव अप कहां किया है, अंदर से मन ही नहीं है।
0: अगर डीप विद इन मन ही नहीं है चेंज करने का, तब तो प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ अभी।
1: तो सिस्टर कई बार देखो अलार्म भी लगाते हैं, अंदर से मन ही चलो मैं ट्राई करूंगा ये करूंगा, फिर बंद कर देते हैं।
0: ट्राई जो शब्द है, ट्राई करूंगा, कोशिश, प्रोबेबली, मे बी, ये सारे जो वर्ड्स हैं, जैसे आपने कहा मैंने टेलर को कहा कल सुबह ये कुर्ता देना, अगर वो आपको कहता ट्राई करूंगा, मे बी, शायद, देखता हो होता है या नहीं, और अगर आपको ये कल चाहिए,
1: मैं उसको नहीं दूंगा, दूसरे के पास जाऊंगा,
0: द सिंपल है, मतलब विश्वास उस आत्मा के ऊपर, ट्रस्ट, फेथ नहीं बैठेगा इस वोकैबुलरी के साथ, लेकिन जो आपको कहेगा टुमारो मॉर्निंग 8 o'clock ये आपके पास पहुंच जाएगा, फर्स्ट थॉट, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट डिटर्मिनेशन, वो हिम्मत है। जिसने वो थॉट भी नहीं क्रिएट की, फर्स्ट थॉट भी, तो आगे जर्नी में वो हिम्मत नहीं आएगी। इसीलिए आज कोई भी अपनी एक आदत उठाए, कोई अपना संस्कार उठाए जिससे बहुत बार हारे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप पर उसके लिए विश्वास ही नहीं है अब कि ये हमसे छूटता भी है कि नहीं छूटता है, ये आदत मेरी छूटती है कि नहीं, ये नेचर मेरी जाएगी कि नहीं, और फिर अपने आप को अंडरस्टैंड कराएं, जहां इतनी सारी चीजें छूटी हैं, जहां इतने सारे संस्कार परिवर्तन हुए हैं, तो मैं आत्मा अगर ये वाले संस्कार पर वर्क करूं तो ये भी चेंज होना ही है, चाहे कितना भी वो कड़क संस्कार है मेरे अंदर, चाहे कितना भी पुराना संस्कार है मेरे अंदर, मैं आत्मा अगर 4 काम कर सकती हूँ ऐसे वाले, तो 5वां भी कर सकती हूँ।
1: चलिए सपोजिंग मेरा 5वां एक और संस्कार है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं करना ही नहीं चाहता चेंज, सो
0: टिल वी हैव द डिजायर टू चेंज, आगे तो कोई जर्नी चल ही नहीं सकती, आगे तो हो ही नहीं सकता, वो तो फिर हम अपने आप को ऊपर ऊपर से ऐसे ही करते हैं, फिर किया कोशिश फिर नहीं हुआ, क्योंकि सूक्ष्म में अंदर अभी तक हमने अपने आप को समझाया नहीं है कि मुझे ये चेंज क्यों करना है, इसमें मेरा क्या फायदा है, तो फिर हम जल्दी से उसको छोड़ देंगे, फिर तो बहुत इजी है उसको छोड़ना। फर्स्ट थिंग इज आई हैव टू बी 100% मोर देन 100% कन्विंस्ड कि ये संस्कार मुझे क्यों चेंज करना है, इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, अभी का बेनिफिट, हेल्थ का बेनिफिट, लॉन्ग टर्म आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाएगी उसका बेनिफिट। एक संस्कार जो कड़क होता है ना, उसको अगर हमने चेंज कर दिया, एक और बहुत पावरफुल संस्कार जो क्रिएट होता है वो है संस्कार ऑफ विल पावर, वो भी तो बढ़ गई ना, विल पावर भी तो घट रही है ना इसकी वजह से। सपोज जैसे आपने कहा मीठा नहीं खाना, फिर भी जब भी सामने आया तो खा लिया,
1: आज खा ले कल देखते हैं, पर
0: अब उसमें मीठा खाना जो मेरा नुकसान कर रहा है वो तो एक नुकसान है, लेकिन मेरी विल पावर जो घट रही है हर बार में, कि मुझे करना कुछ और चाहिए और कर कुछ और रहे हैं, तो आत्मा की जो विल पावर घटती जाएगी वो फिर उसके और कार्यों में जहाँ यूज होनी होती है वो यूज नहीं हो पाएगी, बिकॉज ऑफ वन संस्कार वन आदत। तो जो हमने पिछली बार भी देखा, निर्णय वो हो जिसमें आत्मा की शक्ति हमेशा बढ़े, घटे नहीं। इसीलिए आज की आपकी कोटेशन ये बहुत पावरफुल है कि करेज रख के कंसिस्टेंटली उस वैल्यू को यूज करना है, उस वर्च्यू को यूज करना है। इराटिकली मतलब कभी कभी वो तो कोई भी कर सकता है, जिसके लिए कहते हैं ना चाहे प्राण भी जाए वचन नहीं जाए। वो प्रतिज्ञा का इतना बड़ा महत्व है, वो प्रतिज्ञा अपने आप से आज किसी एक संस्कार के लिए करते हैं और उसको सामना करके हमने उसको फिनिश करना ही है। जो आत्मा इतनी हिम्मत वाली, इतनी शक्तिशाली हो जाएगी, जो अपने संस्कारों का सामना कर सकेगी, तो उस आत्मा के लिए परिस्थिति का सामना करना, लोगों के संस्कारों का सामना करना बिकम वेरी वेरी सिंपल।
1: कई बार मैं चुप रहना चाहता हूँ, नहीं रह सकता, ऐसी छोटी छोटी चीजें भी सारी, इतना मतलब शक्ति आ जाएगी कि नहीं बोलना है यहाँ, चाहे कुछ भी
0: हो जाए।
1: इवन इफ आई एम राइट एंड द अदर पर्सन सेज कि आई एम रॉन्ग, वहाँ भी आदमी को हंस के मुस्कुरा के आदमी चुप रह के निकल जाता है और ध्यान भी नहीं होता है। ये चीज, ये क्वालिटीज धीरे धीरे इतनी बढ़ती है इनसे आप जो कह रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी
0: नहीं, दैट्स ओके, डोंट एक्सपेक्ट कि सडनली वी आर लाइक दिस। एज लॉन्ग एज वी आर ऑन द राइट पाथ
1: एंड वी आर अवेयर,
0: जब भी हम थोड़े भी अनकम्फर्टेबल होते हैं, हम उसके अवेयरनेस में आकर उसको जस्टिफाई नहीं करें, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखें कि मुझे इस समय क्या चेंज करना था, चाहे आसपास कुछ भी सिचुएशन या लोग थे, तब हम राइट रास्ते पे चल रहे हैं। देन वी आर ऑन द प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑन आर सेल्फ, वी आर ऑन द प्रोसेस की आत्मा चार्ज ही होती जाएगी, डिस्चार्ज नहीं हो सकती।
1: सेम चीज तो हम गोल्फ में करते हैं, गेम में, जब भी आदमी की स्विंग के अंदर डिफेक्ट आता है, कभी कभी चलते चलते वो पुराना कुछ जैसे संस्कार की बात कर रहे हैं तो बोलते हैं ही इज नॉट इन टच, इज आउट ऑफ फॉर्म, तो फॉर्म में वापस आने के लिए जीरो से शुरू करते हैं, फिर बॉल मारे 50, फिर 50 और फिर 100, 300 बॉल खड़े रह के एक ही चीज के साथ, उसके ऊपर मेहनत कर के अगेन यू आर इन फॉर्म।
0: इसका मतलब कोई भी चीज पर अटेंशन रखी, प्रैक्टिस किया,
1: 20-20 साल गोल्फ खेलते लोग 30-30 के बाद भी वापस फॉर्म से हट जाते हैं, स्विंग थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है, फिर ठीक कराते।
0: सिंपल है, एंड विच मीन्स अनेक जन्म भी अगर हम आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे, अपनी ओरिजिनलिटी से डिस्कनेक्ट हो गए थे, थोड़ा सा अटेंशन,
1: फिर टीचर के पास भी जाते, आज भी 30-30 साल हो गए लोगों को खेलते हुए, फिर पहुंच जाते, सर आई हैव दिस प्रॉब्लम।
0: अब इस केस में क्या है, पहले वो उनके फॉर्म था, राइट, फिर थोड़े पीरियड के लिए सडनली बीच में आउट ऑफ फॉर्म चले गए, थोड़ा सा अटेंशन अवेयरनेस पुरुषार्थ किया, वापस इन फॉर्म आ गए। आत्मा भी ओरिजिनली उसका फॉर्म क्या था, ओरिजिनली वो ये थी, फिर बीच में थोड़े पीरियड के लिए आउट ऑफ फॉर्म चली गई, जैसे ही उस टीचर से कनेक्ट होगी,
1: वाओ,
0: है ना, वापस वो ज्ञान और पावर को लेगी। और परमात्मा तो सबसे पहला ज्ञान यही हमें देते हैं, ये आपका ओरिजिनल फॉर्म है, कम ऑन, वी आर गोइंग टू गो बैक टुवर्ड्स इट। आत्मा वापस अपने फॉर्म में आ जाएगी,
1: योर लव, योर पीस, योर करेज,
0: दैट्स योर फॉर्म,
1: योर ब्लेस,
0: दैट्स द ओरिजिनल क्वालिटी। कोई नई चीज नहीं हम कर रहे, हम एक नया प्लेयर नहीं है जो आके गोल्फ सीखने वाला है, दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। हम वो प्लेयर हैं जो फॉर्म में थे, आउट ऑफ फॉर्म हो गए, आप इस फॉर्म में आ जाएंगे।
1: वंडरफुल, थैंक
0: यू सो मच। ओम शांति।
1: ओम शांति।
2: करेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्च्यू, विदाउट करेज वी कैनॉट प्रैक्टिस एनी अदर वर्च्यू कंसिस्टेंटली। वी कैन प्रैक्टिस एनी वर्च्यू इरेटिकली बट नॉट कंसिस्टेंटली विदाउट करेज। We have to discern when to use the power to adjust and when to use the power to face or confront. When it comes to difference of opinions and ways of working, we need to adjust with others, not confront them. But when there is abuse, exploitation, or compromise on values and principles, we need to confront, not adjust. If we adjust and accept exploitation, violence, abuse, or compromise on our values because of social pressure, public approval, or success in career, and we feel we do not have a choice, we are helpless, then it is lack of power to face situations, and this makes us emotionally weak. We need to confront our sanskars, which are not right for us. We need to constantly work on that sanskar, even if we have failed many times. We should never stop trying or give up on ourselves and accept our wrong habits. If we give up, the sanskar becomes stronger and our willpower becomes weaker.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

चल रे अमीरन, चल रे फकीरे, चल रे अमीरन, लक तक तक पक, चल रे फकीरे, जिबी चक धीरे धीरे, बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी मेरे, ओ बंदरिया, ओ बंदरिया, अपने बंदर से झगड़।

मैं हूँ झुम झुम झुम झुम झुमरो फक्कड़ घूमू बन के घुमरो साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा

0: क्यों?
1: आजादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो।

0: काम भी बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है।
1: ऊँची देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: सुन अरे सुन अरे सुन सुन सुन सुन सुन हर दिल को चाहत का रुझान दिए जा लेता जादुआएं आराम दिए जा हर दिल को चाहत का रुझान दिए जा लेता जादुआएं आराम दिए जा
1: पटाख तुम पटाख तुम पटाख तुम पटाख।